सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 46 सेकेंड हो रहे हैं। हमारी प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार सुनवाए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया

0: बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, हर शुभ शुरुआत में सबसे पहले स्मरण होता है विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का। जिनकी कृपा से जीवन के सभी मार्ग सरल और सुगम बन जाते हैं। तो आइए आज के वंदना कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं गणपति बप्पा की स्तुति से। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से परिपूर्ण ये भजन हमें प्रभु के चरणों से जोड़ने का सुंदर माध्यम है।

श्रोताओं, भगवान श्री गणेश को मंगल का प्रतीक माना जाता है। वो बुद्धि, विवेक, ज्ञान और सफलता के अधिष्ठाता हैं। उनके स्मरण मात्र से मन में सकारात्मकता का संचार होता है और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। शायद यही वजह है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश वंदना से की जाती है। तो आइए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के चरणों में अर्पित करें कार्यक्रम का ये अगला भजन।

श्रोताओं, अभी आपने भगवान श्री गणेश की महिमा का गुणगान करता सुंदर भजन जय जय मंगल मूर्ति गणेश सुना। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। श्रोताओं, गुरु ही वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करते हैं। गुरु हमें जीवन की सही दिशा दिखाते हैं और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। इन्हीं भावों को व्यक्त करता है कार्यक्रम का ये सबद, जिसमें गुरु की महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है।

श्रोताओं, गुरु का संदेश हमें प्रेम, सेवा और मानवता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। इन्हीं आध्यात्मिक भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए अब समय है एक खूबसूरत नात का। ये नात मोहब्बत, अकीदत और रूहानी सुकून का पैगाम लेकर आती है। तो आइए अपने दिलों को इबादत के एहसास से रोशन कीजिए और सुनिए ये प्यारी नात।

इस नाद को सुनने के बाद श्रोताओं, अब कार्यक्रम में समय है उस आरती का जो वर्षों से घर घर में श्रद्धा के साथ गाई जाती रही है। भगवान श्री गणेश की ये आरती भक्तों के मन में भक्ति, विश्वास और मंगल कामनाओं का संचार करती है।

गणेश वंदना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, संगीत सतीश भाटिया का है और स्वर है श्रीकांत पारगांवकर का।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कागार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानव उसकी प्रत्यंचा है और शम, तम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया। श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज बसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। स्वर था श्रीकांत पारगांवकर का। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं लीजिए, अब प्रस्तुत है चिंतन।
1: प्रकृति का कुछ ऐसा विधान है कि उत्थान के साथ पतन स्वाभाविक है। जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए परिश्रम, लगन, संयम, उत्साह और निष्ठा की आवश्यकता होती है, जबकि पतन भी स्वयं अपने साधन खोज लेता है, जैसे कुसंगति और गलत साहित्य। अतः हमें गलत संगति और गलत साहित्य से बचना चाहिए। मन गतिशील है और चंचल भी। मन की गति को सबसे तेज चलने वाला कहा गया है और मन वो पानी को एक तरह से देखा गया है। इसलिए हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि पतन की स्थिति को हावी नहीं होने देंगे। ये तभी संभव हो सकता है जब आपके संकल्प में शक्ति हो। ये शक्ति लगातार संकल्प से आती है। वर्तमान में जिधर देखें, लोग बुराई को ही भलाई कहते हैं और गलत कार्यों की तरफ उनका मनन और चिंतन चल रहा है। इस कारण व्यक्ति के चरित्र में गिरावट आ रही है। अगर इस वातावरण से ऊपर उठना है तो हम सबको संयम के साथ संकल्प लेना होगा। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक, आर्थिक हो या राजनीतिक, विकास हेतु संकल्प की आवश्यकता होती है। छोटे से छोटे सफलता बिना परिश्रम संभव नहीं। पत्थर को ऊपर फेंकने में हमें मेहनत करनी होती है, जबकि नीचे फेंकने में कोई खास श्रम नहीं लगता। व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति से जो इच्छा करता है उसे प्राप्त कर लेता है, जिसका आधार परिश्रम है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक भारतीय इतिहास साक्षी है कि जितने भी सफल आविष्कारक, योग्य चिंतक, श्रेष्ठ विचारक हुए हैं, सभी के पीछे संकल्प और परिश्रम की भूमिका है। हमारे संतों, ऋषि मुनियों ने भी मन को मजबूत बनाने की बात कही है, क्योंकि मन बलवान होगा तो विचार उज्जवल होंगे, संकल्प शक्ति बढ़ेगी। शास्त्रों में भी संकल्प शक्ति का प्रभाव बताया गया है। संकल्प शक्ति सर्वोपरि शक्ति है, इसी से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। संकल्प शक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अतः प्रत्येक सफलता की कुंजी है संकल्प शक्ति और परिश्रम। इनके अभाव में संसार की गति रुक जाएगी और व्यक्ति उत्थान के स्थान पर पतन के अथाह सागर में डूब जाएगा। संकल्प शक्ति से मनुष्य के हर उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है और मनुष्य प्रगति के शिखर पर पहुंच सकता है।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:45 होने को हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री राम मोहन का काव्य पाठ।
2: कविता का शीर्षक है मेरे प्रभु श्री राम। चपल चपल क्यों नैन चलते हैं, छलक उठी है क्यों वेदना अतीत की, अश्रुओं की धारा बह निकली है, सुन सुन करके वीर भक्तों की गाथाएं। रोम रोम हुआ पुलकित है, चपल चपल क्यों नैन चलते हैं। भक्तों का आर्तनाद है स्वीकार राम को, दसो दिशाएं गूंजी है शंखनाद हुआ, सपना साकार हुआ धरा पर, मंदिर निर्माण हुआ वही जन्मभूमि पर। दर्शन अपने आराध्य के कर धन्य हुए, भाग्य हमारे जो लक्ष्य संजोया था, पूर्ण हुआ फिर पथ प्रशस्त हुआ, भूमंडल में चहका और महका संदेश राम का, जियो और जीने दो, राम में हुआ है समस्त जगत, आह्लादित हुए सभी जलचर नभचर भूचर और धरा के सब प्राणी, गीत राम के गाते हैं, भक्ति में रम जाते हैं। आओ दर्शन करें श्री राम के अपने भी मन मंदिर में, तभी सार्थक होगा धरा पर पावन संदेश श्री राम का। निज आचरण से उतारें आरती श्री राम की, हर पल हर क्षण दिए दर्शन श्री राम का, यही प्रेरणा है जन जन को श्री राम की, चपल चपल क्यों नैन चलते हैं। कविता का शीर्षक है भारत भाग्य विधाता। यह नव भारत है भाग्य विधाता है, जन जन का भारत है, सबके सपनों का उद्धारक है।

विकसित हम लोकतंत्र के हम प्रहरी, देते हैं विश्व को संदेश मानवता के हम रक्षक। न हो कोई भक्षक पर्यावरण के बने हम वाहक, वसुदैव।

0: आता है।
1: कविता का शीर्षक है प्रकृति और मानव। भोर हो गया, चिड़िया चहक रही है, घोंसलों से निकल निकल कर बाहर आ रही है। उनके मधुर कलरव का मधु संगीत वातावरण को स्पंदित कर रहा है। हम नहीं उठे हैं अपने बिस्तरों से, क्योंकि अभी बैठी नहीं मिली है। हम चिड़ियों से भी गए बीते हैं, वे उड़ती हैं आकाश में, जीवन की ऊंचाइयों में। हम सपनों की उड़ान भरते हैं, गिर जाते हैं खाइयों में, वे लहराती हैं, गीत गाती हैं और नाचती हैं। हम खाइयों में पड़े पड़े आंसू बहाते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं। क्या विधाता ने उनका भाग्य नहीं बनाया, इसका उन्हें एहसास भी नहीं है। वे मस्त हैं जीवन के उन्मुक्त आनंद में, प्रकृति ही उनकी नियति है। वे उसके अंदर खो जाती हैं, भूल जाती हैं अपने आप को, अपने अहम को। हम प्रकृति से कोसों दूर हैं, लीन हैं अपनी बनावटी दुनिया में। हमें गर्व है अपने समाज एवं सभ्यता का। जिंदगी की सच्चाइयों से कोसों दूर हम जी रहे हैं, गंदी गलियों के अंधकार में। दीपों का प्रकाश हमारे अंधियारे को दूर नहीं करता है, क्योंकि ये माटी के दीप हम ही ने तो बनाए हैं। जब सूरज की रोशनी ही हमारे बंद मकानों के आंगन तक नहीं पहुंचती है, वे सूरज की किरणों में नहाती हैं, मदमस्त हवाओं में पंख फड़फड़ाती हैं, फूस के घोंसलों में रहती हैं और नदी के दर्पण में मुंह देखा करती हैं। काश कि हम भी प्रकृति में खो जाएं, भूल जाएं अपनी बनावटी दुनिया को। हमारे जीवन में भी ऐसा ही भोर उगेगा। भोर हो गया है, चिड़िया चहक रही है, घोंसलों से निकल निकल कर बाहर आ रही है। भोर हो गया है, चिड़िया चहक रही है। कविता का शीर्षक है अगणित दीप। अगणित

0: काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री राम मोहन का काव्य पाठ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार सुनवाए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलनावधौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विभिन्नानां राष्ट्राणां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृत्वा विस्तृतं कूटनीतिक कार्यं विहितम्। विदेशमन्त्रालयानुसारं प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना तथा तस्य कनाडादेशस्य समकक्षीयेण मार्क कार्नी इत्यनेन च भारत कनाडा देशयोः सम्बन्धेषु सकारात्मकतायाः स्वागतं कृतम्। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर इत्यनेन सह मिलित्वा प्रधानमंत्री श्रीमोदी 35-2000 वर्षस्य दूरदृष्ट्यांतर्गतम् भारत यूके संबंधानां प्रगतिं समीक्षितवान्। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलनावधौ UAE अध्यक्षेण शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सहापि मिलितवान्, तथा च पश्चिम एशिया क्षेत्रे चिरस्थायी शान्तिं सुरक्षां स्थिरतां च प्रवर्धयितुं संवादस्य कूटनीतेः अन्ताराष्ट्रिय विधेः सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च सम्मानस्य महत्वम् अधोरेखितम्। केन्या देशस्य राष्ट्रपतिना विलियम रूटो इत्यनेन सहापि श्रीमोदी मेलनं कृतवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं केन्या च वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षासु दीर्घकालं यावत् सहभागित्वं कुर्वन्ति। जापान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मिलित्वा श्रीमोदी अवधानं दत्तवान् यत् भारत जापान देशयोः सम्बन्धः विविधेषु क्षेत्रेषु निरन्तरं सुदृढं भविष्यति। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य वैश्विक कूटनीतेः केन्द्रः अस्ति यत् G7 शिखर सम्मेलनस्य महत्वपूर्णे चरणे अस्ति। भारतस्य सहभागिदेशस्य रूपेण सहभागित्वेन सर्वेषां दृष्टिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह बहुप्रतीक्षितायां द्वैपाक्षिक सम्मेलने दृढतया निबद्धः अस्ति यत् अद्य शिखर सम्मेलनावधौ भविष्यति। 25-2000 वर्षस्य फरवरी मासे वाशिंगटन डीसी इत्यत्र अंतिम वारम मेलनानंतरम उभयोः मध्ये एतत्

0: सम्मेलनं भविष्यति। अद्यतनस्य संवादस्य समये तौ बहुविधक्षेत्रेषु द्वैपाक्षिकसहयोगं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः, तथा च परस्परहितानां क्षेत्रीयवैश्विकविषयेषु चर्चां करिष्यतः इत्यपेक्षास्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनम् अतिरिच्य अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सर्वेभ्यः लाभाय सन्तुलितं सर्वसमावेशं सुस्थिरं च आर्थिकवृद्धेः पुनरुत्थानम् इत्यस्मिन् विषये तथा कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः सुरक्षितं द्रुतप्रभावी उपयोगं सुनिश्चेतुम् इति विषये G7 इत्यस्य कार्यसत्रे अपि भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री EU परिषदः अध्यक्षेण एण्टोनियो कोष्टा इत्यनेन सह EU अध्यक्षस्य आयोगस्य अध्यक्षया फॉन डेर लेयन इत्यनया सह त्रिपक्षीय सम्मेलनं करिष्यति। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज इत्यनेन सहापि द्वैपाक्षिकोपवेशनं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलने नूतन सहभागित्वस्य निर्माणं तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यभावस्य पुनर्निर्माणम् इत्यस्मिन् विषये सत्रम् अभिसम्बोधितवान्। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् सत्रावधौ प्रधानमन्त्रिणा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागित्व विनिर्माणे विशेषतः वर्धमान परस्पर सम्बद्ध विश्वे विश्वासस्य महत्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमम् इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीत दर्शनस्य आधारेण अस्ति, विश्वमेकः परिवारः अस्ति इति। फुटबॉल क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडांगणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिक क्रीडायां फ्रांस देशेन सेनेगल देशं 3-1 इति अंकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि छह राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। इस कार्यक्रम में आज की जानकारी का विषय है वाणी की स्वच्छता।
4: खान पान पर नितांत अनुशासन जरूरी है। गलत दिनचर्या और खान पान की आदतों की वजह से पेट का अम्ल गले में आने की शिकायत हो सकती है, जो गले के अंदर के सराव को परिवर्तित करने के साथ स्वर यंत्र की हल्की सूजन का कारण भी हो सकता है। रिफ्लेक्स के ऐसे मरीजों के गले में कुछ अटकना, बार बार गला साफ करना, लंबी मियाद की खांसी, जीभ पर जमाव, बार बार ब्रोंकाइटिस जैसी शिकायतें हो सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों एवं व्यावसायिक वाणी प्रयोग करने वाले को अधिक मिर्च मसाले या तेल युक्त खाना, अधिक चाय, कॉफी, शीतल पेय और शराब नहीं लेनी चाहिए। सादा खाना दिन में 2 बार से ज्यादा बार खाएं, परंतु एक ही बार में पेट भरकर खाना न खाएं। दूध, आइसक्रीम, चॉकलेट, सूखे फल, कार्यक्रम प्रस्तुति या गायन से कुछ समय पूर्व न लेवें। सुगंध युक्त गोलियां, च्युइंगम, श्वास को ताजगी देने वाली गोलियां प्रयोग नहीं करनी चाहिए। पान, पान मसाला या पान पराग, तंबाकू, सुपारी, गुटखा आदि नहीं लेना चाहिए। नींबू का रस और हर्बल चाय आवाज के लिए फायदेमंद होती है। हर बार कुछ भी खाने के पश्चात पानी पिएं। सुरक्षित पीने का पानी हमेशा साथ में रखें। सामान्य रूप से नाक से श्वास लेना अच्छी आवाज के लिए जरूरी होता है, क्योंकि नाक से श्वास छनती है और गर्म होती है और इसे उपयुक्त आर्द्रता मिलती है। नाक बंद रहने, नाक या साइनस की अन्य तकलीफों के लिए विशेषज्ञ उपचार लेना चाहिए। सूखी ठंडी और गर्म हवा दोनों ही नाक, गले के स्रावों को प्रभावित करती हैं और आवाज ठीक से नहीं निकलती, खांसी भी होती है। इसी प्रकार मुंह से श्वास लेना, तेज पंखे के नीचे सीधे बैठना या सोना भी ठीक नहीं होता। यदि सामर्थ्य है तो वातानुकूलित वातावरण में रहना अच्छी आवाज के लिए फायदेमंद है। ऐसे वातावरण से बाहर गर्म वातावरण में जाने से कुछ मिनट लगाएं, अचानक ही नहीं जाएं। धूल और धुएं युक्त वातावरण से संभवतः बचें, धूम्रपान न करें। यदि मंच पर धुआं हो तो धुआं हटाने वाली वेंटिलेशन सिस्टम या धुआं खाने वाला यंत्र लगाएं। तेज सर्दी या एक्यूट एलर्जी या नाक गले के तेज या संवेगी संक्रमण के दौरान गायन कार्यक्रम न देवें। नाक की एलर्जी से ग्रसित व्यक्ति धूल धुएं माइट्स फफूंद और परागकण आदि एलर्जेंस को नियंत्रित करने हेतु उपाय करें। अधिक मेकअप, बालों के या फिक्सिंग या अन्य प्रकार के स्प्रे बहुत सावधानी से और कम उपयोग में लाएं। सभागृह या ऑडिटोरियम या कंसर्ट हॉल की नियमित वैक्यूम क्लीनर द्वारा सफाई कराते रहना चाहिए। शारीरिक और मानसिक दोनों ही तनाव आवाज को दुष्प्रभावित करते हैं। किसी भी कार्यक्रम प्रस्तुति पूर्व बराबर नींद, आराम और रिहर्सल आवश्यक होते हैं। गायन, भाषण, व्याख्यान, बातचीत के दौरान गला नहीं सूखने दें। बीच बीच में पानी के घूंट पिए, हल्का गुनगुना शहद युक्त पानी कार्यक्रम के दौरान निरंतर पीते रहें। एक ही समय पर लगातार 45 मिनट से ज्यादा आवाज का प्रयोग न करें। भीड़ या अधिक श्रोताओं के समक्ष भाषण देते वक्त माइक्रोफोन या माइक का प्रयोग करें। सभागृह की एकोस्टिक उपयुक्त हो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। गायकों या व्यावसायिक वाणी प्रयोग करने वालों को भी भीड़ भरी शोरगुल वाली पार्टियों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर जोर जोर से बात करनी पड़ती है जिससे स्वर यंत्र पर तनाव आता है। बार बार गला साफ करने की आदत न डालें, उपयुक्त इलाज लेवें। जोर जोर से बोलना, चीखना, चिल्लाना और तनावपूर्ण ढंग से आवाज निकालने से बचें। ख्याल रखें, खेल खेल में बच्चे अधिक चीखें चिल्लाएं नहीं। हमेशा तनाव रहित रिलैक्स होकर धीरे धीरे बात करें। सिर और गर्दन को गायन या बोलचाल के दौरान सीधा रखें। यदि गर्दन की मांसपेशियों में दर्द या ऐठन हो तो मालिश करें, डॉक्टरी सलाह लें। हमेशा 2 फीट की दूरी पर ही बात करनी चाहिए। पेट और श्वसन की कसरतें नियमित करनी चाहिए। बोलचाल या श्वास में बाधा डालने वाला पहनावा या वेशभूषा नहीं पहनना चाहिए। गाने या बोलने से पहले श्वास नहीं रोकना चाहिए। ख्याल रखें आपका वजन नियंत्रित रहे। अधिक वजन को धीरे धीरे कम करना चाहिए। कार्यक्रम प्रस्तुति या गायन से पहले डाययूरेटिक या एंटी एलर्जिक या रक्तचाप कम करने वाली गोलियां नहीं खानी चाहिए। जब कभी आपकी आवाज कर्कश होती है या फटापन आता है तो बातचीत बिल्कुल कम कर देनी चाहिए। व्यावसायिक दृष्टि से वाणी प्रयोग करने वालों की बढ़ती उम्र के कारण आवाज प्रभावित न हो इसके लिए शारीरिक और श्वसन तंत्र की कसरतें नियमित करनी चाहिए। बराबर खानपान रखना चाहिए। नियमित आवाज का परीक्षण देते रहें और दांत गिरने का उपयुक्त इलाज कराते रहना चाहिए। हर व्यावसायिक रूप से वाणी प्रयोग करने वाले खासकर पॉप सिंगर्स को नियमित ENT चेकअप करवाते रहना चाहिए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें।
5: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं बाग लगाने से पूर्व तैयारियां। किसान भाइयों, बरसात का मौसम आने वाला है और अगले माह से बरसात शुरू हो जाएगी, तो किसान भाइयों हमें बाग लगाने से पहले हमें कुछ तैयारियां करनी है। तो आइए बात करते हैं कि नए फलदार बाग लगाने से पहले हमें कौन कौन से ऐसे काम है जो कि हमें करने हैं। किसान भाइयों, जिस खेत में हम बाग लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें खेत की गहरी जुताई करनी है और खेत की गहरी जुताई करके मिट्टी की जाँच करवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें ये पूरी जानकारी हो जाएगी कि जो हम बाग लगाना चाह रहे हैं उस पौधों को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिससे कि वो सही बढ़वार कर सके और हमारी मिट्टी में वे पोषक तत्व मौजूद हैं या नहीं, या हमें उनकी भरपाई करनी है। इसके अलावा किसान भाइयों, जल निकासी की उचित व्यवस्था हमें करनी है, यानी कि बाग हमेशा ऐसे खेत में लगाना चाहिए जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था हो। तो अगर खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था है तो उस खेत में हम बाग लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर हमारे खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है तो ऐसे खेत में हमें बाग नहीं लगाना चाहिए। मौसम के अनुसार अच्छी किस्म के पौधों का चयन करें और रोपण से पहले वर्गाकार या षडभुजाकार विधि से पौधों की दूरी तय करके

0: आने हैं, क्योंकि अगर पौधे हमारे अच्छे होंगे, अच्छी किस्म के होंगे, तो वो अच्छी बढ़वार करेंगे और हम उनसे जल्दी ही फलत प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अपने खेत की जुताई और मिट्टी की जांच करवाना बहुत ही जरूरी है, और मिट्टी की जांच हम कृषि विज्ञान केंद्र या सरकारी प्रयोगशाला में करवा सकते हैं। इससे हमें जो खेत में पोषक तत्व हैं उसके बारे में और पीएच मान के बारे में जानकारी मिलेगी, और जांच के आधार पर ही हम ये तय कर सकते हैं कि जो हमारा खेत है वो आम, अमरूद, नींबू, लीची या पपीता किस फल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है और किसकी बागवानी करके हम सबसे ज़्यादा उसमें आमदनी ले सकते हैं, अच्छी फलत प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, हमें ये देखना है कि जो हम पौधे लगा रहे हैं तो उन पौधे की हमें लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, और उसी के आधार पर हमें रेखांकन करना है, यानी कि हमें चिन्हीकृत करना है। रेखांकन करने के बाद किसान भाइयों, हमें गड्ढों की खुदाई करनी है, और गड्ढों की खुदाई करते समय हमें एक बात का ध्यान ये रखना है कि जो ऊपर की मिट्टी होती है वो हमें अलग रखनी है और जो नीचे की मिट्टी होती है वो हमें अलग करनी है। इसमें किसान भाइयों, हम करते ये हैं कि जब हम गड्ढा भरते हैं तो जो हमारी ऊपर की मिट्टी होती है वो हम नीचे डालते हैं, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है और जड़ों के आसपास ऊपर की मिट्टी रहती है, और जो हमारी नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है। गड्ढे भरते समय भी ध्यान रखना है कि गड्ढे को भरने के लिए ऊपरी उपजाऊ मिट्टी में कड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट, नीम की खली और 25 ग्राम क्लोरीपाइरीफॉस पाउडर दीमक से बचाव के लिए ये अच्छी तरह मिलाना है, और इस मिश्रण को हमें गड्ढे में भरना है और पानी देकर फिर हमें उस मिट्टी को बैठने देना है। साथ ही किसान भाइयों, एक बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पर हम बाग लगाना चाह रहे हैं तो सिंचाई की क्या व्यवस्था है, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था भी होना बहुत ही आवश्यक है। आसपास कोई जल स्रोत है या नहीं है, ट्यूबवेल है या सरकारी ट्यूबवेल है, इसके अलावा या नहर है, या हमारे आसपास में तालाब है, नदी है, तो जहाँ पर हम बाग लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर जल स्रोत का होना बहुत ही आवश्यक है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हमें ये सारे काम करने हैं, और इस तरीके से हम एक सुनिश्चित योजनाबद्ध तरीके से अगर बाग को लगाते हैं तो हम अच्छी फलत ले सकते हैं और भविष्य में हम अच्छी बागवानी करके अच्छी आमदनी हम इससे ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। कल आपके लिए हम कुछ और खेती की बातों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सब बहन भाइयों को हमारी राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल पेश किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अंबेडकर नगर और बांदा जिलों की हलचल। साथ ही कानून की बात कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा आज शाम 7:32। ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। सवेरे 10:00 आप सुनेंगे पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम घर संसार पेश किया जाएगा 1:15 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक लघु नाटिका प्रसारित की जाएगी जिसका शीर्षक होगा सपने और इच्छाएं। आलेख नीतू अग्रवाल का होगा, निर्देशन होगा अंकित सैनी का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा। युवा श्रोता अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा आज शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज का क्रम होगा यूथ कनेक्ट। और कृषि जगत कार्यक्रम किसान भाई सुनेंगे शाम 6:05 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज किसान भाई एक भेंट वार्ता सुनेंगे जिसका विषय होगा फसलोत्पादन में हरी खाद और अन्य जैविक खातों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया और डीएपी के अंधाधुंध प्रयोग से निजात। श्रोताओं, ये था विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:18 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट यूजी पुनः परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी पुनः परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी पर्व त्योहारों, नीट यूजी पुनर्परीक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% की छूट दी जाए। मुख्यमंत्री ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों एवं 762 नगरीय निकायों में अमृत सरोवरों एवं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री योगी ने मुहर्रम के दौरान निर्धारित नियमों व मानकों का पालन करवाते हुए शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आगामी 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया ताकि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल लखनऊ में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। श्री खन्ना ने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
3: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सके। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे, और डॉक्टर्स पैदा होते सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
4: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने से जुड़ी कई मांगों को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। ये जानकारी प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश को कई रेल सेवाओं की सौगात देंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित भी करेंगे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि उनकी मांग पर दोहरेघाट औड़ियार नई मेमू ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन और छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किए जाने को मंजूरी मिल गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहाँ पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत और अफगानिस्तान के बीच आज लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है, जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा दिया है। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट यूजी पुनः परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी पुनः परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 7:31 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सभी श्रोताओं को नमित राज का नमस्कार। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, सुबह का जो ये वक्त होता है ना, ये हमारे लिए इस प्रकृति का सबसे खूबसूरत उपहार होता है। इस समय हम ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, क्योंकि कल की थकान तो नींद के साथ फुर हो गई ना। अब नए दिन की शुरुआत है, हमारे दिमाग में नए नए थॉट्स हैं, और ख़ास तौर पर यदि हम विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो उनके लिए तो ये समय और भी उत्तम माना जाता है, जब सूरज अपने उजाले से इस धरती को रोशन कर देता है। आइए आज की इस सुहानी सुबह में हम बात करें कुछ ऐसे विषयों की जो हमारे जीवन और हमारी प्रकृति के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है श्रोताओं, उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे बंजर जमीन में बदल जाना, यानी उसका मरुस्थलीकरण होना। श्रोताओं, ये एक ऐसी समस्या है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए समस्या पैदा करती है, और सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक संकट का भी कारण बनती है। क्योंकि क्या होता है

कि जब उपजाऊ जमीन बंजर हो जाए तो इससे किसान प्रभावित होता है, वो उतना अनाज नहीं उगा पाते जितना पहले उगा लेते थे। अब फसल कम होगी तो किसानों की आजीविका प्रभावित होती है, इससे खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है और लोगों का पलायन बढ़ने लगता है। अनियंत्रित वृक्षों की कटाई, जल संसाधनों का दोहन, बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, साथ ही साथ भूमि का असंतुलित उपयोग, ये सभी कारण हैं जो इस समस्या को जन्म दे रहे हैं, यानी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे समय में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने की जरूरत है और ये सबका कर्तव्य है, हमारा, सरकार का और समाज के हर तबके का। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं श्रोताओं, जैसे पेड़ लगाना और जल का संरक्षण करना। कम से कम अपने स्तर पर हम लोग ये दो काम तो कर ही सकते हैं। आज सूखा व मरुस्थलीकरण नियंत्रण दिवस पर हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और आज से ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करना चाहिए। कार्यक्रम में अब एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप लीजिए इस गीत का आनंद, हम वापस आएंगे बस कुछ ही देर में।

0: श्रोताओं, अभी अभी आपने सुना ये मोटिवेशनल गीत, और हमें यकीन है कि इस गीत के संगीत ने आपके मन को ज़रूर छुआ होगा। चलिए वापस चलते हैं अपनी आज की चर्चाओं की तरफ। गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि बढ़ता मरुस्थलीकरण किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए एक समस्या बनता जा रहा है। जब बात हमारे पर्यावरण की होती है, हमारी प्रकृति की होती है, तो साथियों प्रकृति जो है ना, वो पेड़ पौधों या नदियों तक सीमित नहीं है। इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु इस धरती के संतुलन का एक अहम हिस्सा हैं। इसलिए जब भी बात होती है पर्यावरण संरक्षण की, तो उसमें जीवों की सुरक्षा भी शामिल होती है। आज 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मगरमच्छ वैसे तो बड़े खतरनाक होते हैं श्रोताओं, लेकिन आपको जानकर थोड़ा ताज्जुब होगा कि मगरमच्छ धरती के सबसे प्राचीन जीवों में से एक हैं। इनके पूर्वज डायनासोर के टाइम से इस धरती पर मौजूद रहे। अब जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया में डायनासोर तो देखिए सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन मगरमच्छ उस समय से अब तक मौजूद है। पानी में रहने वाला यह जीव जल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए विश्व मगरमच्छ दिवस पर हर साल मगरमच्छों और उनसे जुड़ी विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। हमारे देश में 3 प्रकार के मगरमच्छ पाए जाते हैं श्रोताओं। पहले घड़ियाल, दूसरे मगर और तीसरे खारे पानी के मगरमच्छ, जिनमें से घड़ियाल जो है वो अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के होते हैं। अवैध शिकार और प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण मगरमच्छों की कई प्रजातियां खतरे का सामना कर रही हैं, और यदि हमें प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है तो इन जीवों की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी जंगलों की और जल के स्रोतों की। आइए विश्व मगरमच्छ दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि प्रकृति के प्रत्येक जीव के अस्तित्व का सम्मान करेंगे और जैव विविधता की रक्षा में अपना योगदान देंगे। श्रोताओं, अब वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: वेलकम बैक दोस्तों, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप ये कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। साथियों, आज 17 जून है और अब से 4 दिनों के बाद आ जाएगी 21 तारीख, जब पूरा विश्व मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हालांकि योगाभ्यास तो देखिए हमें हर रोज करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें, लेकिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बनना, उसके कार्यक्रमों का हिस्सा बनना अपने आप में अलग अनुभव होता है। और सबसे ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला क्षण वो होता है जब हम इस बारे में सोचते हैं कि योग दिवस तो हमारे भारत की ही देन है, क्योंकि भारत ने ही योग दिवस मनाने के संबंध में सुझाव दिया था। और जब सारे देशों ने इसके पक्ष में सहमति दी, तब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये डिक्लेयर किया कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प फैक्ट है कि योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, क्यों 21 जून की तारीख पर मुहर लगी कि इस तारीख को योग दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। इसके पीछे का कारण यह है कि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है और इस दिन के बाद से दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। एक सांस्कृतिक मान्यता भी है कि ग्रीष्म अयनांत के पश्चात आदि योगी भगवान शिव ने सप्तऋषियों को योग का दिव्य ज्ञान प्रदान करना शुरू किया था। संभवतः इसी गहन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण ये दिन योग के वैश्विक उत्सव के लिए उपयुक्त माना गया। तो ये दिन बेहद खास है श्रोताओं, जो हमें स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन का संदेश देता है। आइए हम भी योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ भारत, स्वस्थ विश्व के निर्माण में योगदान दें।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: आई श्रोताओं, अब कार्यक्रम सूरज के साथ साथ को कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर लेकर चलते हैं, जिसका नाम है सेगमेंट तिथि विशेष। इस सेगमेंट में हम हर रोज आपको उस दिन की तारीख के इतिहास के बारे में बताते हैं। आज है 17 जून, तो आज आपको हम बताएंगे 17 जून के इतिहास की कुछ अहम घटनाओं के बारे में। 17 जून सन 2004 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मंगल रोवर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी दोनों को ही ऐसे पत्थर और चट्टाने मिली थी जिनकी बनावट कुछ हद तक पृथ्वी पर पाए जाने वाले पत्थरों जैसी थी। स्पिरिट रोवर ने पॉट ऑफ गोल्ड नाम की अनोखी चट्टान की तस्वीर भेजी थी, जबकि अपॉर्चुनिटी रोवर को बाउंस रॉक नाम की चट्टान मिली थी जो दिखने में पृथ्वी पर गिरे उल्का पिंडों जैसी थी। साल 1858 में 17 जून को ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का डटकर सामना किया था और मृत्यु पर्यंत उन्होंने झांसी की रक्षा करते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सन 1885 में 17 जून को ही फ्रांस से चलकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंची थी। ये फ्रांस द्वारा अमेरिका को भेंट स्वरूप प्रदान की गई थी। इसे फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बर्थोल्डी द्वारा डिजाइन किया गया था। 151 फीट ऊंची ये मूर्ति एक महिला की आकृति थी जिसका एक हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है, जिसमें मशाल है। 17 जून को ही 1973 में जन्म हुआ था भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का। वो भारत के सफलतम टेनिस खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत को व्यक्तिगत ओलंपिक पदक दिलाया था। उन्होंने डबल्स और मिक्स डबल्स के कई ग्रैंड स्लैम खिताब भी अपने नाम किए हैं। 1985 में 17 जून को ही जॉन हेंड्रिक्स द्वारा स्थापित डिस्कवरी चैनल ने अमेरिका में अपना प्रसारण शुरू किया था। शुरुआत में ये केवल विज्ञान, इतिहास और प्रकृति से जुड़े उच्च गुणवत्ता वाले वृत्तचित्र दिखाता था, जबकि बाद में ज्ञानवर्धक सामग्री के दम पर यह जल्द ही वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय ब्रांड बन गया। स्वतंत्रता सेनानी, कवि, गीतकार और नाटककार ज्योति प्रसाद अग्रवाल का जन्म भी 17 जून को ही 1903 में असम के डिब्रूगढ़ जिले में हुआ था। असमिया संस्कृति के रूपकुमार कहलाने वाले अग्रवाल ने 1935 में असम की पहली फिल्म जायमती का निर्माण और निर्देशन किया। उन्हें असमिया सिनेमा का जनक माना जाता है। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने शोणित कुंवरी नाटक लिखा। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहते हुए उन्होंने देशभक्ति गीतों से युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। 17 जनवरी 1951 को कैंसर के कारण उनका निधन हुआ। असम में उनकी पुण्यतिथि शिल्पी दिवस के रूप में मनाई जाती है। श्रोताओं, ये थी 17 जून के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, और इनको जानने के बाद आइए अब रुक करें समाचार पत्रों का। प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। शुरुआत दैनिक जागरण से। एनसीआर में आरआरटीएस के आसपास बनाए जाएंगे 4 नए ग्रीनफील्ड नमो सिटी। शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में फैसला। अगले 5 वर्षों में हर शहर के विकास के लिए दिए जाएंगे 5,000 करोड़। राज्यों से मांगे प्रस्ताव। शहरों के निर्माण में पर्यावरण मानकों का रखा जाएगा पूरा ध्यान। देशभर में टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध। 21 जून तक होने वाले नीट यूजी को फुल प्रूफ बनाने के लिए केंद्र का निर्णय। टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर भी 30 जून तक बंद रखने का सरकार ने दिया निर्देश। अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप। जहरीले कफ सिरप से कई बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने उठाया कदम। ड्रग्स एक्ट में संशोधन, निर्माण से वितरण तक की प्रक्रिया की होगी कड़ी निगरानी। वन्यजीव हमले में मौत पर मुआवजा होगा दोगुना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम। गंभीर घायलों और दिव्यांग होने वालों की सहायता राशि बढ़ाने का भी प्रस्ताव। अमर उजाला समाचार पत्र पर नजर डालें तो नीट यूजी पुनर्परीक्षा की सुरक्षा के लिए 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर रोक वाली खबर को ही इस समाचार पत्र ने प्रमुखता से छापा है। साथ ही 16 महीने बाद G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप और मोदी मिले, द्विपक्षीय वार्ता आज। हिंदुस्तान समाचार पत्र की प्रमुख खबर है शिक्षकों को लेकर। यूपी में परिषदीय शिक्षकों के लिए होगी विशेष टीईटी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अगस्त 2028 तक पास करना होगा अनिवार्य। और प्रदेश के स्कूलों में 24 जून तक गर्मी की छुट्टी। पहले 15 जून तक स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश तय किया गया था। नई व्यवस्था के तहत आज से फिर स्कूलों में होगी छुट्टी। तो ये थी कुछ समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब आपको एक बार फिर से संगीत की दुनिया में लेकर चलते हैं श्रोताओं, और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ के आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो आप दीजिएगा नमित राज को इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनवाए जाएंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
5: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
6: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
5: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में

0: 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और NEET UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोक सत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा।

0: सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: श्रोताओं, दुनिया में घूमने फिरने का भी अपना ही आनंद है। नई जगह, नए लोग, नए नज़ारे, और हर सफ़र में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। लेकिन कभी कभी दिल ये भी कहता है कि सारी दुनिया की सैर अपनी जगह और अपनों का साथ अपनी जगह। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं को समेटे है कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे अपनी मधुर आवाज में सजाया है गायक कलाकार मुकेश और शारदा ने। शंकर जयकिशन का संगीत है और शैलेंद्र के बोल हैं। फिल्म का नाम है अराउंड द वर्ल्ड।

0: चंदन का एहसास।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आकाशवाणी नजीबाबाद से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम गीत तुम्हारे की अगली पेशकश फिल्म अर्पण से लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

0: लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अर्पण से यह खूबसूरत सा गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। आनंद बख्शी का ही लिखा एक और गीत आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं। फिल्म का नाम है अशांति, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और आशा भोसले, और इस गीत को सुरों में पिरोया है आरडी बर्मन ने।
1: तुझसे ना मुझसे।

किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अशांति का ये खूबसूरत सा गीत। श्रोताओं, हर सफ़र की एक मंजिल होती है, हर महफिल की एक शाम होती है। गीतों के साथ गुजरे ये पल यादों में रह जाते हैं और फिर किसी नई मुलाकात का पैगाम होते हैं। कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल का हीरा से ये खूबसूरत सा गीत, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: 54 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 9:15 होने को हैं, कुछ ही पलों में जिले की हलचल पेश की जाएंगी, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अंबेडकर नगर और बांदा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
2: केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने पर अंबेडकर नगर के सभी विकास खंडों में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और गरीबों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर तबके के लोगों को लाभ पहुंचा रही है और इसी का परिणाम है कि आज हमारा देश सशक्त बन रहा है। अंबेडकर नगर में भूमि विवादों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ईशा प्रिया के निर्देश पर जिले के सभी तहसीलों के ग्राम पंचायतों में भूमि विवाद निस्तारण चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अकबरपुर तहसील की उप जिलाधिकारी प्रतीक्षा सिंह ने बताया कि ग्राम प्रतापपुर चमुरखा में 56, लोरपुर पालहन में 75, चोनगांव में 39, तारा खुर्द में 30 और औरंगाबाद में 35 भूमि विवादों का निस्तारण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मिझौड़ा चीनी मिल में जन जागरूकता एवं बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले या सुनिश्चित किया जाए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अंबेडकर नगर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 21 जुलाई को शून्य दुर्घटना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने अंबेडकर नगर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान चारू चौधरी ने जिला अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर, वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया। चारू चौधरी ने सर्किट हाउस में आयोजित जन चौपाल में महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनके निदान का निर्देश दिया। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ करण पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार की यह योजना पक्के मकान में रहने की गरीबों की मुराद पूरी कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी इंद्रावती ने बताया,
3: हमारा परिवार एक झोपड़ी में रहता था, पक्का मकान एक सपना जैसे था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे उस सपने को पूरा कर दिया। अब हमारे पास अपना पक्का घर है।
2: अंबेडकर नगर में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। महिला पुलिसकर्मी सार्वजनिक स्थलों, बैंकों, तहसीलों आदि स्थानों पर जाकर महिलाओं को उनके अधिकार और सुरक्षा के बारे में जागरूक कर रहे हैं। मुहर्रम के त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पुख्ता तैयारी कर रहा है। संवेदनशील इलाकों में जगह जगह सुरक्षा चौकियां बनाई जा रही हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने शहर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अंबेडकर नगर में इस समय विकास कार्य तेजी से चल रहा है। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के द्वारा ग्रामीण इलाकों में तेजी से विकास कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और नाली निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अंबेडकर नगर में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज द्वारा मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। कॉलेज प्रशासन अब शाम 4 बजे तक ओपीडी का संचालन कर रहा है। शाम 4 बजे तक मरीजों को अस्पताल की सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में सिर्फ अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में लागू हुई है। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार यादव ने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है और इसका लाभ भी मिल रहा है।
4: अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना को धरातल पर लागू करने के लिए प्रशासन सक्रिय है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जनपद के कृषकों एवं उद्यमियों को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राप्त लक्ष्य एवं अनुदान आदि की समीक्षा की गयी। बैठक में जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत इच्छुक कृषक अपना पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद अंबेडकर नगर को विभिन्न उद्यानिक कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, जिनमें सब्जी क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार, फल क्षेत्र विस्तार, मसाला फसलों का विकास, प्याज क्षेत्र विस्तार, फेसिंग मल्चिंग तथा सघन बागवानी कार्यक्रम शामिल। किसानों को टिशू कल्चर, मशरूम उत्पादन इकाई, EDBE, वर्मी वेड तथा मल्चिंग जैसे कार्यक्रमों का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जनपद के कृषकों से अधिक संख्या में योजना का लाभ

0: लेने हेतु समय से आवेदन करने की अपील की है।
1: अम्बेडकर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय निगम का।
2: जनपद के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद विगत 5 जून को पहली बार बांदा पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बाद में स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि डबल इंजन सरकार के द्वारा बांदा का बेहतर विकास किस तरह से हो, इसको लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जनजीवन किस तरह से सुगम और व्यवस्थित हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जनपद के अधिकारी सरकार की आशा के अनुरूप जनता की बेहतर सेवा कर रहे हैं। जहां असुविधा होगी वहां और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह ने वार्ता के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा,
3: केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करके सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से चर्चा करते हैं। जब भारत पे संकट हो तो विदेशी नागरिक नहीं, भारत के नागरिक बन करके देश के प्रधानमंत्री जी का साथ दें। भारत की न्यायालय परीक्षण कर रही है कि राहुल गांधी भारतीय हैं भी या नहीं, इसी कारण वो भारत के विपरीत चर्चा करते हैं।
2: जनगणना कार्य को पूरा करने में प्रदेश में बांदा जनपद प्रथम स्थान पर है। बांदा में काफी तेज गति से जनगणना का कार्य संपन्न हुआ है। इस कार्य में समयबद्ध तरीके से बेहतर कार्य करने वाले प्रगणकों को जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस वर्ष बांदा पूरे देश में सबसे अधिक तापमान वाला जनपद बना रहा। इसके बावजूद भीषण गर्मी में भी यहां जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों ने पूरे मनोयोग से कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया। बांदा के जिलाधिकारी अमित आचेरी ने बताया कि प्रभावी मॉनिटरिंग एवं जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के फल स्वरूप सिर्फ 15 दिनों में कार्य पूर्ण कर जनपद बांदा ने डिजिटल हाउस लिस्टिंग संबंधी कार्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया,
4: बांदा पूरे प्रदेश में सबसे पहला जनपद बना जिसने अपने फेज 1 सेंसस को पूरा किया, और इसके लिए यहाँ के सभी बांदा के जनपद वासी सबको मैं शुक्रगुजार हूँ। ये सबने इतना कॉपरेट किया हमारी टीम्स के साथ, और हमारे न्यूमरेटर्स, चार्ज ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिशियल्स, फील्ड ऑफिसर्स, ये सभी बधाई के पात्र हैं, और इन सब की मेहनत के कारण हम लोग ये मुकाम हासिल कर पाए हैं।
2: यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य विगत 28 मई को बांदा पहुंचे, जहां वे जनपद के चिल्ली गांव में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम के समापन में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाद में मुख्यमंत्री ने भाजपा जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। जनपद के चिल्ली गांव में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रगति के साथ छेड़छाड़ करने के परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमने पेड़ काटे लेकिन लगाने का काम नहीं किया। जल का दोहन तो किया लेकिन संरक्षण नहीं किया। हमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि सभी जगह जनता की सुनवाई हो, साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं की समस्याओं का भी समय से निस्तारण हो। कांग्रेस के द्वारा महंगाई पर प्रदर्शन करने को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा,
5: ऊर्जा संकट के समय एक गंदी राजनीति करने वालों को जनता ही जवाब दे। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश ने डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम न बढ़ाए। सबसे कम दाम बढ़ाने का काम कहीं हुआ है तो भारत में हुआ है।
2: पुलिस ने बांदा नगर क्षेत्र में नकली और मिश्रित गुटखा निर्माण करने वाली फैक्ट्री बरामद कर मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, और उसके कब्जे से लगभग 2 लाख की कीमत के निर्मित व अर्ध निर्मित गुटखा और गुटखा बनाने की सामग्री सहित बड़ी कंपनियों के डुप्लीकेट रैपर भी बरामद किए हैं। बांदा की सहायक पुलिस अधीक्षक नेविष्टक ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के कालूकुआं मोहल्ले से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मकान पर नकली व अपमिश्रित गुटखा बनाया जा रहा है। जानकारी होने के बाद तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां मौजूद गुटखा निर्माण कर रहे एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, जिसके पास से पुलिस को अवैध गुटखा बनाने वाली सामग्री सहित भारी मात्रा में निर्मित व अर्ध निर्मित गुटखा बरामद हुए हैं। जनपद के कमासिन क्षेत्र में 74.91 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सिंह वाहिनी पंप नहर परियोजना का कांड अब अंतिम चरण पे है। 2.5 साल में इस परियोजना का 90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नवंबर माह तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। इस कार्य की शुरुआत दिसंबर 2023 को हुई थी। इस आधुनिक पंप नहर की क्षमता 50 क्यूसेक की है। कमासिन और इसके आसपास के दर्जनों गाँव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या होती है, लेकिन सिंह वाहिनी पंप नहर के निर्माण से अब किसानों की यह समस्या दूर हो जाएगी।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
6: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 9:25 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवा रहे हैं कलाकार कविता सक्सेना के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: लीजिए, पेश है कार्यक्रम का अगला लोकगीत।
1: सूरजमुखी ना जाइबे ना जाइबे।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं कलाकार कविता सक्सेना के गाए रुहेल खंडी लोकगीत।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम धरती गाती है आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार कविता सक्सेना के गाए रोहेल खंडी लोकगीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कलाकार कविता सक्सेना के गाए रुहेल खंडी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 10 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि ये एक फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होता है और इसमें आपके भेजे गए पत्र और व्हाट्सएप मैसेज हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ नमित राज काफ़ी समय से आपके समक्ष गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके समक्ष अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं। और कार्यक्रम गीत तुम्हारे में अब जुड़ी हैं हमसे हमारी एक नई साथी। अपना परिचय दीजिए।
1: नमस्कार साथियों, मैं शबनम और अब हम दोनों यानी नमित और शबनम मिलकर आपके साथ आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत तुम्हारे को स्टार्ट करते हैं और आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जो आप हमें काफ़ी देर से भेज रहे हैं उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और देखते हैं कि आपने आज हमारे लिए क्या क्या फरमाइश भेजी है।
0: फरमाइश हम शबनम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, लेकिन देखिए क्योंकि हमारे जो पुराने श्रोता हैं वो जानते हैं कि किस तरह से उन्हें मैसेज भेजना होता है कार्यक्रम में, लेकिन इस बीच हमारे कुछ नए श्रोता भी हो सकता है हमसे कार्यक्रम में जुड़ेंगे, तो उन्हें बता दीजिए कि किस तरह से हम फरमाइशी मैसेज भेज सकते हैं और किस नंबर पर हमें ये मैसेज भेजना है।
1: तो श्रोताओं, आप हमें मैसेजेस भेजने के लिए हमारा नंबर नोट करिए और याद रखिए कि आपको हमें व्हाट्सएप मैसेज करने हैं। तो जल्दी से नंबर नोट कर लीजिएगा 9457078288। मैं नंबर एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 9457078288। तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करिए और भेजिए ढेर सारे व्हाट्सएप मैसेजेस।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में जो पहली फरमाइश हमें लिखकर भेजी है वो लिखी है अनुरोध फिल्म के गीत की। किशोर कुमार की आवाज़ का ये मधुर गीत है और इसे सुनना चाहते हैं ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश जगताप।
1: और साथ ही और भी हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज आए हुए हैं और ये अगला मैसेज जो है वो हमें भेजा है श्री गणेश अविका आर्ट श्री रामपुर से। भेजने वाले हैं अशोक कुंभार, अविका जीविका, सानू कुंभार, अर्चना कुंभार।
0: कोयते वस्ती पुनावले से अजय सोनवड़े, करिश्मा सोनवड़े, अविका सोनवड़े और साइशा सोनवड़े।
1: और अगला मैसेज हमें आया है उमर खेड़ महाराष्ट्र से। भेजने वाले हैं अभिजीत, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश। और बदलापुर मुंबई से प्रणीता, सिद्धांत और अर्जुन।
0: आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से ये मैसेज हमें लिख भेजा है वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर उर्फ परी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कुंभार गली इसी गीत को सुनना चाहते हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। और इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है पोफाली जिला यवतमाल से। फरमाइश करते हैं जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी।
1: और मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से भी हमें इस गीत के लिए फरमाइश आई है और भेजने वाले हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून।
0: शेरकोट से आप हैं निज़ामुद्दीन, रऊफ अहमद, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद हन्नान, महक, रमश।
1: और मजनू का टीला से हमें ये व्हाट्सएप मैसेज मिला है, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।
0: और इस गीत की फरमाइश के लिए अंतिम मैसेज हमें प्राप्त हुआ है दाऊद सराय सहारनपुर से। फरमाइश करता कौन है शबनम?
1: अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी।
0: तो लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म अनुरोध से ये खूबसूरत सा गीत।

0: तो श्रोताओं, इस प्यारे से गीत को सुनने के बाद फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और हमारे पास इस कार्यक्रम में बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो हैं वो और आ चुके हैं, और ये पहला मैसेज हमें आया है पद्मा टॉक टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, और भेजने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी। और एक और मैसेज हमारे पास है शाहजी नगर देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता। और बटिंडा रोड मंडी डबवाली से हमारे पास मैसेज आया है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तान्या नारंग। अगला मैसेज है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी।
1: जिला मुरादाबाद, ग्राम दोलापुर, उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। अगला मैसेज भोला कॉलोनी घरौंदा, जिला करनाल, हरियाणा से, फरमाइश करते हैं बिजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से ये मैसेज हमें भेजा है सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने ने। सदर बाजार कुरावली से आप हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। और ये मैसेज हमें लिख भेजा है भागलपुर बिहार से अश्विनी कुमार और दिलीप सोनी ने। श्रोताओं, आप सभी सुनना चाहते हैं याराना फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, तो लीजिए आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम गीत तुम्हारे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। श्रोताओं, हम इस कार्यक्रम में आपके मैसेजेस शामिल कर रहे हैं और आपकी पसंदीदा गीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश हमारे पास लगातार आ रही है और उन्हीं में से हम कुछ मैसेज शामिल कर लेते हैं। जो पहला मैसेज हमारे पास आया है वो है, नई बस्ती गंज डुंडवारा से भेजने वाले हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी, और इन्होंने फरमाइश की है।

0: और ये अगला मैसेज हमें मिला है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। भेजने वाले हैं अभिजीत, श्रीमती सरिता, प्रणीता सिद्धांत, प्रिंस एकांश और अर्जुन। उत्तम नगर दिल्ली से हमें मैसेज आया है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल का।
1: ये मैसेज हमें लिख भेजा है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से, और फरमाइश करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। जय जिनेंद्र श्रोता संघ पर भड़ी, महाराष्ट्र से आप हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और इनका परिवार। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति, पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। तो लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं अपने रंग हजार फिल्म से ये गीत।

0: भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है फिल्म नाम गुम जाएगा के गीत की। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ का ये गीत है और इस गीत को सुनना चाहा है गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण और मनोज भ्याण ने। इसी गीत के लिए फरमाइश हमें लिखकर भेजी है फुलोंग निज़ामाबाद तेलंगाना से MA वहीद रोमानी, डॉक्टर मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद फ़ासी, मोहम्मद जुनैद, ज़ुबैर मुकराम, नोमान फुरकान, जाकिर और मोहम्मद फाजिल ने। किशोर नगर अमरावती

थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। एक अन्य मैसेज इसी गीत के लिए शामिल कर रहे हैं। ये मैसेज हमें आया है गुमला झारखंड से। लिखने वाले हैं SM जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल होदा। और इस गीत की अंतिम फरमाइश सलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराज उद्दीन ने हमें लिखकर भेजी है। तो लीजिए श्रोताओं, फिल्म नाम गुम जाएगा से सुनते हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे। तो आइए श्रोताओं, शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में आपके और मैसेज। और ये मैसेज हमें आया है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। भेजने वाले हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। और इन्होंने फरमाइश की है फिल्म ससुराल के गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत। तो श्रोताओ, हम इनके फरमाइश का गीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन और भी मैसेज हैं, उन्हें भी हम आपके समक्ष आपके
1: आपकी पसंद के गीत हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, जो भी फरमाइश आपने हमें लिखकर भेजी है। लेकिन इस गीत के साथ कुछ अन्य श्रोताओं को शामिल कर लेते हैं शबनम।
0: हाँ, और अगले हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है नवी दिल्ली से। भेजने वाले हैं गुरमीत सिंह मीता। और एक और मैसेज है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। भेजने वाले हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे कुमार, संचित कुमार, प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हमें ये मैसेज आया है अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे का। और इसी के साथ ही अगला मैसेज है गांव हीरा वाली फाजिल का पंजाब से। भेजने वाले हैं सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु,
1: नेहरू चौक पैठण से ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है। फरमाइशकर्ताओं के नाम हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से आप हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुर पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। ये मैसेज हमें लिखकर भेजा है रघुवीर नगर से। फरमाइश करता है दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। हीरम ध्यानपुरा मुरादाबाद से ये मैसेज हमें भेजा है साबिर अली ने। तो आपके मैसेज को भी हमने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। इसी गीत की फरमाइश हमें फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा ने भी की है। और इस गीत की अंतिम फरमाइश
0: हमें आई है हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से। और ये फरमाइश के इस फरमाइश को करने वाले हैं मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर।
1: तो लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म ससुराल का ये खूबसूरत सा गीत। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगली फरमाइश हमें जो मिली है वो मिली है आए दिन बहार के फिल्म के गीत की। मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गीत है और इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है मोहल्ला अफगानान शेरकोट से। फरमाइश करता है नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत। विलेज खटाई डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से उमैजा, अब्दुल हादी और माज बाबू। ग्राम गाधारोना ज़िला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी, बिमला गिरी, भारत गिरी, सोनिया गिरी, बलराम गिरी, मधु गिरी, सिमरन गिरी, गोविंद गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी और दिव्य गिरी। लोहारी सराय नगीना से आप हैं फौजिया, आपने भी यही गीत सुनना चाहा है। एक अन्य मैसेज हमें मगनपुर झारखंड से मिला है अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली, बेबी निशा और इनके सदस्यों का।
1: और अगला मैसेज हमें मिला है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालवाड़ा राजस्थान से। भेजने वाले हैं हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी और मन भावना शोभा और कपिल। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवान, और इन दोनों ने भी हमें ये मैसेज भेजा है। और अगला मैसेज आया है गांव राय खाना ज़िला भटिंडा पंजाब से। भेजने वाले हैं परमिंदर सिंह सोनी, करण सोनी, रानो दीपू, वीरपाल कुल और कुलदीप। पोटिया कला दुर्ग से हमें मैसेज आया है संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू का।
0: बिलराम गेट कासगंज से आप हैं एम असलम सैफी, जैबनिशा बेगम, अकरम सैफी, जाहिद सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी और आबाद खान। और इस गीत की अंतिम फरमाइश
1: हमें आई है शास्त्री नगर बीड शहर से। भेजने वाले हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईंराज सपकाल और विशाल सपकाल। तो आइए श्रोताओं, इन आप सबकी फरमाइश पर हम सुन लेते हैं ये गीत।
2: दिल से

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे। तो श्रोताओ, इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं आपके भेजे हुए व्हाट्सएप मैसेजेस। तो अगला मैसेज हमें आया है तलहा का, और ये भेज रहे हैं लुहारी सराय नगीना से। और एक और मैसेज हमारे पास है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से। इस मैसेज को भेजा है अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आसमा, दीपक और अनुश्री ने। ऑरेंज सिटी नागपुर से बिट्टल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन और पवन राजे ने भी हमें मैसेज भेजा है। और छत्रपति संभाजी नगर से महेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज ने हमें मैसेज भेजा है। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से हमें मैसेज आया है विनेतपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी और सुनील पाठक जी का। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से हमें अगला मैसेज भेजा है रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी जी ने।
1: श्रोताओं, एक मैसेज हमें मोताला महाराष्ट्र से भी मिला है। आप हैं विजय सुरलकर, रतन माला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। जलगांव जंक्शन से यह संदेश हमें मिला है दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का। जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से आप हैं विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। ये मैसेज है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। और ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। श्रोताओं, हमें आप सभी लोगों ने सुनना चाहा है सनम फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू के स्वर में। तो लीजिए, पेशे खिदमत है ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे के अंतर्गत सनम फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें लिखकर भेजी है मशाल फिल्म के गीत की। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ का ये गीत है, बड़ा खूबसूरत गीत है। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे कुछ अन्य श्रोता भी, जिनके नाम हम कार्यक्रम में अब शामिल करने जा रहे हैं। ये फरमाइश हमें लिख भेजिए कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा ज़िला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। सहारनपुर से आप हैं आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग। चकला बाज़ार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल और इनका परिवार। मुजफ्फरपुर बिहार से आप हैं आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार।
1: रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी और मोहम्मद यासीन अंसारी और साथ हैं सुदेश चौहान। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहुजा ने भी हमें संदेश भेजा है। साथ ही गांव जाखोदा राजस्थान से ये संदेश हमें मिला है शंभू दयाल खटक, विमला देवी, आमरजिक खटक, सुंदर लाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा का।
0: बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से आप हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। ये मैसेज हमें लिखकर भेजा है परी महल कासगंज से, आप हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली। मीरसराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान।
1: और कासगंज से ये मैसेज हमें आया है मास्टर राधे श्याम जी का। और साथ ही अगला मैसेज है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से, भेजने वाले हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और उनके पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह।
0: और श्रोताओं, इस गीत की अंतिम फरमाइश जनकपुरी सहारनपुर से आई है। फरमाइश करते हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं
1: कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

श्रोताओं, अब इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत तुम्हारे यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में सुनते हैं ये पहला गीत आतिफ असलम की आवाज में, फिल्म टाइगर जिंदा है से।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म गजनी से। गीत को लिखा है जावेद अली और सोनू निगम ने, और गीत के बोल हैं है गुजारिश। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

जावेद अली और सोनू निगम की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत फिल्म गजनी से, जिसमें मोहब्बत के लिए गुजारिश की जा रही थी। जी हाँ श्रोताओं, मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा दिली सुकून है कि इंसान अगर इसमें पड़ जाए तो उसे फिर ज़माने भर की खबर नहीं होती। तभी तो वो गुजारिशें करता है, मिन्नतें करता है और सारी दुनिया उसे खुशगवार लगती है। और जब दुनिया खुशगवार लगती है तो वहीं से हमारा जो संगीत है वो उभर कर आता है, ये प्यारे प्यारे गीत उभर कर आते हैं। श्रोताओ आइए, जब गीतों का सिलसिला चल ही रहा है तो कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं एक और गीत फिल्म आशिकी टू से। आवाज़ है अरिजीत सिंह की और गीत के बोल हैं मिलने हैं मुझसे आई। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हैं, मैंने प्यार किया। श्रोता, फिल्म है मैंने प्यार किया और गीत के बोल हैं दिल दीवाना। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। श्रोताओं आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म बलमा से। आवाज़ें हैं आशा भोंसले और कुमार सानू की और गीत के बोल हैं अगर जिंदगी हो। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, जिसके प्रायोजक हैं NCERT।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम

0: शंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। यह झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: मंगल पांडे।
3: हाँ, मंगल पांडे। 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी, खुद करनी होगी,
5: खुद करनी होगी, सही कहे।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
6: हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसा चल नहीं सकता, नहीं।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
7: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे तीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
8: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
7: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्त पर झूलना पड़े,
8: बिल्कुल
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
7: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो, मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
9: हम पांडे को अरेस्ट मांगते हैं।
10: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब
11: जिंदाबाद,
10: इंकलाब जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
12: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
0: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
9: अरेस्ट करो,
12: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे,
13: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे।
0: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली। और मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा।

0: Hum, bande com ti cona manta hai. Durant hospital pejo.
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, हुँ?

0: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
1: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
0: सैनिक अदालत ने 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
1: इसके बाद क्या हुआ दादी?
0: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता, जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा।
0: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
2: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बलबेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
1: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
0: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा।
0: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
4: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
5: तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
6: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
5: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
6: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
5: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
6: अच्छा माँ।
7: माँ,
6: लो, देवेंद्र भी आ गया।
7: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
5: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
6: ठीक है माँ।
7: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
6: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
7: ये देखो दीदी, ये मारा।
6: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
7: अरे ये मारा।
6: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
7: बंद कर दिया होगा।

0: जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
1: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
2: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
0: अच्छा माँ, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
3: हमें अंदर आने दो।
0: अरे क्यों?
4: ए लड़की रास्ते से हट जा।
0: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
3: लड़की हट। माँ ये चाकू देख रही है ना,
4: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
0: अरे
4: मैं बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
0: माँ
4: हट रास्ते से।
0: माँ क्या हुआ? देखो जल्दी आओ। ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
3: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
0: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
3: ये चाकू देख रही है ना,
0: छोड़ दो। नहीं मेरी माँ को कुछ मत करो।
1: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
3: जल्दी
1: याद नहीं कहाँ रखी है। छोड़ दो,
4: बहाने बाजी करती है। जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
1: अरे मेरे पास को छोड़ो,
0: मेरी माँ को छोड़ो।
3: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
4: सुना सुना, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
1: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
0: चोर तो उस कमरे में गए,

0: फोन करती हूँ। देविंदर तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
1: अच्छा।
0: हेलो।
2: हाँ बेटा बोलो।
0: पापा।
2: हाँ
0: पापा।
2: हाँ बोलो बेटा।
0: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
2: कौन घुसा है?
0: माँ को बहुत मार रहे हैं।
2: नहीं नहीं, अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
0: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
1: अच्छा।
0: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ
3: बचाओ।
4: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
5: अरे कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को।
6: वाह वाह वाह,
5: कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
7: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
5: देखो ना सबकी जान
7: बहादुर है मेरी बच्ची।
4: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार।
10: उमंग उमंग उमंग उमंग।
11: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं आइए अब एक नजर डाल लेते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

कार्यक्रम कानून की बात आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुन सकेंगे। समय रहेगा संध्या के 7:32।

आज दिन के 12:30 पर आप आनंद उठा सकेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम मिड डे मेलोडी का।

दिन के 1:15 पर महिलाएं सुन सकेंगी कार्यक्रम घर संसार, जिसमें चर्चा का विषय होगा मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस। साथ ही लघु नाटिका सपने और इच्छाएं भी आपको सुनवाया जाएगी। आलेख होगा नीतू अग्रवाल का, निर्देशन होगा अंकित सैनी जी का और प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा जी। दिन के 2:30 पर व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम संदेश.com का आप आनंद उठा सकेंगे।

संध्या के 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में सुनिएगा सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना। युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी सुन सकेंगे संध्या के 5:15 पर, जिसमें क्रम रहेगा बूझो तो जाने, कुछ खास है आज यूथ कनेक्ट और कहानी के उस पार।

संध्या के 6 बजे किसान भाई सुन सकेंगे कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। डॉक्टर कमलेश कुमार से नरेश पाल सिंह की बातचीत भी आपको सुनवाई जाएगी।

संध्या के 6:55 पर श्रोता आनंद उठा सकेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम छाया गीत का। 7:45 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में भाई हरजिंदर सिंह के लिखे शब्द आपको सुनवाए जाएंगे। रात्रि 8:00 समय रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत संध्या का। रात्रि 10:00 आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्म गीतों के कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का आप आनंद उठा सकेंगे। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 12:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आप सुनेंगे पंडित ब्रज नारायण का सरोद पर बजाया हुआ राग मुल्तानी। आलाप विलंबित और द्रुत गति 3 ताल में निबंध है। तबले पर संगत कर रहे हैं सुखविंदर सिंह नामधारी।

कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित ब्रज नारायण का सरोद पर बजाया हुआ राग मुल्तानी। आलाप विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध था। तबले पर संगीत संगत कर रहे थे सुखविंदर सिंह नामधारी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म एक था दीवाना से। आवाजें हैं लियोन डिसूजा और सुजेन डी मेलो की।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म पार्टनर से। आवाजें हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल और चौरस की। गीत के बोल हैं दुपट्टा तेरा नौरंगदा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मिड डे मेलोडी में ये गीत फिल्म पार्टनर से। आवाजें थीं सोनू निगम, श्रेया घोषाल और चौरस की। आइए सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म कटी पतंग से। किशोर कुमार की आवाज़ है और गीत के बोल हैं, ये जो मोहब्बत है।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म दिल तो बच्चा है जी से। आवाज है मोहित चौहान की और गीत के बोल हैं अभी कुछ दिनों से। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम का अगला गीत और अंतिम गीत फिल्म बेवफा से सोनू निगम और चौरस की आवाज़ में।

0: श्रोताओ, इसी गीत के साथ कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, दिन के एक बजने को है। आइए अब आप समाचार सुनिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लु और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi is set to participate in a series of high-level outreach programs today on the second day of his visit to Avignon in France for the ongoing G7 summit. However, attention is firmly focused on his bilateral meeting with United States President Donald Trump, scheduled for this evening. This will be the first face-to-face interaction between the two leaders since their last meeting in Washington, D.C. in February 2025. During the talks, both sides are expected to deliberate on ways to further strengthen India-US bilateral cooperation across multiple sectors, along with discussions on key regional and global issues of mutual interest. The Prime Minister will also attend a working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All. The session will include G7 member countries, partner nations, as well as representatives from the International Monetary Fund and the Organization for Economic Cooperation and Development. Besides his meeting with the US President Donald Trump, Mr. Modi will participate in a working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting will bring together G7 leaders, partner countries and chief executive officers of leading artificial intelligence companies to discuss the future of digital innovation and responsible AI development. On the sidelines of the summit, PM Modi is also scheduled to hold bilateral meetings with European Commission President Ursula von der Leyen and German Chancellor Friedrich Merz. Later, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Paris this evening as part of his visit to France. Tomorrow morning, Prime Minister Modi is scheduled to hold meetings with leading chief executive officers. Later, he will participate in the WeaverTech Summit.

0: Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. The Prime Minister said, "It is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade." Prime Minister Modi has highlighted that India's defence capabilities have witnessed significant transformation over the last decade, guided by the vision of self-reliance and powered by innovation, technology and indigenous manufacturing. Sharing a thread of MyGov on his social media account, Mr. Modi explained how the country has strengthened its defence capabilities across air, land, advanced indigenous technologies. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal called on Prince Albert II of Monaco. In a social media post, Mr. Goyal said that during their meeting, they discussed expanding the India-Monaco partnership in sectors such as sustainability, the blue economy, innovation and emerging technologies. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan and Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav chaired a high-level inter-ministerial meeting in New Delhi to review stubble management measures and discuss long-term solutions to crop residue burning. During the meeting held yesterday, Mr. Chauhan highlighted the role of active monitoring by the Stubble Protection Force across 70 tehsils in 14 districts of the National Capital Region. In Puducherry, 3 new ministers were inducted into the cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajvelu and VP Shiv Kolundhu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. In FIFA World Cup 2026, Austria won its first World Cup victory in 36 years with a 3-1 win over Jordan today. Earlier defending champions Argentina also began their World Cup campaign with a dominant 3-0 win over Algeria at Kansas City Stadium in the United States this morning. Lionel Messi scripted history by scoring his 14th, 15th and 16th World Cup goals with a hat-trick in the game. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के जरिए मुंतखब करदा 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को तकरीरी लेटर तकसीम करने के प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुल्क भर में अपनी पहचान बनाई है। पुलिस ने गुज़िश्ता 9 सालों में गुड गवर्नेंस के हदफ को हासिल करने के लिए जिस तरह काम किया है, उसने मॉडल पुलिसिंग की मिसाल कायम की। जनाब योगी ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत में 2.25 लाख पुलिस एहलकारों को मुकम्मल शफाफियत के साथ और बगैर किसी इम्तियाज के भर्ती किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत ने पुलिस एहलकारों की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की है और तरबियती सलाहियत में इजाफा किया है। इस मौके पर वजीर आला ने कहा,
2: यूपी पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना है, उसके डिजिटल वॉरियर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होने और उस भूमिका का हिस्सा बनने के लिए आप सबको अपने आप, हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े खाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है। लाखों नौजवानों को यहाँ नौकरी मिली है और 96 लाख एमएसएमई यूनिट में फिर से पुनर्जीवित होकर के रोजगार के नए अवसरों को सृजित किया है।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के अमन अमान की सूरत हाल, आने वाले त्योहारों, रियासत के 59 अजला में 21 जून को होने वाले नीट इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए खसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी। जनाब

0: योगी आदित्यनाथ ने रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में नीट उम्मीदवारों के किरायों में 50% रियायत का ऐलान किया। वजीर आला ने इम्तिहान से मुतल्लिक अफवाहों, गुमराह किन मालूमात या झूठे दावों को फैलाने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी का भी हुक्म दिया। वजीर आला ने बैनुल अक्वामी योगा डे की तैयारियों का भी जायजा लिया। मुहर्रम के हवाले से वजीर आला ने कहा कि जुलूसों में असलहे की नुमाइश और ऊंची आवाज में डीजे म्यूजिक की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने अमन और हमाहंगी में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अज़्म भी किया। एनटीए के जरिए 21 जून को मुनक़िद होने वाले आइंदा नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान में शफाफियत को बढ़ाने और पेपर लीक होने के इम्कान को खत्म करने के लिए हुकूमत ने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन पैगाम रसाई को 22 जून तक रोक दिया है। एनटीए ने कहा है कि यह पाबंदी नीट के दोबारा इम्तिहान के दिन और उसके फौरन बाद नाफिज होगी। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को यह भी हिदायत दी गई है कि वह 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए पैगाम में तरमीम करने के फीचर को बंद कर दे। रियासत में बढ़ते हुए दर्जे हरारत और गर्मी की लहर के हालात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने बुनियादी तालीम काउंसिल से मुंसलिक स्कूलों और तस्लीम शुदा स्कूलों में गर्मियों की तातीलात 24 जून तक बढ़ा दी है। बुनियादी तालीम और सानवी तालीम महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक अब गर्मियों की तातीलात हर साल 20 मई से 24 जून तक होगी और 25 जून को बाकायदा तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू होंगी। ताहम असातज़ा, शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स और गैर तदरीसी अमला 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में मौजूद रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल-ए-ज़िक्र तरक्की की है। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ इस मौज़ू पर एक ख़ुसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है, तरक्की, एतमाद और अवामी बहबूद के 12 साल। आज इस एपिसोड में हम मुल्की विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए हुकूमती कोशिशों पर बात कर रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया।
0: आज मुहर्रम महीने की यकुम तारीख है। ये महीना गम के लिए जाना जाता है। इसी महीने की 10 तारीख को इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को करबला में शहीद कर दिया गया था। आज यकुम मुहर्रम के मौके पर लखनऊ में शाही जरी का जुलूस शाम 7 बजे निकाला जाएगा। और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम आज अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी, जिसका मकसद वनडे सीरीज में नाकाबिले तस्खीर बरतरी हासिल करना है। लखनऊ के एकानज स्टेडियम में कप्तान शुभमन गिल की क्यादत में हिंदुस्तान का मुकाबला हशमतुल्ला शाहिदी की अफगानिस्तान टीम से होगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 1:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

घर संसार कार्यक्रम सुन रही मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को थारी बहन तनप्रीत की प्यार भरी राम राम। और सुनाओ बहनों, भाई क्या हाल।

0: पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके
1: लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जिंदगी हर पल चंदन का एहसास।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: बहनों, कुछ थारी कुछ मारी, बात करेंगे सारी। ये है सपनों का संसार, हमारा अपना कार्यक्रम घर संसार। और बहनों सुनाओ। देखो बहनों, गर्मी तो बहुत पड़ रही भाई, धूप इतनी प्रचंड भाई, मानो बहुत ही गर्मी हो रही है। और पानी की कमी हो जाए इस जगह सब जगह बहनों आजकल, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही और धरती भी सूख जाए बहनों, मानो कि धरती पे कितनी ही जगह पानी ना बचा बहनों। हरियाली हरियाली भी सूखती जा रही, त्राही त्राही मच रही बहनों चारों तरफ। और बहनों, धरती हमारे जीवन का आधार होवे, पर आज बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण भूमि का इतना नुकसान हो रहा बहनों कि उपजाऊ भूमि जो है वो धीरे धीरे बंजर बनती जा रही बहनों, जिसे कि हम मरुस्थलीकरण कहा जा है। और इसी समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के खातिर बहनों, हर साल 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के खातिर विश्व दिवस जो है वो मनाया जा है बहनों। तो बहनों, जब उपजाऊ भूमि अपनी उत्पादकता खोकर बंजर या रेगिस्तान जैसी हो जावे, इस प्रक्रिया को जो बहनों है मरुस्थलीकरण कहा जा है। और बहनों, ये केवल रेगिस्तानी क्षेत्रों में राजस्थान में ना है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में भूमि की उर्वरता जो है वो कम होने पे ये समस्या जो है वो उत्पन्न हो जा है। जब किसी क्षेत्र में बहनों लंबे समय तक सामान्य से कम वर्षा होवे और जल की गंभीर कमी जो है वो उत्पन्न हो जा है, तो उसे सूखा कहा जा है। सूखा कृषि, पशुपालन बहनों, पेयजल व्यवस्था और मानव जीवन पे गहरा प्रभाव डाले है बहनों। इस सब का कारण जो है बहनों, हम इंसान ही तो हुए है ना भी। आजकल हम वनों को अंधाधुंध काटते जा रहे, जलवायु परिवर्तन होता जा रहा और बढ़ता जो तापमान है, ये सब चीजें जो है वो हमारे सृष्टि पर, हमारी धरती पर इन सब का बहुत ही गहरा असर हो रहा बहनों। जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, असंतुलित कृषि पद्धतियां, मिट्टी का बटाव और भूमि प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण बहनों, ये सब जो है वो मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रमुख जो है वो बहनों कारण है। बहनों, इन सब का जो है जो भी हम आज धरती पे हो रहा है, जो भी प्रदूषण है, वो सबका कारण तो हम मनुष्य ही है ना बहनों। हम लोगों ने ही तो इस प्रकृति को इतना खराब कर दिया है, इतना सब कुछ हमने ही तो किया है, हम मानुष ने ही तो सब कुछ किया है। लेकिन हमें ही चाहिए कि हम इस धरती को कैसे अब हम बदल सके हैं, कैसे सूखा हम उसको कैसे हम परिवर्तित कर सके हैं, सूखा ना हो, ताकि हमारी धरती जो है वो प्राकृतिक रूप से जलवायु, वहाँ यहाँ की जलवायु जो है वो सब ठीक रहे, अच्छी रहे। तो बहनों, इसके दुष्प्रभाव भी तो बहुत हुए हैं। अगर हमारी जो धरती है, सृष्टि है, या हमारी धरती सूखी हो जाएगी तो क्या होगा बहनों? कृषि उत्पादन में कमी आ जाएगी, खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जल स्रोत सूखने लगेंगे, सूखा जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा, लोगों का पलायन बढ़ेगा, गरीबी और बेरोजगार में भी वृद्धि होगी। बहनों, ये दिवस हमें भूमि और जल संरक्षण के प्रति जागरूक करे है। और बहनों, इसके माध्यम से हमारी जो सरकारें हैं, है ना, सामाजिक संगठन है और आम नागरिक पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलके अगर हम कार्य करें ना, संकल्प लें, तो हमें हम जो है वो इस पे काबू पा सके हैं बहनों। यह दिवस हमें याद दिलावे है कि यदि हमने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा न की ना बहनों, तो भविष्य

0: एक गंभीर संकट का हमें सामना जो है वो करना पड़ सके है। तो बहनों, हम अपनी सृष्टि को, अपनी धरती को सूखे से बचाने के खातिर हम कई समाधान भी कर सके हैं। जैसे कि बहनों, हमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना होगा, है ना। वर्षा जल को हमें संचय करके रखना होगा। जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें, उचित कृषि पद्धतियों को अपनावें और बहनों, मिट्टी के संरक्षण के उपाय हमें करने होंगे, ताकि हम जो है वो इसका अपनी सृष्टि को, अपनी धरती को जो है वो उपजाऊ बना सकें। तो बहनों, मरुस्थलीकरण और सूखा केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि मानव अस्तित्व के लिए भी बड़ी चुनौती है। यदि हम भूमि और जल संसाधनों का संरक्षण करेंगे तो आने वाली बहनों, जो हमारी पीढ़ियों हैं, उनके लिए एक सुरक्षित, हरित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। बहनों बहनों, हमें धरती को बचाना है, हरियाली को बढ़ाना है, सूखे और मरुस्थलीकरण को मिलकर दूर भगाना है। तो चलिए बहनों, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज के हमारे क्रम की तरफ। और बहनों, आज है हमारा क्रम, बात है चौकी यानी कि नाटिका। तो बहनों, आज का हमारा विषय रहेगा सपने और इच्छाएं। और बहनों, नाटिका का जो निर्देशन किया है वो किया है अंकित सैनी ने, और प्रस्तुति जो है वो शोभी शर्मा जी की है। और बहनों, इसके प्रतिभागी कलाकार हैं जितेंद्र चौहान, मनीष चौहान, नीतू अग्रवाल, और आलेख दिया है नीतू अग्रवाल ने। तो चलिए बहनों, मिलकर सुने हैं प्यारी सी नाटिका, सपने और इच्छाएं।
1: चौकी चौकी चौकी, बात है चौकी चौकी चौकी चौकी।

0: राधा राधा, अरे बस गाना ही गाती रही है, कुछ देख मत लिए गर्मी कितनी हो रही, जरा सा शरबत बना दे।
1: अजी दुकान से आवाज लगा देते।
0: अरे भाई दुकान से कहाँ, मैं तो घर आ गया सीधा। मैंने कहा भाई शरबत पी काऊ, थोड़ा सा बड़ी गर्मी हो रही है।
1: अच्छा तुम आज आ कैसे गई इतनी जल्दी? तबीयत तो सही हो रही?
0: हाँ भाई तबीयत तो ठीक है, बस गर्मी में थक रहा हूँ, दुकान पे बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। सोचा एक गिलास ठंडा शरबत पिया हूँ, जल्दी से बना दे फिर वापस जाना।
1: बैठो तो सही, सबर तो करो। अब भी लाई और शरबत तो तैयार है। अभी वो चिराग को भी तो दिया था, तुम्हारे लिए भी मैंने बचा के रख लिया था। बोल रही थी इससे कि दुकान पे अपने बाबा को पकड़वा के आ जा, पर चिराग सुने कहाँ, चित्रकारी में लग रिया।
0: चित्रकारी? राधा तुम इसे रोकती क्यों नहीं हो, इसे समझाओ। अरे भाई पढ़ाई का टाइम है, पढ़ेगा तो कुछ करेगा, और पढ़ेगा नहीं तो हमारे जैसा ही रह जाएगा। बस अभी बात करता हूँ इससे। चिराग बेटा चिराग,
1: अजी तुम भी ना बस आते ही घर में शोर मचाने लग गए। अरे कर तो रहा है पढ़ाई भी, खाली समय मिल जाए तो चित्र बना ले, और यो सब करना उसे अच्छा लगे तो करने का एकुना देते।
2: बाबा बाबा क्या हुआ? मैं तो आ ही रहा था दुकान पर शरबत लेकर, बस जरा सा काम रह गया था।
0: कौन सा काम? चिराग बेटा ये जो तू लकीरें खींचता रहे है ना भैया, रंग भरता रहे है, इससे जीवन का गुजारा नहीं होने का।
2: पर बाबा ये तो मेरा शौक है, मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है।
0: और पढ़ाई कौन करेगा भैया?
2: बाबा करता तो हूँ।
1: अजी क्यों पीछे पड़ गए मेरे लाल के? पढ़ाई लिखाई में देखा, यू पीछे ना आए हैं पढ़ाई लिखाई में भी, सब चीजों में अच्छा हैगा मेरा बच्चा।
0: अरे पीछे ना पढ़ूं तो और क्या करूं, मैं दिन रात कमाऊं हूं पर यो पढ़ाई में उतने अच्छे नंबर भी तो नहीं ले पाता।
2: बाबा मैं खूब मेहनत करूंगा, पर आप मुझे कला बनाने से मत रोको।
1: चिराग मेरा बच्चा परेशान मत हो बेटा, अरे कोई तुझे ना ही रोक रिया। अब मुझे तो पता मेरा बेटा सब कर लेगा।
0: चिराग 2 मिनट को मेरे पास बैठ दे। बेटा मैं दिन रात कैसे मेहनत करूं हूं, तब जाकर घर का खर्चा तेरी पढ़ाई का खर्चा उठा पाता हूँ। भाई पूरे दिन दुकान पर बैठा बैठा काम में लगा रहूँ, थक जाऊँ, पर भैया खर्चा पूरे महीने का मुश्किल से ही उठा पा रहा हूँ। और भाई ना कोई बचत है ना कोई तुम्हारे ऊपर और खर्चा कर पाता हूँ।
2: हाँ बाबा मैं समझता हूँ, आप बहुत मेहनत करते हो।
1: और देखो जी, यो तो मुझे भी दिखा है कैसे दिन रात लगे रहो, पर क्या करें जी, जो ना करो तो फिर गुजारा कैसे हो। और देखो जी मैं तो कोई पैसा बर्बाद ना आए करती, इधर उधर को कहीं डालूं कोई पैसा, सारा घर में ही लग जावे।
0: बस तू तो अपने ऊपर लेकर बैठ जा सारी बात। भाई मैं कब कह रहा हूँ कि तू फालतू खर्चा कर रही है, पैसा बर्बाद कर रही है। भाई देख हमारा हाथ तंग है, बाल को भी पढ़ाई में ज्यादा पैसा लग रहा है, तो भाई देख तू भी खर्चा देखभाल कर रहा है और भाई मैं भी खर्चा देखभाल कर करूँ हूँ।
2: बाबा एक तो ये मुश्किल है कि आप पढ़े लिखे कम हो, जिस वजह से आप हिसाब नहीं लगा पाते, इस कारण हमें व्यापार में नुकसान होता है।
0: हाँ तो चिराग भैया मैं यही तो समझा रहा बेटे कि तू पढ़ लिख ले और अच्छे से पढ़ेगा तो आगे जाकर एक सही सी नौकरी मिल जाएगी, और हम जैसे तैसे भैया गुजारा कर ही रहे हैं। भाई हम तो पढ़ ना सके एक अच्छी जिंदगी जी ना सके, भाई हम तो यो चाह रहे हैं कि हमारा बेटा पढ़ ले और भैया अच्छी जिंदगी जीवे और हमारा भी नाम रोशन करे।
1: और हाँ बेटा देख, अब तो मुझे भी ना तेरे बाबा की बात बिल्कुल सही लग रही। सही कह रहे हो जी आप, तू जो यो कला वाला में ज्यादा दिमाग तो लगावे मत, अरे जी लगा के पढ़ाई कर।
2: माँ बाबा आप क्यों नहीं समझते, चित्र बनाना रंग भरना इसमें भी करियर बनाया जा सकता है।
0: चिराग बेटा बस बहुत हो गया। अरे हम चाहते हैं कि तू डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सरकारी अफसर बने, भाई जो अपने साथ साथ हमारा भी नाम रोशन कर सके। पर तू भैया समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भाई ऐसा लग रहा हम तो मेहनत कर कर तेरे ऊपर जो पैसा लगा रहे हैं ना बस वो बर्बाद कर रहे हैं।
1: और देख बेटा यो कलाकारी की तो उम्र पड़ी, अरे पहले तू किसी काबिल बन जा, फिर करते रहियो यो कलाकारी भी, कौन रोक रिया बता।
0: अरे बेटे मैं नहीं पढ़ा पर तू तो पढ़ ले। भाई मैं ये चाह रहा हूँ तू पढ़ लिख कर मेरा भी नाम रोशन करे, अपनी माँ का भी नाम रोशन करे, और बेटे मैं तेरे लिए ही तो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ।
2: बाबा माँ मेरे भी तो कुछ अपने सपने हैं, आप अपनी इच्छाएं मुझ पर क्यों थोप रहे हो, आप क्यों नहीं समझते।
0: अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, जाकर तू अपनी पढ़ाई कर।
2: ठीक है बाबा,
1: ठीक है जी, लो जी तुम भी वो शरबत पियो और अपनी दुकान जाके देखो।
0: ठीक है मैं तो दुकान पर जा रहा हूँ, बाकी से समझा लिए, पढ़ लिख ले वो कुछ थोड़ा बहुत।
1: अजी देख रही हूँ उसे भी, जाओ अपना काम करो, दिन रात घर भी देखो, इन्हें भी संभालो, बेटे को भी संभालो। एक औरत कितने काम करे,

0: माँ माँ माँ।
1: चिराग। हाँ बेटा, आ गया तू स्कूल से। अच्छा चल, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा दूं तेरे लिए।
0: माँ ये तो देखो।
1: ये, हाय चिराग, इतना सुंदर कप! हाय, मैंने तो ध्यान ही ना दिया था इस पे, ये कहाँ से आया? खरीद के लाया बेटा? बड़ा महंगा होगा। अच्छा सुन, तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? तुझे दिया क्या हो किसी ने वैसे? पर कोई देगा भी क्यों तुझे? ये कहाँ से आया हो, कब बता मुझे?
0: मेरी प्यारी माँ चुप तो हो जाओ, ये मुझे स्कूल में इनाम के तौर पर मिला है। माँ मैं फर्स्ट आया हूँ।
1: इनाम? फर्स्ट आया है मेरा बेटा? अरे किस चीज में, बता तो, क्या कर दिया ऐसा तूने?
0: माँ मैंने पेंटिंग बनाई थी, उसमें प्रथम पुरस्कार मुझे मिला है। पता है आपको, सभी टीचर और प्रिंसिपल सर मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे।
1: है, मेरे बेटे की तारीफ कर रहे थे?
0: माँ उन्होंने कहा कि अगर मैं कला पर और ध्यान दूँ तो मैं अपना करियर भी बना सकूँगा और बहुत आगे जाऊँगा।
1: सच्ची? ऐसा कहा उन्होंने?
0: हाँ माँ, माँ मैंने उनसे कहा कि इसमें मेरा कोई भविष्य नहीं है, इसमें मेरी कोई अच्छी नौकरी भी नहीं लगेगी। तो पता है प्रिंसिपल सर ने क्या कहा?
1: हाँ बता तो, क्या कहा?
0: उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुनिया में बहुत लोग हैं जो कला की भी कदर करते हैं।
1: कला की कद्र करते हैं लोग?
0: हाँ माँ, मैंने जब उनसे कहा मेरे माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं पर वे चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनूं, तो पता है सर ने फिर आगे क्या कहा?
1: हाँ बता तो, फिर क्या कहा?
0: उन्होंने कहा तुम्हारे माता पिता सही कह रहे हैं, हर माता पिता के अपने बच्चों को लेकर सपने होते हैं, इच्छाएं भी होती हैं। माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर
1: हाँ पर क्या?
0: सर कहते हैं कि बच्चों के भी अपने सपने होते हैं, उनके अंदर भी अपनी कला और काबिलियत होती है, अपने सपनों का बोझ अपनी इच्छाएं बच्चों पर नहीं लादनी चाहिए।
1: ए, तेरे मास्टर का दिमाग खराब हो गया क्या? हम अपने बच्चों की ना सोचेंगे तो कोई और सोचेगा?
0: नहीं माँ ऐसा नहीं है, वे तो सिर्फ इतना कह रहे थे खूब पढ़ाई लिखाई भी करो पर साथ ही मेरे अंदर जो कला की रुचि है मुझे उस पर भी ध्यान देना चाहिए, मेरे शौक को दबाना नहीं चाहिए। माँ सर कह रहे थे कि वे आपसे और बाबा से बात करेंगे।
1: अच्छा चिराग बेटा, वैसे तो तेरे मास्टर साहब ना सही भी बोल रहा है, और भाई मैं या तेरे बाबा, भाई हम तो इतना ही चाह रहे हैं कि तू पढ़ाई लिखाई से जीना चुराए। अरे तू पढ़ लिख के एक खुशहाल जिंदगी जिए, यो ही तो हम चाह रहे हैं। हमें और क्या चाहिए बेटा?
0: माँ मैं आपकी सारी बात मानूंगा, मैं खूब पढ़ाई करूंगा और अपने माँ बाबा का नाम रोशन करूंगा।
1: हाय मेरा बच्चा, कितना समझदार है। और सुन बेटा, अब ना हम भी तुझे कभी चित्र बनाने से नहीं रोकेंगे। तुझे जिस भी चीज का शौक है ना बेटे, उसे पूरा कर। मैं तेरे बाबा से भी बात करूंगी, तेरे सारे सपने हम पूरे करेंगे।
0: माँ आप कितनी अच्छी हो।
1: ओए ओए मेरा बच्चा चिराग, अब हम कभी तेरे सपनों के बीच में नहीं आएंगे। अब तो मेरा बेटा खुश है ना?
0: हाँ माँ मैं बहुत खुश हूँ। हा हा हा
1: हाय
0: मेरी माँ।
1: मेरा बेटा।

0: चौकी चौकी चौकी बात है चौकी, चौकी चौकी चौकी बात है चौकी।
1: बहनों अभी आप सुन रही थी नाटिका सपने और इच्छाएं। बहनों प्रतिभागी कलाकार थे जितेंद्र चौहान, मनीष चौहान, नीतू अग्रवाल। और बहनों आलेख दिया था नीतू अग्रवाल ने, और निर्देशक था अंकित सैनी जी का, और प्रस्तुतिकरण था शोभी शर्मा का। तो बहनों कैसे लगी आपको नाटिका? उम्मीद करे हूँ मेरी बहनों को पसंद आई होगी। बहनों आपने सुना कि हमें कभी भी अपने बच्चों की इच्छाओं को दबाना ना चाहिए। बहनों उन्हें डांटने की बजाय उन्हें उत्साहित करना चाहिए। अगर बहनों हमारे बच्चे कुछ करना चाहे हैं, अपनी इच्छा से कुछ बनना चाहे हैं, तो हमें उनके बीच में रुकावट ना बनना चाहिए, बल्कि उन्हें और उन्हें हौसला देना चाहिए कि हाँ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। भी हमें उनकी इच्छाओं को कभी भी दबाना ना है, बल्कि उन्हें उत्साहित करना है और आगे बढ़ने के लिए उनके कभी भी रुकावट ना बने। बहनों कोशिश करें कि जो बहनों देखिए, जब भी बच्चे चाहे ना कि हमें ये बनना है या ये हम करना चाहे हैं, तो उन्हें कभी मना मत करो, क्योंकि उसी में ही उनका जो है आगे जीवन जो है वो सफल होवे है। क्योंकि जो हम अपनी मन से अपनी इच्छा से जो काम करें हैं, उसमें हम जरूर जो है वो प्रगति करें हैं, हमें उससे खुशी भी मिले है। और बहनों कभी भी अपने बच्चों को टोके ना। तो बहनों अब हम आगे कार्यक्रम को बढ़ावे हैं, और चलिए आज सुनते हैं एक प्यारा सा लोकगीत निर्देश त्यागी जी की आवाज में।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

बहनों कैसे लगा आपको लोकगीत? भी उम्मीद करे हूँ मेरी बहनों को पसंद आया होगा। तो बहनों अब गर्मियों का मौसम है और तेज धूप हो रही है भाई, पसीना और त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं हो जा हैं। तो बहनों ऐसे में त्वचा की सही देखभाल करना बहुत ही जरूरी हो जा। आज हम बहनों हम बात करने जा रहे हैं कि ग्रामीण बहनें जो हमारी बहनें हैं वो गर्मियों में अपनी त्वचा की देखभाल कैसे कर सके हैं। तो बहनों किन किन बातों का हम ध्यान रख के जो है त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रख सकते हैं? तो बहनों गर्मियों में सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी का सेवन बहुत ज़्यादा करना चाहिए। कम से कम बहनों हमें दिन में 8 से 10 ग्लास जो है वो पानी जरूर पीना चाहिए। पानी की बहनों कमी होने से जो है त्वचा रूखी हो जाए और बेजान हो जाए है। तो बहनों साथ ही मौसमी फल जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी और नींबू पानी का बहनों जो सेवन जो है वो हमें करते रहना चाहिए और शरीर को ठंडक देने के लिए और साथ में त्वचा को भी स्वस्थ रखने की खातिर। तो बहनों मेरी जो बहनें हैं वो खेतों में जहाँ हैं काम करने के खातिर, भी धूप हो, सर्दी हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, मेरी बहनों को तो काम करने जाना ही है खेतों में। तो बहनों ऐसे में जो है बहनों क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो बहनों जब भी बाहर निकलें सिर को दुपट्टे या टोपी से ढकें, है ना, और सूती कपड़े पहने बहनों, और तेज़ धूप से बचने की कोशिश करें। और सुबह 11 बजे से बहनों लेकर शाम के 4 बजे तक धूप सबसे तेज हो गए है, बहुत गर्मी पड़े उस टाइम बहनों, लू चले है उस टाइम, इसलिए इस समय विशेष सावधानी रखें। और बहनों दिन में 2 बार साफ पानी से चेहरे को जरूर धोएं ताकि हमारी जो त्वचा है, हमारा चेहरा है वो खिलखिलाता रहे। बहनों भी सबको चाहिए कि सब यही चाहें कि हमारा चेहरा जो है वो साफ रहे, तो इसके लिए हमें दिन में 2 बार तो बहनों कम से कम चेहरे को जरूर धोएं। मुल्तानी मिट्टी, चंदन या बेसन और दही का घरेलू लेप त्वचा को ठंडक भी दे है और चमक भी दे है। और लेकिन किसी भी चीज़ का प्रयोग करने से पहले बहनों सुनिश्चित कर लें कि हमें इससे कोई हमारे चेहरे पे कोई इसकी एलर्जी तो नहीं हो रही, तो इस चीज़ का बहनों खास तौर पर ध्यान रखें।

0: और बहनों पसीना आने पर साफ कपड़े या रूमाल से चेहरे को पोंछें। दिन में एक बार बहनों स्नान जरूर करें और त्वचा को साफ रखने के खातिर हमें और भी कई चीजें हैं जो हम जिसका इस्तेमाल कर सके हैं बहनों। और लेकिन हमें बहनों त्वचा को साफ रखने से जो है बहनों हमें ना घुमौरियां होवेंगी, खुजली भी ना होवेगी और हम अन्य संक्रमणों का खतरा भी जो है वो कम हो जाए अगर हम अपनी त्वचा को अपने शरीर को साफ रखेंगे। तो बहनों गर्मियों में बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को साफ रखें, पसीना आए तो उसको साफ करें किसी रूमाल से किसी चीज से और अपनी त्वचा का खास तौर पर ध्यान रखते रहिए। बहनों याद रखिए कि स्वस्थ त्वचा के लिए केवल बाहरी देखभाल की नहीं बल्कि संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और अच्छी नींद और स्वच्छता की भी बहुत जरूरत होवे। और बहनों याद रखें कि तो बहनों गर्मियों में थोड़ी सी सावधानी और नियमित देखभाल से जो है वो हम अपनी त्वचा को साफ रख सके हैं, सुंदर रख सकते हैं और सुरक्षित भी रख सकते हैं। और बहनों चेहरे की देखभाल के लिए आप कुछ थोड़े से घरेलू उपाय हैं जो मैं बताती हूँ, आप अपनाकर उसे अपना सकते हो और अपने चेहरे को साफ रख सकते हो। सबसे पहले बहनों बेसन और दही का लेप हम जो बनाकर उसको अपने चेहरे पर लगाएंगे तब भी हमारी त्वचा जो है वो मुलायम बनेगी। एलोवेरा बहनों जो आराम से किसी भी घर में मिल जाए आजकल, उसकी जो जेल होवे बहनों उसको भी लगाने से हमारी त्वचा को ठंडक मिले है और नमी भी बनी रहे है। और बहनों खीरा आजकल सबके घरों में बहुत आता है और खीरे का जो रस है वो अगर हम अपने चेहरे पर लगाएंगे तो उससे हमें ताजगी भी मिलेगी और ठंडक भी मिलेगी। और गुलाब जल बहनों उसको चेहरे पर लगाने से हमारी त्वचा जो है वो तरोताज़ा रहे है। और बहनों सबसे ज़्यादा हर घर में हमें कच्चा दूध, गाँव में तो कच्चा दूध बहुत ही हुए हैं और हर जगह मिले हैं, और रुई की सहायता से बहनों थोड़ा सा कच्चा दूध अपने चेहरे पर लगावें और ये रोज़ लगाएं बहनों। इससे ना तो हमारे चेहरे पर झाइयाँ होंगी और हमारी त्वचा भी जो है वो खिली रहेगी। तो बहनों हमें अपनी त्वचा का भी ध्यान रखना है, अपने शरीर का भी ध्यान रखना है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। और किसी भी नई चीज़ को लगाने बहनों कोई भी चीज़ अगर हम लगाएंगे तो उसको पहले हम एक बार लगा कर देख लें ताकि हमारी त्वचा पर कोई उसका नुकसान तो नहीं हो रहा। तो बहनों अब हम कार्यक्रम को संपन्न करते हैं और आप हमें पत्र जरूर लिखिएगा। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, हमारा पता है कार्यक्रम घर संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन 246763। इसी के साथ अपनी बहन तनप्रीत को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। बहनों राम राम।
1: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 1:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम लोकधारा में आज आपको हम सुनवाने जा रहे हैं ए एस कॉन्ग के लिखे पंजाबी लोकगीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक गीत का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम में आज आपको सुनवाए जा रहे हैं ए एस कॉन्ग के लिखे पंजाबी लोकगीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकधारा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defense Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defense production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26, surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur, 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of pre-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात क्यों कर रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओ के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक एक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जल से जल संबंधों को और मजबूत करेगी। मनीष सोपरे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्यवाहियों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
3: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है।

0: उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात 53 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
1: पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
4: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com। कार्यक्रम संदेश.com में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी साथी शबनम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम WhatsApp मैसेजेस पर आधारित है। इसमें आप हमें WhatsApp मैसेज करके भेज सकते हैं जो भी सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं उसका सही जवाब। तो अभी मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ एक गीत और आपको बताना है कि इस गीत को किसने लिखा था। और सवाल का जवाब आप हमें भेजेंगे इस नंबर पर। तो नंबर नोट कीजिएगा, हमारा नंबर है 9457078288। मैं आपको, ये WhatsApp नंबर है और आपको इस पर WhatsApp करके हमें हमारा सही जवाब बताना है। इन नंबर में एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 9457078288। और सवाल भी मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि मैं अभी आपको एक गाना सुनाने जा रही हूँ और आप सबको ये बताना है कि इस गीत को किसने लिखा था। और सही जवाब के साथ अपना नाम लिखकर आप हमें इस नंबर पर WhatsApp मैसेज भेज दीजिएगा। तो आइए सुन लेते हैं ये गीत और जल्दी से जल्दी भेजिए हमें सही जवाब।

0: श्रोताओं, अभी मैंने आपको ये गीत सुनवाया है फिल्म शापित से, और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये जो गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ उसके लिरिसिस्ट यानी के लेखक कौन है, और उसका सही जवाब है समीर। और सही जवाब हमारे पास बहुत सारे श्रोताओं ने हमें भेज दिए हैं, तो मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ। जो पहला सही जवाब है वो हमें भेजा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, भेजने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित और अमित कुमार राय, और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा है। दूसरा सही जवाब आया है गुजरात से, भेजने वाले हैं अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, और इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब भेजा है समीर। अगला जो सही जवाब है वो हमें भेजा है जिला संभल सिरसा से, सचिन प्रजापति, कुश प्रजापति और वैष्णवी प्रजापति ने। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास मैसेज बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन बहुत से श्रोताओं ने शायद ध्यान से नहीं सुना है कि इसका सही जवाब जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ वही भेजना है। मैंने यहाँ पर आपसे पूछा है कि इस गीत के लेखक यानी के लिरिसिस्ट कौन है, तो बहुत सारे श्रोताओं हमें अलग अलग चीज़ों के जवाब दे रहे हैं, जो इसलिए हम उनके नाम अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते। हम सिर्फ सही जवाब देने वालों के नाम ही अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो ये थे हमारे श्रोता जिन्होंने हमें बिल्कुल सही जवाब भेजा था। अब आगे भी बाकी जो रह गए हैं, बाकी श्रोता भी हमें सही जवाब देते रहिए, क्योंकि मैं अभी एक और गीत आपको सुनवाऊंगी और फिर मैं उसके बारे में आपसे सवाल पूछूंगी। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, DTH पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश.com। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आपको हमें संदेश भेजकर बताना है सही जवाब, जो भी सवाल

तो श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं, और सही जवाब है प्रीतम। और सही जवाब भेजने वालों के नाम हमारे पास आ चुके हैं। उनमें पहला नाम है मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट, जिला बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी और सितारा बेगम। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। और अगला सही जवाब हमें आया है

अगला सही जवाब आया है गांव फ्रांसी जिला हिसार से, और भेजने वाले हैं राजकुमार और प्रमोद कुमार। और एक और सही जवाब हमारे पास है गांधी चौक बाड़मेर से, और भेजने वाले हैं

बबलेश पवार और डैनी पवार और मनीष पवार, और श्रोताओं हमने आपको पहले भी बताया था कि आपको सिर्फ जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उसका सही जवाब और अपना नाम लिखकर संदेश हमें भेज देना है। और कुछ श्रोता शायद हमसे और जुड़ना चाह रहे हैं, तो क्योंकि जो हमारे पुराने श्रोता हैं उनको तो हमारा नंबर अच्छे से याद है और वो हमें लगातार अपने संदेश भेजते रहते हैं, लेकिन नए श्रोता भी हैं जो हमारे प्रोग्राम सुनते हैं लेकिन उन्हें हमारा नंबर अभी सही से याद नहीं है। तो मैं उन श्रोताओं के लिए भी ये नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज भेजिए और सही जवाब के साथ हम आपका नाम अपने प्रोग्राम में फिर ज़रूर शामिल करेंगे। तो आइए श्रोताओं अब सुन लेते हैं हम अगला गीत, और आपको बताना है कि इस गीत को किसने गाया है या किसने इस गीत को अपनी आवाज़ दी है।

कार्यक्रम संदेश डॉट कॉम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने आपसे पूछा था कि जो हमने अभी आपको गीत सुनाया है फूल आहिस्ता फेंको, इसके गायक कौन हैं, तो सही जवाब हमारे पास आ चुके हैं। और ग्राम जुजेला थाना शिवाला कला बिजनौर से सही जवाब हमें भेजा है राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशा आयशा और साइना महविश ने। और अगला सही जवाब हमें आया है शाही मार्केट स्योहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफा चौधरी, अदीप चौधरी और कादिर चौधरी। और श्रोताओं, मैंने इसका सही जवाब आपको बता देती हूँ, सही जवाब है मुकेश और लता मंगेशकर जी। तो अगला सही जवाब आया है बिलाल अहमद का नजीबाबाद से, और इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा है। और भी बहुत सारे हमारे पास संदेश आ रहे हैं जो हमें सही जवाब भेज रहे हैं, और बहुत सारे श्रोता अभी भी वही गलती कर रहे हैं कि वो अपना जवाब सही नहीं भेज रहे हैं, या तो वो कोई फरमाइश कर रहे हैं। श्रोताओं, मैं आपको बता देती हूँ कि हम कार्यक्रम में उन्हीं के नाम शामिल कर रहे हैं जो सही जवाब लिखकर हमारे पास भेज रहे हैं। तो आइए अब हम एक और गीत कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं, और आपको बताना है कि ये जो गीत अब आप सुनेंगे वो कौन सी फिल्म से लिया गया है। और आपको मैसेज, आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजना है, पहले हमने जो आपसे सवाल पूछा है उसका सही जवाब और उसके बाद अपना नाम लिखकर।

श्रोताओं, हमारे पास सही जवाब इस प्रश्न के आ चुके हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये जो आप गीत सुने हैं उस वो कौन से फिल्म से लिया गया है, और सही जवाब है मैं प्रेम की दीवानी हूँ। और सही जवाब भेजने वालों के नाम हैं फराज अहमद, बावर्ची अमरोहा यूपी से, और दूसरा सही जवाब हमें आया है महाराष्ट्र से, और भेजने वाले हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साईं गायकवाड़। श्रोताओं, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने भी हमें सही जवाब भेजा है। इसके साथ ही हंसमुख लाल जिंदल ने हमें सही जवाब भेजा है। तो श्रोताओं, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम संदेश डॉट कॉम। मीडियम वेव 314 दशमलव, और श्रोताओं, इसी गीत के साथ और इन्हीं सही जवाबों के साथ हमारा ये प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। हमारी द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत और आज का अंक लेकर उपस्थित हूं मैं नेहा शर्मा। श्रोताओं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में उनकी आर्थिक सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी चुनौती को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना यानी PMSYM की शुरुआत की। PMSYM एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जो कि रेहड़ी पटरी वाले, मोची सब्जी वाले, घरेलू कामकाज वाले, ईंट भट्टा मजदूर आदि के लिए है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थी अपनी आयु के अनुसार हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं और सरकार भी उतनी ही राशि का योगदान करती है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाती है। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। अब बात करते हैं इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें। इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन करते समय अपना आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और कारोबार से संबंधित जानकारी अवश्य देनी होती है। पंजीकरण पूरा होने के बाद लाभार्थी का नाम योजना में दर्ज हो जाता है और उसके मासिक अंशदान का व्यवस्था बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से हो जाती है।

श्रोताओं, अब बात करते हैं दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस की। साथियों, छोटे दुकानदार, व्यापारी और स्वरोजगार से जुड़े लोग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस ट्रेडर्स शुरू की है। ये योजना 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के उन छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए है जिनका वार्षिक कारोबार निर्धारित सीमा के भीतर हो। इस योजना में लाभार्थी अपनी आयु के अनुसार मासिक अंशदान करते हैं और सरकार भी समान राशि का योगदान करती है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लाभार्थी को 3,000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सहयोग मिल जाता है। ये योजना छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बात करें आवेदन की, तो अपने नजदीकी सर्विस सेंटर पर जाकर कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर आदि के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूर्ण होने के बाद अंशदान की राशि आपके बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से की जाती है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 5:10 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में। आज रात्रि 9:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज के आकर्षण होंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज यूथ कनेक्ट, कहानी के उस पार और फिल्म संगीत।

किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत आज संध्या 6:05 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ के वैज्ञानिक डॉक्टर कमलेश कुमार से नरेश पाल की बातचीत। भेंटवार्ता का विषय है फसलोत्पादन में हरी खाद व अन्य जैविक खादों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया डीएपी के अंधाधुंध प्रयोग से निजात।

कार्यक्रम विविधा में सुनिएगा वार्ताकार सुकुंज शर्मा की पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ता का विषय है समाज का दर्पण साहित्य। इस कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:45 पर।

कार्यक्रम सुगम संगीत में आज हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे भाई हरजिंदर सिंह के स्वर में शब्द। समय रहेगा संध्या 7:45 पर।

सदाबहार नगमों से सजा कार्यक्रम छाया गीत हमारे श्रोता सुनेंगे आज संध्या 6:55 पर। आज रात्रि 8 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या और रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से का आनंद हमारे श्रोता लेंगे। श्रोताओं, ये तो थी रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 5:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: अनुज ने तो अपना आज का सफर पूरा कर ही लिया है और पंछियों ने भी अपने अपने घर का रुख कर लिया है
1: और अब घड़ी की सुइयां भी कह रही हैं बार बार, चलिए शुरू कर लेते हैं ये गीतों और बातों का प्यारा सा संसार।
0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त और होस्ट मोनिका सैनी।
1: नमस्कार, हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी शैली। उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे और हमारे सवालों के जवाब देने का इंतजार कर रहे होंगे।
0: अरे हाँ शैली, को तो प्रोग्राम शुरू होते ही सवाल जवाब करने का मन है, तो चलिए फिर चलते हैं सेगमेंट बूझो तो जाने की तरफ,
1: जिसमें आज हमारा आपसे सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
0: और इस सवाल का जवाब हम तक पहुंचाने के लिए आपको जाना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद पर, और कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना है हमें हमारे सवाल का सही जवाब।
1: अब हम आपको सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत, पर उससे पहले मोनिका, क्या लगता है आज के और भी जितने आने वाले सेगमेंट्स हैं उनके बारे में बता दिया जाए?
0: बिल्कुल, चलो एक्साइटमेंट लेवल को थोड़ा सा डबल करते हैं और थोड़ा सा सस्पेंस भी क्रिएट करते हैं।
1: तो दोस्तों, आगे आपको सुनने के लिए मिलेंगे सेगमेंट्स कुछ खास है आज, कहानी के उस पार और वेंसडे स्पेशल यूथ कनेक्ट।
0: अब किस सेगमेंट में क्या खास होने वाला है ये तो आपको आखिरी तक ही पता चलेगा।
1: तो दोस्तों, प्रोग्राम में आप लास्ट तक बने रहिए, तब तक हम सुनवाते हैं आपको आज की शाम का ये पहला खूबसूरत सा गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
6: हो जाओगे आसास कर लोट कोट,
5: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
7: और डोज में क्या है?
6: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
7: अरे यार चिंटू, तुझे पता है मेरा भाई ना 2 दिनों से बैंक नहीं गया, और उसे पता है मैंने आज बोला तो उसे आज भी बैंक जाने में डर लग रहा था।
8: डर? लेकिन वो क्यों, बैंक वाले कौन सा उसे खा जाएंगे?
7: अरे यार, उसने एक सपना देखा था।
8: सपना? लेकिन सपना और बैंक, इन दोनों का क्या मतलब?
7: उसने पता है सपने में क्या देखा था?
8: क्या भाई, क्या
7: उसने देखा था? उसे ना सपने में एक लड़की चप्पल से मार रही है।
8: तो फिर भी इस सपने का और बैंक का आपस में क्या लेना देना?
7: तुझे नहीं पता क्या, बैंक में लिखा हुआ होता है हम आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं।
6: जी हाँ, मजा आ गया।
8: दोस्तों, अब है टाइम कुछ खास है आज का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू की जो धीरे धीरे हमारी धरती को प्रभावित कर रहा है,
7: जो है मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस।
8: ये दिन हर साल आज ही के दिन यानी 17 जून को मनाया जाता है। इसका पर्पस है लोगों को जागरूक करना कि जमीन का लगातार खराब होना, पेड़ों की कटाई, पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज किस तरह उपजाऊ भूमि को बंजर बना रहे हैं।
7: जरा सोचिए, जिस मिट्टी से हमें अनाज मिलता है, अगर वही मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खो दे तो क्या होगा?
8: खेती प्रभावित होगी, पानी की समस्या होगी और लाखों लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी।
7: लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं।
8: दोस्तों, इस दिन का सिंपल सा मैसेज है, अगर हम अपनी जमीन और पानी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशंस को इसका हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा।
7: और इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
8: सबसे पहला स्टेप है मोनिका ट्री प्लांटेशन, जिसके लिए काफी ज्यादा जागरूक भी करते हैं, और जो है जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ही फायदा मिट्टी और पानी की सुरक्षा में होगा।
7: और इसी के साथ दूसरा स्टेप है वाटर कंजर्वेशन, हमें पानी को वेस्ट करने की बजाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ऑफिशियंट वाटर यूज को अडॉप्ट करना चाहिए।
8: तीसरा

0: स्टेप है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना जरूरी है। ऐसी खेती को मिट्टी की क्वालिटी को प्रजर्व करने और नेचुरल रिसोर्सेज का बैलेंस बनाए रखने।
1: और इसी के साथ फोर्थ स्टेप है, हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा। पेड़ों की अंधाधुंध जो हो रही कटाई है और एनवायरनमेंट एंड लैंड दोनों को नुकसान पहुंचाती है।
0: और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करना होगा, क्योंकि एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन सिर्फ गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि हम सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
1: तो दोस्तों, छोटे छोटे एक्शंस मिलाकर एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। आज एक पेड़ लगाइए, पानी बचाइए और नेचर के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए।
0: तो दोस्तों, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के बारे में इतना ही। अब प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और एंजॉय करते हैं ये सॉन्ग।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
4: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
3: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
5: और डोज में क्या है?
4: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
6: हेलो।
7: हेलो।
6: हाँ जी, मेरी बात सुनीता जी से हो रही है?
7: जी जी, मैं सुनीता ही बोल रही हूँ।
6: मैम, वो आपका ना अकाउंट हैक हो गया है।
7: अकाउंट? क्या, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया?
6: अरे अरे, नहीं नहीं मैम, इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं हैक हुआ है।
7: तो
6: आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है।
7: ओहो, शुक्र है भगवान का, आपने तो बिल्कुल मुझे डरा ही दिया था।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
8: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: तो मोनिका, क्या लगता है अब शुरू कर दिया जाए अपना वेंसडे स्पेशल सेगमेंट?
9: बिल्कुल, और जिसका नाम है यूथ कनेक्ट।
6: तो चलो चलते हैं स्टूडियो के बाहर और बातें करते हैं अपने यूथ साथियों से अपने अलग अलग सब सेगमेंट्स के बारे में और देखते हैं कि वो क्या क्या जवाब देने वाले हैं।
9: बिल्कुल, तो चलो फिर चलते हैं।
6: तो हेलो दोस्तों, आज है वेंसडे और हम आपके लिए लेकर आए हैं यूथ कनेक्ट, जो आप सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और इसमें हम मिलेंगे अपने बहुत सारे साथियों से, जिनसे पूछेंगे अलग अलग सवाल अपने सेगमेंट्स के बारे में, और सेगमेंट्स के बारे में आपको बताएगी हमारी साथी मोनिका।
9: 4 सब सेगमेंट्स होते हैं और मेन सेगमेंट का नाम होता है यूथ कनेक्ट, जिसमें 4 सब सेगमेंट कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला सेगमेंट होता है गलत है तो सही है, जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसका आपको बिल्कुल गलत जवाब देना होता है। और दूसरा सब सेगमेंट आता है हमारा हूबहू, जिसमें आपको अपनी इंस्पिरेशन बतानी होती है कि आप किससे इंस्पायर हैं और किसकी तरह आगे जाकर आप बनना चाहते हैं। और थर्ड सब सेगमेंट होता है हमारा समय की सैर, जिसमें हम आपको मौका देते हैं आपके पास्ट में जाने का, आप अपने पास्ट में जाके क्या चेंज करना चाहते हैं। और आखिरी सब सेगमेंट होता है हमारा अरे दीवानो मुझे पहचानो, इसमें आपको करना होता है अपनी एक अच्छाई और एक बुराई का खुलासा। तो चलिए फिर चलते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं और देखते हैं वो कितने एक्साइटेड होते हैं और कितने ज्यादा नर्वस होते हैं।
10: चलो फिर शैली चलते हैं, हमें एक दोस्त तो सबसे पहले हमारी नजर आ चुके हैं, चलते हैं उनसे जान लेते हैं सबसे पहले उनका नाम। तो आपका नाम
11: विजय।
10: विजय, हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको उनका जवाब देना है। तो आप इंटरेस्टेड हैं?
5: बिल्कुल।
10: तो हमारा सब सेगमेंट है जिसका नाम होता है गलत है तो सही है, उसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि आपको उनका जवाब गलत देना है।
5: जी जी।
10: तो हमारा आपसे पहला क्वेश्चन है, साइकिल में कितने पहिए होते हैं? ओके, नेक्स्ट है, सूरज कहाँ से निकलता है?
5: फ्रिज से।
10: चलिए फिर, आपके जवाब तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो आपसे हम एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आपके पास मोबाइल फोन है तो आप उससे क्या करते हैं?
5: खाना बनाते।
10: अरे वाह, आपकी नॉलेज जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो मोनिका चलो अब हम अपने अगले साथी से मिलते हैं और पूछते हैं उनसे अपने सेगमेंट गलत है तो सही है के बारे में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
11: भव्या।
10: तो भव्या कैसी हैं आप?
11: मैं अच्छी हूँ।
10: चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छी हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे अपने सेगमेंट यूथ कनेक्ट के बारे में, जिसका सब सेगमेंट है गलत है तो सही है, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और जिनके जवाब आपको बिल्कुल गलत है।
11: ओके।
10: पहला सवाल है, पिज्जा कहाँ से आता है?
11: स्कूल से।
10: ओके, और ये बताओ कि घर का दरवाजा किस लिए होता है?
11: नहाने के लिए।
10: वाह, नहाने के लिए। मोनिका, कैन यू इमेजिन कि घर का दरवाजा नहाने के लिए होता है?
11: अरे वाह।
10: और ये बताओ, टूथब्रश से क्या करते हैं?
11: खेलते हैं।
10: खेलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि टूथब्रश से खेलते हैं। और ये बताओ, हम अपनी आंखों से क्या करते हैं?
11: गोटियां खेलते हैं।
10: गोटियां खेलते हैं आंखों से। माय गॉड। और हम अपने कानों से क्या करते हैं?
11: देखते हैं।
10: आंखों से गोटियां खेलते हैं और कानों से देखते हैं। वाह, आपने तो बहुत अच्छे जवाब दिए हमारे सवाल के। आपको कैसा लगा हमसे बात करके?
11: आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। थैंक यू।
10: तो मोनिका चलो अब हम मिलते हैं अपने अगले साथी से, जिनसे हम अपने सब सेगमेंट हूबहू के बारे में क्वेश्चन करने वाले। ये रहे हमारे एक साथी, इनसे सबसे पहले पूछ लेते हैं इनका नाम। आपका नाम?
12: मेरा नाम सुशांत भारद्वाज।
10: तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कैसे हैं आप?
12: हम बहुत अच्छे हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप कैसे
10: हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे अपने सेगमेंट यूथ कनेक्ट के अंतर्गत सब सेगमेंट हूबहू के बारे में, जिसमें आपको बताना होगा कि आप किससे इंस्पायर्ड हैं, या आपकी लाइफ किससे रिलेट होती है, या आप आगे चलकर किसके जैसे बनना चाहते हैं। तो कुशाग, आप हमें बताइए कि आप इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं, आपका सपना क्या है?
12: मुझे अपनी मम्मी पापा की तरह बनना है, मुझे एक टीचर बनना है।
10: और अभी आप क्या करते हैं?
12: मैं अभी स्टडिंग कर रहा हूँ, मैं 7th क्लास।
10: ओके।
12: टीचर बनना मेरा भी पैशन रहा है बचपन से, मुझे लोगों को पढ़ाना और चीजें सिखाना बहुत अच्छा लगता है।
10: तो मतलब जैसे आपको लोगों को पढ़ाना और सिखाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपने क्लास में, अपने स्कूल में जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको चीजें बताते हैं, कोई आपसे कुछ पूछना आता है तो उनको सिखाते हैं?
12: क्लास में अपने दोस्तों को मदद करता हूँ, और मैं जो हमारे स्कूल में छोटे बच्चे रहते हैं मैं उनकी मदद कर देता हूँ।
10: ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अभी आप 7th क्लास में।
12: जी हाँ, जी हाँ।
10: ठीक है, फिर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फोकस कीजिए टीचर बनने के ऊपर। थैंक यू। तो फिर शैली, एक और दोस्त हमें नजर आ रहा है और उनसे बात करने का भी हमें बहुत मन कर रहा है, और उन्हें देख के लग रहा है कि वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो चलो फिर चलते हैं उनके पास और सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
13: तो मेरा नाम अविरल सैनी है।
10: तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्या आप इंटरेस्टेड है?
13: हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ।
10: तो हेलो अविरल, हम आपसे क्वेश्चन करेंगे अपने सेगमेंट यूथ कनेक्ट के अंदर, और जिसमें हमारा सब सेगमेंट है हूबहू, जिसमें हम आपसे पूछेंगे कि आपकी लाइफ में कौन ऐसा है या फिर कोई और ऐसी हस्ती है जिससे आप इंस्पायर्ड हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे हूबहू इनके जैसा ही बनना है।
13: तो मैं अपनी लाइफ में मेरे लिए पहले से ही वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं, जो कि अब नहीं है। इंस्पिरेशन तो है बट वो जा चुके हैं अब दुनिया से। तो रतन टाटा जी मेरी इंस्पिरेशन इस वजह से रहे हैं, पहली क्वालिटी तो ये कि वो अपनी मेहनत और अपनी डेडिकेशन की वजह से फर्स्ट से लेके आसमान तक पहुंचे, और उनका जो काइंडनेस है वो सबसे ज्यादा मुझे इंस्पायर करती है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी लोगों की मदद की है और समाज सेवा की है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर मैं कभी भी सक्सेस अचीव करूं, तो मैं कभी भी लोगों को हेल्प करना चाहूंगा।
10: ये बात तो आपने बिल्कुल सही की अविरल, की रतन टाटा जी जो थे उन्होंने हमेशा काइंडनेस दिखाई, लोगों की मदद की, हमेशा चाहा कि लोग अच्छे से रहें, और जिस भी चीज की जरूरत हो वो उन्होंने प्रोवाइड करने की कोशिश की सभी लोगों को। तो
5: आप इंस्पायर्ड हैं, मुझे लगता है कि रतन टाटा जी से सभी लोगों को इंस्पायर्ड होना चाहिए, और उनकी जो आदतें थी, जैसे आपने काइंडनेस बताई और वो बहुत मेहनत करते थे, तो वो जो आदतें हैं वो सभी लोगों के अंदर होनी चाहिए, है ना। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा हमारे सवाल जवाब, हमारे सेगमेंट। और आप वैसे आप बताइए, आप रेडियो सुनते हैं?
13: हाँ, मैं रेडियो सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं पहले से ही बहुत एक्साइटेड भी था जवाब देने के लिए।
5: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
13: थैंक यू।
5: तो चलो मोनिका, अब टाइम आ गया है अपने अगले साथी के पास जाने का और अपना अगला सब सेगमेंट शुरू करने का, जिसका नाम है समय की सैर। तो इसमें हम पूछेंगे अपने दोस्तों से कि अगर उन्हें मौका मिले अपने टाइम में, अपनी लाइफ में पीछे जाने का, तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट है जिसे एंजॉय करना चाहेंगे। तो हमें मिल गए हैं हमारे साथी, आइए पूछते हैं इनसे इनका नाम। आपका नाम?
14: मेरा नाम ईशिका चंचल है।
5: कैसी हैं आप?
14: मैं बहुत अच्छी हूँ।
5: तो हम आपसे सवाल पूछेंगे अब समय की सैर के बारे में, जिसमें आपको बताना होगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट है जिसे आप पास्ट में जाकर एंजॉय करना चाहेंगी।
14: वो समय मेरा बचपन होगा, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बिल्कुल फ्री माइंडेड होते थे, ना ही पढ़ाई की टेंशन, पूरा दिन खेलते रहना।
5: हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही कि बचपन का जो टाइम होता है, उस टाइम में ना तो हमें पढ़ाई की टेंशन होती है, ना ही करियर की टेंशन होती है, बस खेलते रहो, इधर उधर घूमते रहो, यही सब करना होता है ना। तो आप ये बताइए, आपको हमसे बात करके कैसा लगा?
14: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
5: अच्छा, ये बताओ कि आप रेडियो सुनते हो?
14: जी, आपका हर सेगमेंट सुनते हैं।
5: अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो आज तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी कि आपकी आवाज जो है रेडियो पर आएगी।
14: हाँ, मैं बहुत खुश हूँ।
5: चलिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू ईशिका। तो दोस्तों, हमें हमारे एक और साथी नजर आ गए, चलते चलते धूप के सफर में हमें हमारे दोस्त दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए फिर उनसे बात करते हैं और जान लेते हैं उनसे उनका नाम। तो ये बड़ी प्यारी सी हैं, तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है इनसे इनका नाम जानने का। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं आपका नाम।
15: दीपांशी।
5: तो आप क्या करती हैं?
15: मैं हाउसवाइफ हूँ।
5: ओके, हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप इंटरेस्टेड हैं?
15: यस।
5: ओके, तो हमारा एक सेगमेंट होता है यूथ कनेक्ट, जिसमें हमारे अलग अलग सब सेगमेंट होते हैं। बहुत गलत है तो सही है, समय की सैर और अरे दीवानों मुझे पहचानो। ये आपको इन सब में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग नाम कौन सा लग रहा है?
15: समय की सैर।
5: ठीक है, तो चलिए फिर आपसे समय की सैर कराते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, हमारा समय की सैर सेगमेंट में होता है,

0: सपोर्ट करते जिस तरह से मेरे मम्मी पापा ने मेरा सपोर्ट किया है, तो मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं है।
1: क्या हम जान सकते हैं, मतलब अगर आप बताना चाहें कि उन्होंने आपको किस चीज में सपोर्ट किया था?
0: 2019 में मेरी मेडिकल थोड़े इश्यूज चल रहे थे, उस टाइम पे सब लोग बोल रहे थे कि नहीं कोई नहीं ऐसे इसको, मतलब इसकी तबीयत ज्यादा खराब रहती है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे। उस मोमेंट पे एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे एक फ्रेंड था, मतलब मैं क्लोजली बोलूंगी कि मेरा क्लोज फ्रेंड थे, तो मैं उनसे सपोर्ट की उम्मीद कर रही थी, बट उन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया। एंड इन सब सिचुएशंस में सबसे ज्यादा जो मेरे सपोर्ट किया है, मेरे मम्मी पापा ने किया है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये सबके लिए होता है कि सबसे पहले कोई भी हो पर मम्मी पापा सबसे पहले ही नजर आते हैं और वो ही हमें सपोर्ट करते हैं। तो भगवान से हम यही उम्मीद करेंगे कि आपकी तबीयत ऐसी अच्छी रहे और आपको आपकी फैमिली हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करती रहे। कुछ कहना चाहेंगे आप अपने उस फ्रेंड को?
0: मैं अपने फ्रेंड को बोलना चाहूंगी कि काश वो उस टाइम पे मेरा साथ देते तो शायद सिचुएशन बहुत अलग होती, एंड देन शायद हम लोग अब साथ भी हैं, तो बट एक वो रिश्ता, एक रिस्पेक्ट वाली चीज शायद और ज्यादा थैंकफुल होके निकलती। बट थोड़ी थोड़ी चीजें अप डाउन चलते रहते हैं, तो शायद मे बी उनकी सिचुएशन अलग अलग होगी, बट मेरे लिए वो सिचुएशन ऐसी थी कि शायद वो मेरा साथ देते तो मैं शायद बहुत ज्यादा खुश होती।
1: ठीक है, किसी ने तो सपोर्ट किया और वो सबसे पहले आपके पेरेंट्स थे, ये बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, मुझे शायद मे बी उस टाइम पे एक सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अपने मम्मी पापा को नहीं सोचती थी कि वो इस मोमेंट पे मेरा सपोर्ट करेंगे, बट उन्होंने इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरा सपोर्ट किया, जस्ट बिकॉज मतलब माँ बाप के ऊपर कोई नहीं होता है। ये उस टाइम पे मुझे फर्स्ट टाइम, मतलब पहले मैं थोड़ा सा अपने मम्मी पापा को ऐसे सोचती थी, नहीं वो मेरा सपोर्ट नहीं करते, वो मुझे नहीं मानते, बट उस मोमेंट पे मतलब मैं ऐसे हो गई कि नहीं, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता है।
1: सच में बहुत एक इमोशनल मोमेंट है आपकी ये मेमोरी का, आई थिंक, और आपके लिए भी सेम होगा। तो
0: हाँ,
1: हमें आपसे
0: बहुत
1: बात
0: ज्यादा
1: करके
0: इमोशनल।
1: सच में बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा अपनी ये बात को बता
0: यस,
1: के। एक
0: हाँ, मुझे मुझे मेरा दिल का एक, शायद मैं उनको नहीं कह पाई, शायद मे भी आपके थ्रू वो सुन लें या उनको पता चले, शायद मैं सामने से नहीं बोल पाती, बट आपके थ्रू शायद वो जान पाए कि मैं उनको बहुत बहुत बहुत ज्यादा, मेरे लिए शायद लाइफ में अब है तो वो है।
1: तो क्या आप रेडियो सुनते हैं या फिर आप उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हैं तो वो रेडियो सुनते हैं?
0: हाँ, मम्मी सुनती हैं, पापा जी को तो नहीं पता, पापा जी रिकॉर्डिंग जैसे अगर सेंड कर दी जाए तो सुन लेते हैं, बट वो रेडियो नहीं सुनते हैं, मम्मी सुन लेती हैं।
1: चलिए फिर आज आप अपना ये मतलब सुनिएगा और उनको रिकॉर्डिंग जरूर सेंड करिएगा, तो उन्हें भी बहुत अच्छा फील होगा।
0: जरूर,
1: ओके, थैंक यू।
0: वेलकम।
2: तो दोस्तों, अब टाइम है अपना अगला सब सेगमेंट शुरू करने का, जिसका नाम है अरे दीवानो मुझे पहचानो, और इसमें देखते हैं हमारे अगले साथी कौन है हमारे सेगमेंट में। आपका नाम? अच्छा, ईशा, कैसी हैं आप? हम सबसे पहले आपसे यही सवाल करेंगे।
3: अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे
2: हम भी
3: हैं?
2: बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि आप रेडियो सुनती हैं?
3: बिल्कुल,
2: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप रेडियो सुनती हैं, फिर सेगमेंट्स के बारे में पता होगा। तो ईशा, जिसमें आज हम आपसे सवाल पूछेंगे अरे दीवानों मुझे पहचानों के बारे में, जिसमें आपको अपनी एक क्वालिटी और एक डिसक्वालिटी बतानी है, तो बताइए आपकी क्या क्वालिटी है जो आपको भी पसंद हो, आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको भी पसंद हो?
3: मेरी क्वालिटी ये है कि मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है, किसी भी काम को लेकर लगन से करती हूँ कुछ भी काम हो जैसे कि। और डिसक्वालिटी ये है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है।
2: अच्छा, चलिए ईशा, आपकी क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है कि आप हर चीज को, हर काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबके अंदर ये क्वालिटी जो है होनी चाहिए। और डिसक्वालिटी चलिए, जो आपने कही कि बहुत कॉमन है कि सब लोगों को इरिटेशन हो जाती है जब कोई उनको कुछ गलत बोलता है ना?
3: हाँ जी,
2: तो आपने बहुत अच्छे जवाब दिए ईशा हमारे सवालों को, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। थैंक
3: थैंक यू।
2: यू।
4: दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारा यूथ कनेक्ट आज का पसंद आया होगा। तो चलिए इसके साथ आपको सुनवाते हैं अगला ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों अब टाइम है प्रोग्राम के अगले सेगमेंट कहानी के उस पार का, जिसमें हम सुनेंगे कहानी सिमरन के द्वारा प्रेजेंट की हुई। तो आइए सुनते हैं और एंजॉय करते हैं इस कहानी के एपिसोड 3 को।

नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके साथ सिमरन हाजिर हूँ कहानी भोली का एपिसोड नंबर 3 लेकर। दोस्तों, पहले आपने सुना कि अब भोली धीरे धीरे समझदार, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनने लगी। दोस्तों, ऐसे ही कई वर्ष बीतते गए। भोली अब एक जवान और पढ़ी लिखी युवती बन चुकी है। इसी बीच उसकी बड़ी बहनों की शादियां हो चुकी थी। एक दिन रामलाल को भोली के लिए भी रिश्ता मिला। लड़के का नाम विशंबरनाथ था। वो एक अमीर दुकानदार था, लेकिन उसकी उम्र काफी अधिक थी और वो पहले से विधुर भी था। रामलाल को लगा कि उनकी बेटी के चेहरे पर दाग हैं और वो हकलाती भी थी, इसलिए इतना अच्छा रिश्ता मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है।

0: ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन आ गया। घर में खुशी का माहौल था। बारात धूमधाम से आई। जब दूल्हा मंडप में पहुंचा और उसने भोली का चेहरा देखा, तो चेहरे के दाग देखकर वो नाराज हो गया। उसने शादी रोक दी और कहा कि यदि उसे अतिरिक्त 5,000 रुपए दहेज नहीं दिया गया तो वो शादी नहीं करेगा। रामलाल बहुत घबरा गया। उसे अपनी इज्जत की चिंता होने लगी। उसने समाज के डर से दूल्हे की मान ली और पैसे देने को तैयार हो गया। तो दोस्तों, देखते हैं कि भोली की शादी विश्वंबर नाथ से होती है या नहीं हमारे अगले एपिसोड में, जो कि आएगा कल यानी बृहस्पतिवार को। तो सुनना ना भूलिएगा आपकी कहानी भोली।
1: चलिए फिर अब चलते हैं हमारे आज के सवाल के जवाब की तरफ। हमने प्रोग्राम की शुरुआत में आपसे बूझो तो जाने के अंतर्गत सवाल किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसका सही जवाब है 1885। और अब देख लेते हैं सही जवाब भेजने वालों के नाम,
2: जो हैं मोहम्मद जाहिद अली, भेरूलाल धाकड़, उत्तम कुमार भगत, दिपेश वर्मा, आसिफ चौधरी, गजानन येले, राजेश वर्मा, ताज अंसारी, राजपाल गजबिये, बी कमल, धीरज भाई रबाड़ी, मोहम्मद यासीन अनजान, दिनेश वर्मा, मुन्ने खान, जगदीश धाकड़, सदाशिव थोरात, आकाश रस्तोगी, विजय सुरलकर, आदिश्याम पांडे, सोहन जोशी, एम अफजल ताज, महेंद्र मोदी, शाहजी भोड़के, अरविंद कुमार, पीएस नहावकर, जीशान वारसी, सुदर्शन शाह, जाकिर मंसूरी, हीरामणि वर्मा, शमसूल कुमार राही, दोमेंद्र दोमू, बबलेश पवर, दिग्दर्शन गौड़, नंदन कुमार सिंह, नानक खन्ना, राजकुमार डूडी, दुर्गाराम साहू, विठल सुरोशे, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, फागुराम यादव, लाल मोहम्मद अंसारी, संजय ढिंगिया, आर्यन राज, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मुजफ्फर अली खान, शकील अहमद इदरीसी, सुरेश गगनेजा, नंद कुमार ठाकुर, गंगा सिंह रावत, निसार सलमानी, मुकेश कश्यप, प्रवीण चौहान, जॉन डी कैस्ट्रो, मोहम्मद सईद अब्बासी, सत्येंद्र चंदसोलिया, रंजना राजपूत, आरव राजपूत, ईशिका चंचल, दिलीप भाबर, लाल बाबू दीवाना और मोहम्मद रफीक पवार।
1: चलिए दोस्तों, चलते चलते सुनवाते हैं आपको आज के प्रोग्राम का ये आखिरी गीत।

0: दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लगते हैं आप हमें खत के जरिए भी बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763।
1: आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जिसके लिए हमारा नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियाँ आप हमारे सभी प्रोग्राम्स यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं जिसका नाम है आकाशवाणी नजीबाबाद। आप सभी लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी साथी शैली
0: और अपनी साथी मोनिका सैनी को दीजिए कार्यक्रम

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्य सत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्ज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्ल्यू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्स ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय, आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000

0: करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने, क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें, श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया नरेश पाल सिंह की राम राम। कहिए किसान भाइयों, आपके क्या हाल चाल हैं और आपका काम धाम कैसा चल रहा है? तो भाई, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक से होंगे और आपका काम धाम भी बढ़िया चल रहा होगा, क्योंकि हमारे किसान भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और देर शाम तक अपने कार्य को सही से अंजाम देते हैं और भाई अपने कृषि कार्यों के साथ साथ अपने पशुओं का भी विशेष ध्यान रखते हैं। और भाई, इन दिनों हमारे किसान भाइयों ने धान की नर्सरी लगा दी है, जो कि हमारे किसान भाई 21 से 25 दिन की जब नर्सरी हो जाती है तो फिर उसको वो रोपाई के लिए उखाड़ते हैं, और रोपाई करते समय भी हमें बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। और इसके साथ साथ हमारे किसान भाई कुछ ऐसा अच्छा कार्य करते हैं कि भाई जब वो धान के खेतों में रोपाई करते हैं, उससे पहले गेहूं की कटाई के बाद अपने खेत में हरी खाद बो देते हैं, जैसे सनई है, ढैंचा है और उड़द मूंग है या लोबिया है। तो इन हरी खाद की फसलों को वो जब 45 से 50 दिन की हो जाती हैं तो भाई अपने खेत में वो आराम से उनकी जुताई कर देते हैं और हमारी जो खेतों की उर्वरता है वो बढ़ जाती है, और साथ साथ में भाई हमारे खेतों में जीवांश पदार्थ अच्छा होता है, जिससे हमारे जो आने वाली फसलें हैं उनका उत्पादन अच्छा होता है और उनमें कीट और बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है। तो भाई देखिए, इसके साथ साथ हमारे किसान भाई गन्ने की फसल में सिंचाई भी कर रहे हैं। कुछ किसान भाई हमने गन्ने की फसल में इस समय मिट्टी चढ़ाते हुए भी देखे हैं, जिनकी फसल ज़्यादा बड़ी हो गई हो। और इसके साथ साथ यूरिया और कुछ कीटनाशी का इस्तेमाल भी अपनी फसलों में किसान भाई कर रहे हैं। और भाई, अपने पशुओं की जहाँ तक किसान भाई ध्यान में रखने वाली बात करें तो भाई उनको हरा चारा इस समय खिला रहे हैं, जैसे नेपियर घास है, चरी है, बाजरा है। तो किसान भाई इस समय जो है काफ़ी व्यस्तता का सामना कर रहे हैं, और भाई सिंचाई का तो वो विशेष ध्यान रख रहे हैं। और जो हमारी सब्जियों की फसल है, जैसे भाई लौकी, तोरी, टिंडा और भिंडी, बैंगन, मिर्च, ये जो सब्जियों की फसल होती हैं, इनको जल्दी जल्दी सिंचाई की आवश्यकता होती है और कम पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे खेत में जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए और हल्की हल्की सिंचाई इनमें होती रहनी चाहिए। साथ में हमें इस बात की निगरानी भी रखनी चाहिए कि हमारे खेतों में कीट और बीमारी का कोई प्रकोप तो नहीं है। और भैया, यदि ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे कि कोई बीमारी है या हमारे सब्जियों में कोई कीट लग रहा है, तो भैया उसका निदान भी हमारे किसान भाई तुरंत करें, ताकि नुकसान की भरपाई हो सके या नुकसान से बचा जा सके। और भैया देखिए, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन की।

0: तो भैया ये योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी दिसंबर 2014 में, और यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देशी नस्ल के जो गोवंश हैं उनका संरक्षण करना है और भैया उनकी संख्या बढ़ाना और दूध उत्पादन में वृद्धि करके किसानों की आय को बढ़ाना है। तो मुख्य उद्देश्य यदि हम इस योजना के देखें तो सबसे पहले है नस्ल सुधार और आधुनिक तकनीकों जैसे कृत्रिम गर्भाधान, जिसे आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन के नाम से जानते हैं, IVF और सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करके हम अच्छी गुणवत्ता वाले पशुओं का उत्पादन करते हैं, और उत्पादकता बढ़ाने के लिए देशी नस्ल के जो मवेशी होते हैं उनकी उत्पादकता और दुग्ध उत्पादन को हम स्थायी रूप से इस प्रकार बढ़ाते हैं कि जो देसी नस्ल हैं जैसे भैया साहिवाल है, थारपारकर है और हरियाणा नस्ल की गाय हैं, तो उनकी नस्ल को बढ़ावा देना है ताकि हमारी देसी नस्लों का संरक्षण हो सके। और इसके साथ में गोकुल ग्राम की स्थापना देश में जो है इस नाम से जगह जगह हुई है, और वहाँ पर जो नस्ल संवर्धन केंद्र हैं उनको स्थापित किया गया है और मवेशियों की वैज्ञानिक तरीके से देखभाल की जाती है, अच्छी नस्ल के सांडों का विकास किया जाता है। और इस योजना का संचालन जो भाई हमारे केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग है उसके द्वारा किया जाता है। तो इस नस्ल के तहत वैसे तो भाई हम अपनी देशी गाय के संरक्षण की बात कर रहे थे, तो गाय की गिर नस्ल पर विशेष ध्यान दिया गया और 2019 में जब पशु गणना हुई तो उसके बाद गिर गायों की नस्ल में 70% की वृद्धि देखी गई और साहिवाल हरियाणा जैसी स्वदेशी नस्लों में वृद्धि नहीं हुई और उनकी संख्या में गिरावट दर्ज हुई, जो कि भैया एक शोचनीय विषय है। तो वैसे भाई आप जानते ही हैं कि हमारी जो देसी नस्लें हैं, चाहे वो गिर हो, थारपारकर हो, सिंधी हो, साहिवाल हो या हरियाणा नस्ल की गाय हो, तो भैया इनके जो बछड़े होते हैं या बैल होते हैं भैया वो भी कृषि कार्यों में अच्छा कार्य करते हैं और इन गायों का दूध भी बहुत ही गुणकारी होता है। तो हमारा नैतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम इन गायों की नस्लों को बचा के रखें। और आप जानते ही हैं कि भाई जो देशी गाय और भी छोटी होती हैं तो भैया उनके दूध में कितना गुण होता है जिसको हम अमृत के समान मानते हैं। और भाई जब दूध निकालने की बात होती है, चाहे वो दूध जब हम निकालते हैं, चाहे वो गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, तो भैया दूध दूहते समय हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रख के ही हम दूध का उत्पादन करें, यानी कि अपने पशुओं का दूध निकालें। तो सबसे पहले बात आती है हम अपने पशु को साफ सफाई के रूप में रखें, यानी कि उसकी जो पशुशाला है और बैठने का फर्श है वहाँ पर मूत्र और गोबर का सही से निपटान हो। और दूसरी बात भैया हमारे पशु के शरीर पर बाल और गोबर वगैरह ना लगे हुए हों, ताकि जब हम दूध निकालते हैं तो हमारी जो बाल्टी है या दूध का बर्तन है उसमें वो ना गिरे। और तीसरी बात यह है कि भाई जो हमारा पशु का बच्चा है, चाहे वो गाय का हो या भैंस का हो, तो भैया उसकी भी साफ सफाई हमें रखनी चाहिए, नित्य प्रति नहलाना चाहिए। और जो हम दूध निकालने का बर्तन है उसकी बात करें तो भैया वो निर्जर्मीकरण के द्वारा साफ होना चाहिए, यानी कि उसमें भी कोई कीटाणु वगैरह न हो। और अपने हम साफ साबुन से हाथ धोने के बाद जब हमारा पशु दूध देता है तो भाई हम जब उसका बच्चा बांध देते हैं उसके बाद भी हम साबुन से हाथ धोएं, तभी बर्तन को छूके और अपनी गाय भैंस के थनों को साफ करें। और भाई इसके साथ साथ जो है दूध निकालने का जो स्थान है वो भी एकदम बहुत अच्छा होना चाहिए, वहाँ भी साफ सफाई होनी चाहिए। और जो हमारे गाय भैंस की चूर है जिसमें वो कुट्टी खाते हैं, तो भैया उसमें भी कोई पुराने कुट्टी ज़्यादा नीचे जमने न पाए, नहीं तो उसमें भी भाई बहुत ज़्यादा पिस्सू वगैरह और जो छोटे कीट होते हैं, जंतु होते हैं भैया, वो पनपने की संभावना होती है। और सबसे मेन बात ये होती है कि दूध निकालने की जो विधि होती है वो वैज्ञानिक विधि से हम दूध निकालें, यानी कि कुछ भाई ऐसे होते हैं कि अंगूठा मोड़कर दूध निकालते हैं और कुछ भाई ऐसे होते हैं कि वो एक अंगूठा और उंगली यानी कि चुटकी विधि से दूध निकालते हैं, जो कि अवैज्ञानिक है। और वैज्ञानिक विधि दूध की यह है कि भाई हम अपना अंगूठा सीधा रखें और पूरा भैंस या गाय का थन अपनी मुट्ठी में बांध कर और अंगूठा सीधा रखकर उसको दबाव के रूप में नीचे खींच के, जिसको हम कहते हैं पूर्ण हस्त दोहन विधि। तो उस विधि से यदि हम अपने पशु का दूध निकालते हैं तो पशु हमारा सहज रूप से दूध देता है और उसको कोई दिक्कत या दुख भी अनुभव नहीं होता, और साथ साथ में हमारे पशु के थन भी सुरक्षित रहते हैं। यदि हम अंगूठा मोड़कर दूध निकालते हैं तो हमारे पशु केश जो आयन के नीचे थन होता है उसमें गांठ होने की शिकायत कभी-कभी हो जाती है। तो भैया पशुओं के जो है दूध निकालने से पहले साफ सफाई और स्वच्छ दूध उत्पादन हमें करना चाहिए, और स्वच्छ दूध ही हमें जो है अपने पशु अपने परिवार के लिए या जो बिक्री के लिए हम दूध निकालते हैं तो भैया वो स्वच्छ होना चाहिए, ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और भाई देखिए, अब हमने बातें कर ली और चर्चा कर ली राष्ट्रीय गोकुल मिशन में और दूध निकालते समय, लेकिन अब चलते हैं संदेशों की ओर और यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
6: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
7: देश की धरती तो ना उगले, उगले हीरे मोती।
5: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
6: खुशहाली का नया प्रयोग।
8: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
0: किसान भाइयों ने सुने जरूरी संदेश, और भैया संदेश के बाद आपका कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। और भैया देखिए, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपनी खेती किसानी की ओर, यानी कि खेतों खलियानों में। और भैया आज जो है किसान भाई इसमें जानकारी सुनेंगे फसलोत्पादन में हरी खाद व अन्य जैविक खादों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया और डीएपी के अंधाधुंध प्रयोग से निजात। यानी कि हम जो जैविक खाद है और हरी खाद है इनका प्रयोग करके यूरिया और डीएपी जैसे जो रासायनिक उर्वरक हैं उनसे किस प्रकार से हम पीछा छुड़ाएंगे या उनका प्रयोग किस प्रकार से कम करेंगे, ताकि हमारी मिट्टी की सेहत भी बनी रहे और हमारी फसल को भी अच्छा उत्पादन मिले। तो भैया आज हम इसी संदर्भ में अपने कार्यक्रम में एक जानकारी लेकर आए हैं, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं डॉक्टर कमलेश कुमार। तो भैया क्यों नहीं एक डॉक्टर साहब से हम कर लेते हैं बातचीत। तो आइए सुनते हैं भैया आज की ये नई जानकारी।
9: किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम के बीच हैं डॉक्टर कमलेश कुमार, जो कि वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में, और आज आपसे बातचीत का विषय है फसलोत्पादन में हरी खाद व अन्य जैविक खादों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया और डीएपी के अंधाधुंध प्रयोग से निजात। तो आजकल आप देखते ही हैं कि यूरिया और डीएपी का हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे हमारे किसान भाई कैसे निजात पाएंगे ताकि हमारे किसान भाई की लागत भी कम हो, हमारी मिट्टी भी स्वस्थ हो और हमारी फसलें भी अच्छा उत्पादन दे। तो डॉक्टर कमलेश कुमार, इस विषय पर जानकारी के लिए आपका मैं स्टूडियो में स्वागत करता हूं।
10: धन्यवाद। सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
9: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि जो किसान भाई यूरिया और डीएपी बहुत अधिक प्रयोग कर रहे हैं, उसके क्या नुकसान हो रहे हैं?

0: खाद जो है ये क्या होती है और किसान भाई इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं?
1: देखिए, हरी खाद ऐसी फसलें होती है जिनको आप खेत में उगाकर और उनका जो फ्लावरिंग है, वो उनके जो फूल आएंगे, उससे पहले इनको मिट्टी में पलट दिया जाता है। अगर अपन उदाहरण की बात करें तो ढेंचा, सनई, मूंग और जैसे लोबिया है, इनका भी प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जा सकता है।
0: जी
1: ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक एक्सीटू बोलते हैं, जिसको कि बाहर से लाके जो आपकी आपके हरे पत्तियां हैं, पदार्थ हैं, उनको मिट्टी में मिलाया जा सकता है।
0: जी
1: और एक इन सीटू यानी कि स्थानीय खाद होती है, इसमें और जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है और आसान है किसानों के लिए।
0: जी जी
1: इसमें जो ढेंचा या सनई है, इसको उस खेत में उगाया जाता है जिस खेत में अगली फसल, मान लीजिए कि जैसे धान है, वो लेनी है।
0: जी जी
1: तो गर्मी के समय में और लगभग 45-50 दिन पहले सनई और ढेंचा उगाया जाता है और उसके फूल आने से पहले उसको मिट्टी में पलट दिया जाता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। और हमारे क्षेत्र में अक्सर जो गेहूं की कटाई होती है, उसके बाद जो खाली खेत होते हैं जिसमें हमारे किसान भाई धान उगाते हैं, तो धान उगाने से पहले, गेहूं की कटाई के तुरंत बाद, हमारे किसान भाई अपने खेत में पलेवा कर देते हैं, तो उसमें ढेंचा और सनई बोते हैं।
1: जी हाँ,
0: और जब वो 40 से 45 दिन के बाद फसल हो जाती है, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि फसल की अवधि एक्यूरेट क्या होनी चाहिए, कितने दिन की फसल हम अपने खेत में जुताई करके मिट्टी में मिला दें।
1: देखिए, जो मुख्यतः हरी खाद के रूप में जो फसल प्रयोग होती है,
0: जी
1: वो ज़्यादातर किसान भाई ढेंचा प्रयोग करते हैं,
0: जी जी
1: जिसका जो कि आसान भी होता है। तो अगर ढेंचे की बात करें तो उसमें लगभग 45 से 50 दिन, जैसे बुवाई के बाद में 45 से 50 दिन के अंदर अंदर
0: जी
1: आप जो वो एकदम सही टाइम है, उस अवस्था में जो पौधा है वो उतना ज़्यादा कड़ा भी नहीं होता है, आसानी से मिट्टी में मिल जाता है।
0: जी जी
1: और ज़्यादा से ज़्यादा जो पोषक तत्व तो होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, वो किसान भाइयों को मतलब मिट्टी में मिलते हैं ढेंचा द्वारा।
0: जी
1: तो
0: जी
1: 45 से 50 दिन है वो एकदम
0: ये बहुत अच्छी
1: सही
0: अवधि
1: अवधि
0: है।
1: है। हाँ जी,
0: इसमें जो है, ये जो आपने बताया कि नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर उस समय हमारी फसल में होती है,
1: हाँ जी,
0: हरी खाद वाली की।
1: हाँ जी,
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे सर्दियों में कुछ किसान भाई हरी खाद के रूप में बरसीम, मटर और चना और मसूर के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी सही है?
1: हाँ वो सही है। जैसे आप मटर या इन फसलों की बात कर रहे हैं, तो मुख्यतः इन फसलों का प्रयोग बाद में बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, लेकिन जो आपका
0: खाद के
1: आर्थिक
0: रूप।
1: उत्पाद है
0: जी
1: उसके अलावा जो आपका पौधे का भाग बच गया,
0: जी जी
1: उसको आपको नष्ट करने की या बाहर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी पोषक तत्व तो होते हैं। तो आप ये जो है फसलें, इनको भी मिट्टी में मिलाकर इनका प्रयोग हरी खाद की तरह कर सकते हैं।
0: जी जी जी तो क्या हरी खाद से यूरिया और डीएपी की मात्रा वास्तव में हम कम कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, यदि किसान सही तरीके से और नियमित रूप से अगर इन हरी खादों का प्रयोग करें, तो इनमें जो पोषक तत्व हैं, जैसे मुख्यतः नाइट्रोजन की बात करेंगे,
0: जी
1: तो अगर फसलों की बात की जाए, जैसे ढेंचा की बात की जाए, तो ढेंचा लगभग 60 से 70 किलो नाइट्रोजन जो है वो मृदा में दे सकता है। इसके अलावा बाकी सनई की अगर बात की जाए, वो भी लगभग 70 से 80 किलो नाइट्रोजन जो है वो मृदा में एडिशन उसका होता है।
0: तो डॉक्टर साहब, ये जो
1: तो
0: आप 60 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन बता रहे हैं, तो ये हमारी मृदा में कितना एरिया में, कितने क्षेत्र में होगा?
1: ये प्रति हेक्टेयर की बात की जा रही है कि
0: जी
1: प्रति
0: जी
1: हेक्टेयर 60 से 70 किलो नाइट्रोजन अगर नियमित रूप से और सही टाइम पे अगर उसको मृदा में मिला दिया जाए, तो इस प्रकार से जो आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो मिलेगा,
0: जी
1: उससे जो अगली फसल है उसमें आपका यूरिया और डीएपी है उसकी मात्रा कम प्रयोग करनी पड़ेगी किसानों को, जिससे उनकी लागत में भी कमी आएगी।
0: जी किसान भाई, और कौन सा जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं जिससे यूरिया और डीएपी की जो मात्रा है इसको हमारे किसान भाई कम इस्तेमाल करें या इनकी कम जरूरत पड़े? तो इसके अलावा, हरी खाद के अलावा और ऐसे कौन से खाद हैं या ऐसे कौन से अपघटक हैं, जैव अभिकर्ता हैं, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं?
1: देखिए किसान भाई, हरी खादों के अलावा जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद है, वर्मी कंपोस्ट है जिसे केंचुए की खाद बोलते हैं, इसके अलावा साधारण कंपोस्ट है, तो इनका प्रयोग किसान भाई जो है खादों के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि जो कृषि अवशेष हैं,
0: जी
1: जो फसल के वो अवशेष जो बच जाते हैं, जिनको कई बार किसान जला देते हैं,
0: जी जी
1: तो वो नहीं जला करके उनका अगर सही तरीके से पुनर्चक्रण किया जाए,
0: जी
1: तो उससे आपकी जो मृदा का स्वास्थ्य है वो भी बढ़ेगा और उसमें जो पोषक तत्व तो होते हैं वो भी उनको मिलते हैं।
0: जी
1: यहाँ पे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विचारधारा है या एक तकनीक है उसको बोलते हैं समय

0: एकीकृत कृषि प्रणाली।
1: जी जी,
0: इसमें यह है कि आपका बहुत सारे घटक हैं, जैसे फसल उत्पादन है, फिर पशुपालन है, तो आपके जो कृषि अवशेष बचे उनका प्रयोग आप पशुओं को खिलाने में भी कर सकते हैं
1: जी।
0: उसके अलावा अन्य घटक है जैसे वर्मी कंपोस्ट है, इनमें भी डाल सकते हैं
1: जी जी।
0: और उसके अलावा जो पशुपालन है उसमें जो आपको गोबर और गोमूत्र या बाकी पशुओं का मूत्र वगैरह मिल रहा है
1: जी जी,
0: उनसे ये सारी खाद वगैरह बना के और उनका वापस खेत में प्रयोग किया जा सकता है
1: जी जी
0: तो इससे ज्यादा से ज्यादा जो पोषक तत्व है उनका पुनर्चक्रण होता है।
1: जी
0: इस पुनर्चक्रण की वजह से जो वैज्ञानिक शोध है वो ये बताते हैं कि लगभग 40% तक जो आपके उर्वरक हैं
1: जी
0: उनके प्रयोग में कमी लाई जा सकती है अगर सही तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से इनका पुनर्चक्रण किया जाए।
1: बिल्कुल। तो मैं अपने किसान भाइयों से ये कहूंगा कि जो आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं इसके लिए पशुपालन बहुत जरूरी है।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: और पशुपालन से हमारे किसान भाई आजकल विमुख होते जा रहे हैं और उसका भी एक बड़ा कारण यह है कि आजकल पशु महंगा है और यदि पशु की मृत्यु हो जाए तो किसान भाइयों को बहुत ही जोखिम उठाना पड़ता है। साथ में आजकल कृषि के लिए श्रमिकों की जो है बहुत कमी होती जा रही है, उसलिए भी हमारे किसान भाई जो है पशुपालन से दूर होते जा रहे हैं और सोचते हैं कि रासायनिक उर्वरकों से ही वो खेती कर लेंगे, जबकि रासायनिक उर्वरकों का बहुत ही बड़ा नुकसान हमारी मिट्टी के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए। और साथ साथ में कुछ उर्वरकों के अलावा कुछ ऐसे रसायन हैं जो एक बार तो हमारी मिट्टी में या हमारी फसल में जो है अच्छा काम करते हैं, कीड़े बीमारी मारते हैं और उसके दूरगामी परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं।
0: जी
1: तो
0: हाँ।
1: मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये हमारे यूरिया है, DAP है और जो कृषि रसायन है, इनका क्या विषैला प्रभाव पड़ता है जो हमारी मिट्टी, पर्यावरण और किसान भाइयों के लिए और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बुरा है।
0: देखिए, उर्वरकों का जो प्रयोग है वो साधारणतः फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी,
1: जी
0: लेकिन अगर इनके प्रयोग इनका अगर अंधाधुंध प्रयोग होगा,
1: जी
0: जितनी मात्रा चाहिए उससे ज्यादा अगर मात्रा प्रयोग करेंगे
1: जी जी
0: तो इसके कई प्रकार के परिणाम होते हैं।
1: जी
0: पहली बात यह है कि जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे,
1: जी
0: अधिक यूरिया का प्रयोग करेंगे,
1: जी
0: तो जो फसलें हैं वो थोड़ी सी कोमल रह जाती है, मुलायम रह जाती है।
1: जी
0: जैसे आप गन्ना ही ले लीजिए उदाहरण के लिए, तो अगर वो मुलायम और मुलायम अगर रह गई फसल तो उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं और जो व्याधियां हैं, जो रोग है, उनका प्रकोप अधिक होता है।
1: जी
0: तो बहुत ही संतुलित उर्वरक है, जो संतुलित प्रयोग है वो जरूरी है।
1: जी जी
0: इसके अलावा फसलों के अलावा जो आपकी मृदा है उसमें अगर आप इन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अगर लगातार करते जाएंगे तो उनकी उर्वरकता जो है वो कम होगी और उनके जो भौतिक, रासायनिक और जो जैविक गुण है मृदा के,
1: जी
0: जैसे लाभकारी सूक्ष्म जीव है, वो भी कम हो जाएंगे। तो एक जब आप दूरगामी परिणामों की जो बात कर रहे थे
1: जी
0: उससे आज के टाइम में हो सकता है कि फसल उत्पादन ज्यादा हो एक टाइम के लिए,
1: जी
0: लेकिन थोड़े अगर आगे भविष्य की देखेंगे तो मृदा और फसल दोनों पे इसके हानिकारक परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: जी और इसके विपरीत हरी खाद और जैविक खादों का मिट्टी के स्वास्थ्य पर डॉक्टर साहब क्या प्रभाव पड़ता है, जरा ये हमारे किसान भाइयों को बताइए।
0: इसमें देखिए कि जो मृदा स्वास्थ्य है उसके मुख्य जो घटक हैं वो, जैसे पहला है कि भौतिक गुण, तो जो मृदा के भौतिक गुण हैं इन पे काफ़ी जो इनका प्रभाव पड़ता है हरी खाद का, वो ये है कि इससे एक तो जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है
1: जी,
0: जिससे आपकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाती है और दानेदार बन जाती है।
1: जी जी
0: इसके अलावा मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ती है और जो पानी का रिसाव और जो संचरण होता है वो बेहतर होता है। इसके अलावा जो मृदा अपरदन है वो भी कम होता है।
1: जी
0: तो ये तो थी भौतिक गुण।
1: मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव कम होता है।
0: जी हाँ
1: जी जी।
0: अगर आप रासायनिक गुणों की बात करेंगे तो हरी खाद ना केवल नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाती है बल्कि अन्य जो पोषक तत्व हैं उनकी भी उपलब्धता बढ़ाती है जिससे किसानों की लागत कम होती है।
1: जी
0: इसके अलावा जो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण है वो भी बेहतर होता है और इससे जो पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता है वो भी, जो उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी उससे बढ़ता है। और इसके अलावा अगर जैविक गुणों की बात की जाए तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो लाभकारी सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या कम हो जाएगी अगर अंधाधुंध प्रयोग किया गया इन रसायनों का।
1: जी
0: तो जो हरी खाद वगैरह है इनके प्रयोग से जैविक जो गुण है वो भी इम्प्रूव होते हैं।
1: जी जी
0: जी
1: जो हमारे मिट्टी के छोटे से सूक्ष्म जीव होते हैं
0: जी,
1: चाहे आप उन्हें बैक्टीरिया कहें या एक्टिनोमाइसिटीज कहें
0: जी जी,
1: या केंचुआ कहें, थोड़ा सा बड़ा जंतु हो गया
0: हाँ जी,
1: तो जो लाभदायक हमारे जीव हैं एसिडोबैक्टर एजोटोबैक्टर, इनकी सब की संख्या में इजाफा होता है
0: हाँ,
1: हरी खाद और जैविक खाद के प्रयोग से।
0: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, अब यदि हम किसी खेत की बात करें तो खेत की मिट्टी का हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारी मिट्टी में फला तत्व निर्धारित मात्रा में मौजूद हैं, कम हैं या ज्यादा हैं, तो ये कैसे पता लगेगा हमें कि हमारी मिट्टी स्वस्थ है या नहीं है?
0: देखिए, अगर मिट्टी की ये जांच करनी है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मृदा परीक्षण।
1: जी जी,
0: मृदा परीक्षण से ये पता चलेगा कि आपके जो पोषक तत्व हैं कौन से तत्व की कहाँ पे कमी है और कहाँ अधिकता है। जैसे कई बार एक किसान का खेत एक हेक्टेयर दो हेक्टेयर या जितना भी हो, उसमें जो एक जगह है वहां हो सकता है कि दो पोषक तत्वों की कमी हो
1: जी,
0: लेकिन जो बाकी भाग है हो सकता है वहां वो प्रचुर मात्रा में हो।
1: अच्छा।
0: तो मृदा परीक्षण आप जैसे नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है या जो स्थानीय सरकारी या गैर सरकारी भी अगर कोई लैब है वहां से किया जा सकता है, और वहां से एक सोइल हेल्थ कार्ड भी बनता है
1: जी, जी।
0: उसमें ये पता चलता है कि कौन से पोषक तत्व की कहां कमी है और उसके आधार पर ही किसानों को चाहिए कि वो उर्वरकों का प्रयोग करें। जहां जिस तत्व की कमी है वहीं वहां उसी तत्व का प्रयोग करें। जैसे कई बार नाइट्रोजन फास्फोरस की जरूरत होती नहीं है तो उनका प्रयोग ना करें या कम करें, और कई बार सूक्ष्म तत्व है उनकी कमी होती है तो वहां पे उन सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी जी, बहुत से लोग अंधाधुन यूरिया बिना किसी बात के खेत में मिलाते रहते हैं और पोटास मिलाते रहते हैं, और इसके साथ साथ आप एक चलन और आपको बताएं डॉक्टर साहब, किसान भाई जो है खड़ी फसल में भी डीएपी का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक अनुचित है, और बुआई के समय ही डीएपी का प्रयोग किया जाता है
0: जी।
1: तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि अपनी मिट्टी की जांच कराएं और उसके उपरांत ही अपने जो है कृषि के जो उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल सीमित मात्रा में संतुलित मात्रा में करें
0: जी।
1: तो डॉक्टर साहब, अंत में आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों की मिट्टी की सेहत बनी रहे और संतुलित मात्रा में वो उर्वरकों का प्रयोग करें?
0: देखिए, अंत में मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि केवल यूरिया और डीएपी और ये जो रासायनिक उर्वरक हैं इन पे निर्भर ना रहें। हरी खाद, जैविक खाद, इसके अलावा जो फसल अवशेष प्रबंधन है उसको भी वैज्ञानिक रूप से किया जाए, और जो मिट्टी का परीक्षण है उस पे आधारित जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो किया जाए, जिससे ना केवल ये जो रासायनिक उर्वरक हैं उन पे निर्भरता किसानों की कम होगी बल्कि इन उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी जो है वो स्वस्थ भी रहेगी। ये जो हरी खाद और इनका प्रयोग हो रहा है, और इससे किसानों की लागत कम होगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और जो खेती है वो लंबे समय तक लाभकारी बनी रहेगी।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो हमारे किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम जो आधुनिक खेती कर रहे हैं तो आधुनिक खेती के साथ साथ हमें उसमें परंपरागत खेती का समावेश भी करना होगा
0: जी।
1: पशुपालन भी हमें रखना होगा, और पशुओं से उत्पन्न जो कंपोस्ट खाद होती है, गोबर की खाद होती है, और जो हम अलग से
0: फसल की खाद,
1: केंचुई खाद, वर्मी कंपोस्ट, और सबसे बड़ी बात आपने बताई कि फसल अवशेष प्रबंधन हमें करना है
0: जी।
1: क्योंकि किसान भाई अक्सर ये देखा होगा कि जब धान काटते हैं तो कहीं कहीं धान की पुआल में आग लगा देते हैं, जो कि एकदम गलत है, और जब गन्ने की छिलाई होती है सर्दियों में सीजन में तो गन्ने की पत्ते भी किसान भाई जला देते हैं, जो कि मिट्टी का भी नुकसान है और मिट्टी की ऊपरी परत में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनका भी बहुत भारी नुकसान होता है, क्योंकि मिट्टी का ताप फसल अवशेष जलाने से इतना ज्यादा हो जाता है कि जो लाभदायक जीवाणु होते हैं मिट्टी की ऊपरी सतह पर वो अधिक तापमान के कारण नष्ट हो जाते हैं, और इसके साथ साथ जो फसल अवशेषों में पोषक तत्व विद्यमान होते हैं उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। जबकि जो धान की पुआल होती है उसमें हमारे किसान भाई इस बात को ध्यान में रखें कि उसमें पोटाश की मात्रा काफी होती है, तो आप फसल अवशेष या तो इन सीटू यानी कि अपने खेतों में ही गला लें
0: जी,
1: जुताई करके जी। ऐसे बहुत से यंत्र आते हैं, रोटावेटर है, हैप्पी सीडर है, और जो दूसरी बड़ी बड़ी मशीनें हैं सुपर एसएमएस मशीन है, चौपर है, मल्चर है, तो किसान भाई अपना फसल अवशेष प्रबंधन करें और देशी खाद जिनको कार्बनिक खाद कहते हैं उनकी जो है इस्तेमाल करें, और साथ में यदि किसान भाई खेतों की जो फसल अवशेष है, मिट्टी है, पुआल है, यदि उसको बाहर किसी गड्ढे में ले जाकर भी कंपोस्ट बना लें तो वो भी एक अच्छा तरीका है, पर्यावरण के लिए भी, हमारी मिट्टी के लिए भी और मनुष्य के भविष्य के लिए भी।
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को हरी खाद के विषय में, कार्बनिक खाद के विषय में और यूरिया और डीएपी के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकने के विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: किसान भाइयों ने अभी ये जानकारी सुनी, फसलों उत्पादन में हरी खाद और अन्य जैविक खादों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से निजात। तो डॉक्टर कमलेश कुमार ने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी, और भाई किसान भाइयों, जब जानकारी होती है तो उससे हमारे किसान भाई खुश होते हैं और खुशी में मन करता है मनोरंजन को। जी हाँ, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर हम हैं और आप इंतजार में होंगे मनोरंजन के। तो भैया, ज़्यादा देर न करते हुए आपका मनोरंजन कराते हैं भीम सिंह की गाई इस प्यारी सी रागनी से।

लगते ही तीर गिरा धरणी पे, खून गात से जारी। भाइयों ने भीम सिंह की आवाज में ये प्यारी सी रागनी सुनी। और भैया रागनी आपको कैसी लगी, या हमारा कार्यक्रम आज का आपको कैसा लगा, ये आप हमें बताएंगे व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से या अपने पत्रों के माध्यम से। तो भैया व्हाट्सएप संदेश आप हमें भेजना चाहते हैं तो भैया आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457072888। जी हाँ, हमारा मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9457072888। तो भैया इस मोबाइल नंबर पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं, अपना व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। और भैया यदि आप हमें पत्र लिखना चाहें तो पत्र डालने के लिए हमारा पता वही है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 246763। तो भैया इस पते पर हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी। और भाई आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि भाई आपके पत्रों के आधार पर या आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर, आपके व्हाट्सएप संदेश के आधार पर ही हम अपने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं। और हमारा नित यही प्रयास रहता है कि हम अपने किसान भाइयों को नई नई जानकारियां दें और सुलभ जानकारियां दें, ताकि हमारे किसान भाई अपनी खेती किसानी से अच्छा लाभ कमा सकें। तो भैया हम आपके पत्रों की प्रतीक्षा में रहेंगे, आपके व्हाट्सएप संदेश की प्रतीक्षा में रहेंगे। और भाई देखिए अब हमारा कार्यक्रम समाप्त होने को है, तो भैया चलते चलते अपने भैया नरेश पाल सिंह को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत सुकुंज शर्मा की पूर्व प्रसारित वार्ता, जिसका विषय है समाज का दर्पण साहित्य।
1: अंधकार है वहीं जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी समाज का जैसा साहित्य होगा, ठीक वैसा ही वहां का लोक व्यवहार होगा, क्योंकि एक साहित्य अपनी लेखनी से जैसी भी अमृत धारा बरसाता है, वह उस समाज का दर्पण होती है। समाज में घटित व्यवहार, रीतियां, राजनीति, इतिहास, श्री संपन्नता तथा मान मर्यादा को ही साहित्य प्रतिबिंबित करता है। कई जाति समुदाय एवं धर्मों से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है। किसी भी समाज को यदि हम समझना चाहें तो उस समाज के साहित्य को पढ़ना उचित होगा। साहित्य की कई विधाएं हैं। यह कहानी के रूप में, कथा के रूप में, एकांकी के रूप में, नाटक के रूप में, उपन्यास के रूप में, निबंध के रूप में उपस्थित होकर सामाजिक प्राणियों को वर्तमान दशाओं से अवगत करा सकता है। साहित्यकार अपने विचारों और मनोभावनाओं को कलम के माध्यम से उजागर करते हुए जनमानस को जागृत करता है। जो घटनाएं सामाजिक परिदृश्य में घटित होती हैं अथवा जैसा प्रचलन एवं व्यवहार लोग परस्पर करते हैं, वैसी ही भावनाएं साहित्यकार अपने साहित्य में भर देता है। अच्छा साहित्य समाज की दशा व दिशा दोनों बदलने में सक्षम है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण वाल्मीकि कृत रामायण को कहा जा सकता है। लगभग हजारों वर्षों पूर्व वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण आज के युवाओं के लिए उच्च आदर्श स्थापित करती है। भगवान श्री राम ने वर्षों पूर्व जिन आदर्शों का पालन किया, आज यदि युवा उन्हीं उच्च आदर्शों पर चले तो निश्चित ही समाज की कुरीतियां शनहे शनहे अस्ताचल होंगी। श्री राम ने अपने राज्य की भलाई के लिए अपने ऊपर कष्टों को सहन करके भी देश व समाज की उन्नति का प्रयास किया। रामायण का अध्ययन करने से उस समय की कुरीतियां परिलक्षित होती हैं, जहां सीता जैसी पवित्र व पतिव्रता स्त्री के चरित्र पर भी संदेह उठ खड़ा हुआ था। लोक विचारों को साहित्य में पिरोकर रामायणकार ने उस समय के घटित दृश्यों को भी वर्तमान में दर्पण के समान सभी के समक्ष उपस्थित कर दिया है। हमारा सर्वाधिक प्राचीन साहित्य वेद है। वेदों की उत्पत्ति कब हुई, इसका कोई सटीक उत्तर प्राप्त नहीं होता है। वेदों से हमें ज्ञान, विज्ञान, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, नृत्य, गायन, अभिनय, चिकित्सा, आयुर्वेद आदि की शिक्षा मिलती है। वेदों का पठन पाठन ही हमें बताता है कि संसार का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। जीवन के पग पग पर जो भी अनुष्ठान धार्मिक कार्य संपादित होते हैं, सभी का मूल वेदों से ही प्राप्त हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत षोडश संस्कार संपादित किए जाते हैं, जिनका ज्ञान वेदों से ही प्राप्त होता है। आज तक भी वेदों में वर्णित संस्कार पर आधारित संस्कार ही संपादित किए जाते हैं। इन षोडश संस्कार को पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक संपादित किया जाता है। एक दर्पण की भांति स्पष्टता से कार्यों की छवि को आज तक लाया गया है। इस प्रकार प्राचीन से प्राचीन साहित्य अर्वाचीन लोक को प्राचीन समाज से अवगत कराते हुए उन्हें परस्पर जोड़ता है। पंडित अंबिका दत्त व्यास की सुप्रसिद्ध रचना शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें भारतवर्ष पर मुगलों के आक्रमण की कथा वर्णित है, जिसमें दर्शाया गया है कि भारत कभी अथाह धन संपन्न देश था। कालांतर में कई बार जब बाहरी व्यक्तियों ने यहाँ आक्रमण किया और यहाँ के वैभव को लूटकर अपने देश की ओर गमन किया, तो भारत के सजग वीरों ने सर्वस्व बलिदान करते हुए भारत देश की रक्षा का बीड़ा उठाया। इस उपन्यास को पढ़कर भारत की वास्तविक दशा से अवगत होकर सभी आयु वर्ग का जनमानस भारतवर्ष के निहितार्थ कार्यों में संलग्न हो उठा। इस ऐतिहासिक उपन्यास में लेखक ने उस समय भारत में हो रहे अत्याचारों का ऐसा सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है कि पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि सभी घटनाएं जैसे आज भी नेत्रों के समक्ष घटित हो रही हो। उसे पढ़कर आज भी मन विचलित हुए बिना नहीं रह पाता और मन में देश प्रेम स्वतः ही उमड़ आता है। इसी प्रकार हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने कई ऐसी रचनाएं लिखी जो समाज में चल रही प्रथा को इंगित करती हैं, उनकी लिखी गई मंत्र नामक कहानी में मानव मात्र को शिक्षा मिलती है कि लोक कल्याण में ही स्वयं का कल्याण निहित है। एक मानव को दूसरे मानव का कष्ट समझते हुए सच्ची मानवता का परिचय देना चाहिए। कहानी में दर्शाया गया है कि एक आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से सशक्त पात्र द्वारा दूसरे कमजोर व असहाय वृद्ध पात्र को दुत्कार दिए जाने पर भी वह वृद्ध उस सशक्त पात्र का दुखद समय आने पर सहायता प्रदान करता है। वह वृद्ध घमंड में आकर किए गए उसके दुर्व्यवहार को क्षमा प्रदान करते हुए अपने व्यक्तित्व को उन्नत शिखर पर अवस्थित करता है। इस कहानी से उचित न्याय प्रिय संदेश जनमानस तक पहुंचता है, जिससे समाज में नैतिकता विकसित होती है। साहित्य का अवलंबन लेकर व्यक्ति का व्यक्तित्व दर्पण के समान सुस्पष्ट होता है। भर्तृहरि के नीति शतक में ऐसी ऐसी उन्नत शिक्षा समाज को दिशा निर्देश प्राप्त कराती है कि समाज की हर बुराई को यह काव्य साहित्य पढ़कर और उसका अमल करने पर दूर किया जा सकता है। उदाहरण दृष्टव्य है।

यहाँ समाज को शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार माँ गंगा पवित्र व संसार में पूजनीय होने पर भी स्वयं का विवेक नष्ट कर दिए जाने पर साक्षात शिव के सिर से हिमालय पर, हिमालय से पृथ्वी पर व पृथ्वी से सीधा पाताल लोक में विलीन हो गई, उसी प्रकार अविवेकी व्यक्ति भी सैकड़ों प्रकार से अपने पतन का कारण बनता है। अतः विवेकी होकर ही व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए। संस्कृत के महाकवि कालिदास से कौन अपरिचित है? सभी देशवासी उनसे परिचित हैं। कालिदास ने सैकड़ों वर्ष पहले भारत भूमि की पृष्ठभूमि का बिंब ग्राही चित्रण किया है। उसे पढ़कर प्रतीत होता है जैसे भारतवर्ष का भ्रमण घर बैठकर ही कर लिया हो। उनकी सुप्रसिद्ध रचना मेघदूत में तो पूरी भारतीय प्राकृतिक दृश्यों की एक मनोहर झांकी है। भारत भूमि के स्वरूप का मधुर ध्यान है। अपने काल्पनिक मेघ को उन्होंने रामगिरी पर्वत से लेकर माल क्षेत्र, आम्रकूट, विदिशा, उज्जैनी, देवगढ़, दशपुर, कुरुक्षेत्र, कैलाश पर्वत तक जाकर अलका नगरी तक का भ्रमण करा दिया है। उज्जैनी के वैभव का तो ऐसा सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है कि पाठक मंत्रमुग्ध हो उठता है। जैसे हारा

0: अर्थात उज्जैनी में दुकानों पर बिक्री के लिए सजाए हुए बहुमूल्य रत्न वाले हारों, करोड़ों शंखों, सीपियों और घास के समान हरे रंग की कतमणियों व मूंगों के टुकड़ों को देखकर लगता है कि सागर में भी केवल जल निधि के अतिरिक्त कोई निधि शेष नहीं रह गई है। अतः सुस्पष्ट है कि साहित्य ही समाज का दर्पण है। हम गौरवशाली हैं जो हमारे देश का साहित्य नैतिकता परक, उचित शिक्षा देने वाला व इतना अथाह समुद्र है कि जिसमें डुबकी लगाने पर व्यक्ति गहराइयों में बढ़ता ही जाता है, फिर भी इसका पार नहीं प्राप्त होता।
1: कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत अभी हमारे श्रोताओं ने सुनी सुकुंज शर्मा की पूर्व प्रसारित वार्ता, जिसका विषय था समाज का दर्पण साहित्य। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:55 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम छाया गीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी नेहा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म गाइड से। शैलेंद्र का लिखा यह गीत है, संगीत SD बर्मन का है और आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

गाइड फिल्म का एक गीत हमारे श्रोताओं ने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म अर्पण से। आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की है। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अनपढ़ से। रजा मेहंदी अली खान की आवाज़ में रजा मेहंदी अली खान का लिखा यह गीत है और संगीत मदन मोहन का है। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 7:10 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है देशगान।

अभी हमारे श्रोताओं ने सुना देशगान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ विशेष तथा कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में।

आज रात्रि 9:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आज रात्रि 10 आनंद लीजिएगा श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का। कार्यक्रम सुगम संगीत में आज हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे भाई हरजिंदर सिंह के स्वर में शब्द। समय रहेगा आज संध्या 7:45 पर।

फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे आज रात्रि 8 बजे गीत संध्या में और रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से के अंतर्गत। श्रोताओं, ये थी रूपरेखा आज के कुछ शेष कार्यक्रमों के संदर्भ में। अब बात करते हैं कल की सभा के कुछ विशेष कार्यक्रमों की। कल संध्या 7:32 पर हमारे श्रोता सुनेंगे किरण उत्सव मंडप बिजनौर में वैश्य समाज शाखा बिजनौर उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित महाराजा अग्रसेन प्रतिभा सम्मान समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वैश्य समाज शाखा बिजनौर उत्तर प्रदेश। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग रहेगा जसवंत सिंह का।

10 बजे सुनिएगा नाटक सुबह का भूला। इस नाटक के लेखक हैं डॉक्टर शिव नारायण चतुर्वेदी, प्रस्तुतकर्ता हैं विभूति भूषण भट्ट और प्रस्तुति सहयोग रहेगा सुंदरलाल गंधर्व का। और श्रोताओं, ये तो थी रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 7:18 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी 50% की छूट। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए ठहरने की अस्थायी व्यवस्था करने के भी दिए।

0: एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को बढ़ाने के सारथी हैं। श्री योगी ने कहा कि ड्यूटी के प्रति सजगता और हर कार्य में गंभीरता होनी चाहिए। ड्यूटी के दौरान रील बनाना अनुशासनहीनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण में अर्थव्यवस्था को गति मिली है। 9 वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है।
1: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया, भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
0: प्रदेश में नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा में लगभग 3.5 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षा के लिए दूसरे जिलों में जाने वाले और वहां ठहरने के लिए स्थान की समस्या से जूझ रहे उम्मीदवारों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए। इस संबंध में परिवहन निगम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। किराए पर छूट की व्यवस्था 20 और 21 जून को लागू रहेगी। उधर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति, आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की पर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इसी क्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी में कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
3: जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर सबका साथ देने का काम किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को और हम लोग दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हमका योगदान हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
5: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
4: वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को

0: आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाकर 24 जून तक कर दी है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और 25 जून से विद्यालयों में नियमित पठन पाठन आरंभ होगा। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था से पूरे प्रदेश में एक रूपता सुनिश्चित होगी और विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों को स्पष्ट शैक्षणिक कैलेंडर उपलब्ध हो सकेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि विद्यालय खुलने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 220 कार्य दिवस और नियमित पठन पाठन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारियों को भी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित करने से पूर्व इस विधिक प्रावधान को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
2: बदायूं जिले के थाना उझानी क्षेत्र में ग्राम बुटला के पास आज एक ट्रैक्टर और ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में हुई दुर्घटना में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रनों का लक्ष्य रखा है। समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी 50% की छूट। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए ठहरने की अस्थायी व्यवस्था करने के भी दिए निर्देश। बदायूं में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ में खेला जा रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय मैच, टीम इंडिया ने जीत के लिए खड़ा किया 403 रनों का लक्ष्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत हैंडिंगले लीड्स में भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जा रहे टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 7:32 हुए हैं।

फिल्म संगीत में हमारे श्रोताओं ने सुना फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये गीत था। देव कोहली ने शब्द रचना की थी और संगीत था राम लक्ष्मण का।

बरेली की बर्फी। इस फिल्म का गीत हमारे श्रोताओं ने सुना, आवाज थी प्रवो मुखर्जी की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भाई हरजिंदर सिंह के स्वर में शब्द।

कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज हमारे श्रोताओं ने सुने भाई हरजिंदर सिंह के स्वर में शब्द। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम गीत संध्या सुनने वाले हमारे सभी प्यारे श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी नेहा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कभी कभी कुछ एहसास शब्दों में बयां नहीं हो पाते, वो बस दिल की तसव्वुर में बस जाते हैं। कोई चेहरा, कोई मुस्कान, कोई अनकहा सा रिश्ता जो दूर होकर भी हर पल साथ रहता है। ऐसी ही नाजुक भावनाओं और मोहब्बत की खूबसूरत दुनिया में ले जाने वाला है कार्यक्रम का हमारा ये पहला गीत।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में कार्यक्रम का ये पहला गीत हमारे श्रोताओं ने सुना फिल्म ऐतराज से। समीर का लिखा ये गीत था श्रोताओं और संगीत था हिमेश रेशमिया का। श्रोताओं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रिश्ते हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जो किसी चमत्कार की तरह होते हैं। जब सब कुछ अधूरा सा लगने लगता है तभी कोई ऐसा मिल जाता है जो हर कमी को पूरा कर देता है और फिर बस दिल यही कह उठता है कि कैसे मुझे तू मिल गई।

गजनी फिल्म से अभी हमारे श्रोताओं ने एक गीत सुना, बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। प्रसून जोशी के लिखे शब्द थे और धुन थी एआर रहमान की। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जहर से। आतिफ असलम की आवाज़ में ये गीत है। सईद कादरी ने शब्द रचना की है और संगीत है रूप कुमार राठौर का। श्रोताओं, कुछ लम्हे वक्त के साथ बीत तो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें दिल के किसी ना किसी कोने में हमेशा महकती रहती हैं। कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ मुलाकातें याद बनकर आ जाती हैं, और फिर कभी कभी अचानक वही पुरानी यादें दस्तक देती हैं।

श्रोताओं, प्यार की दुनिया बड़ी ही निराली होती है। कभी ये दिल को सुकून देती है तो कभी किसी की शरारती अदाओं पर मुस्कुराने को मजबूर कर देती है। और जब बात हो नैनों की तो उनकी बातों का क्या ही कहना। कभी ये इश्क जता देते हैं तो कभी चुपके से दिल चुरा लेते हैं। इन्हीं चंचल अदाओं और नटखट अंदाज को बखूबी बयां करता है हमारा ये गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म दबंग 2 से। राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में ये गीत है। समीर के लिखे बोल और साजिद वाजिद का

श्रोताओ, दबंग टू का गीत आपने सुना राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, और अब वक्त है कार्यक्रम के अंतिम गीत का। श्रोताओ, जाते जाते एक ऐसा गीत जो प्यार के इजहार की मिठास और दिल के सुकून को अपने सुरों में समेटे हुए है, क्योंकि जब कोई धीरे धीरे दिल में अपनी जगह बना ले, जब हर धड़कन में उसी का नाम बस जाए, तो होठों पर अनायास ही कुछ ऐसे बोल निकल कर आते हैं। गीत है फिल्म आरजू से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में यह गीत है। आनंद बख्शी ने शब्द रचना की है और संगीत है अनु मलिक का।

श्रोताओं, आरजू फिल्म के इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कटी पतंग के कुछ गीत। इन सभी गीतों को आवाज दी है किशोर कुमार, मुकेश और किशोर ने। श्रोताओं, आनंद बख्शी के लिखे ये गीत हैं और संगीत आरडी बर्मन का है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से का ये अंतिम गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आपने सुने कटी पतंग फिल्म के कुछ गीत। इन सभी गीतों को आवाज़ दी थी किशोर कुमार और मुकेश ने। आनंद बख्शी के लिखे ये गीत थे और संगीत था आरडी बर्मन का। और श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार संध्या सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 213,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को

0: रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों एनआरआई पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में एनआरआई विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France, on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
3: Excellency, we know that in the world of maritime trade, there are lakhs of seafarers in the different oceans of the world and they are giving their service and they are giving a great job in the world. और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी एक्सीलेंस मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं
2: Earlier, Prime Minister Modi addressed a working session themed promoting balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all at the ongoing G7 summit. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting brought together G7 member countries, partner nations, and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation. On the margins of the G7 summit in Evian, Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz today exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. The two leaders also reviewed the progress in bilateral engagements and expressed satisfaction at the renewed momentum in the India-Germany strategic partnership with the successful visit of Mr. Merz to India and the conclusion of the India-EU FTA negotiations earlier this year. Mr. Merz invited the Prime Minister for the 8th India-Germany Intergovernmental Consultations, IGC, scheduled to be held later this year in Germany. Prime Minister Modi also held a meeting with President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and President of the European Council, Antonio Costa, on the sidelines of the summit. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
4: The two-day visit of Prime Minister Narendra Modi to the beautiful French city of Evian has been highly significant. During the visit, the Prime Minister participated in various G7 outreach sessions where India was invited as a partner country. This marked Prime Minister's seventh consecutive participation in the G7 summit. India's regular presence clearly demonstrates that the nation has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. During the outreach sessions, Mr. Modi strongly presented the voice of the Global South before the crucial forum. In yesterday's session, he underscored the importance of trust in building international partnerships in an increasingly interconnected world, highlighting that India has always followed a humanity-first approach. In today's session, the Prime Minister underlined the critical need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developed countries. Mr. Modi also emphasized that tangible growth leads to the true inclusion and well-being of people, showcasing India's own growth story underpinned by the guiding principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Biswas and Sabka Prayas. Ankit Kumar, Akashwari News,
2: Evian, France. India and France have reaffirmed their commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at the inauguration of the India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Speaking at the event,

0: लाइन की तामीर की मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 172 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जदीदकारी के एक अहम इकदाम के तहत मशरकी रेलवे में 450 करोड़ रुपए के सिग्नलिंग अपग्रेडेशन मंसूबे को भी मंजूरी दी गई है। रेलवे और इत्तलात नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज तकरीबन 600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से पुणे रेलवे स्टेशन की बड़े पैमाने पर तौसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा 6 प्लेटफार्मों के साथ मजीद 6 नए प्लेटफार्म तामीर किए जाएंगे, जिसके बाद प्लेटफार्मों की कुल तादाद 12 हो जाएगी। इसके अलावा कामकाज की कारकर्दगी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम की जगह जदीद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे के तहफ्फुज और फरोग के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत ने अपनी तहजीबी विरासत के तहफ्फुज, फरोग और उसका जश्न मनाने के लिए कई तारीखी इकदाम किए हैं, जिनसे लाखों शहरियों में फख्र का जज्बा पैदा हुआ है। अहम वाकयात में सबसे अहम वाकया जनवरी 2024 में पेश आया, जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीमुशान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अंजाम दिया। ये सदियों पुरानी एक ख्वाहिश की तकमील थी। हाल ही में मंदिर का दौरा करने वाले एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अपने तजुर्बात बयान किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट का पहला मरहला अक्टूबर 2022 में कौम के नाम वक्फ किया गया। ये अजीम कॉरिडोर शानदार मुजस्मों, दीवारों पर बने फन पारों और तामीरात पर मुश्तमिल है, जो भगवान शिव की जिंदगी और उनसे मंसूब रिवायात की अक्कासी करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और मस्नूई जहानत पर मबनी निगरानी के निजाम से आरास्ता महाकाल लोक विरासत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका इफ्तिताह दिसंबर 2021 में किया गया था, ने यात्रियों के सफर के तजुर्बे को यकसर बदल कर रख दिया है। ये कॉरिडोर मंदिर को बराह रास्त दरियाए गंगा से जोड़ता है। 5.5 एकड़ पर मुहित इस प्रोजेक्ट ने लोगों की रसाई को बेहतर बनाया है और भारत के सबसे मौजिज रूहानी मराकज में से एक को नई जिंदगी बख्शी है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वाराणसी के रहने वाले प्रियांशु सिंह ने कहा कि ये कॉरिडोर यात्रियों की आमदोरफ्त में काफी आसानी फराहम कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये इनकलाबी इकदामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि मुल्क अपनी सकाफती जड़ों के तहफ्फुज के साथ साथ एतमाद के साथ मुस्तकबिल की जानिब गामजन है। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: दिल्ली पुलिस के खसूसी सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुबैना हैंडलर शहजाद भट्टी से वाबस्ता 8 रुकनी कसीर रियासती दहशतगर्दी मॉड्यूल के मजीद 5 मुलजमों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बेस्ट 2.0 के दौरान मस्कुरा मॉड्यूल के 3 अरकान को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को दिल्ली और पड़ोसी रियासतों में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने, पाकिस्तान में मौजूद राबताकारों की तशहीर करने और ISI की सरपरस्ती में मुबैना तौर पर कायम तंजीम तहरीक तालिबान हिंदुस्तान को फरोग देने की जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 हथियार, शहजाद भट्टी नेटवर्क से मुतालिक पोस्टर्स और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किए, जिनमें पुलिस एहलकारों को धमकियां देने वाली वीडियोज भी शामिल हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयाई खत्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के इलाकों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के मजीद कुछ इलाकों, नीज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में जनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक कल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अंडमान और निकोबार जजायर में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। क्रिकेट में लखनऊ में 3 एकरोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। इससे कबल भारतीय टीम 49 ओवर में 5 गेंदों में 402 रन बनाकर आउट हो गई। शुभमन गिल और ईशान किशन ने सेंचुरियां बनाई। गिल ने 154 रन बनाए जबकि किशन ने 125 रन स्कोर किए। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अब से कुछ देर पहले तक अफगानिस्तान की टीम ने 44.3 ओवर्स में 8 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एवियो में G7 सरबराह इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग की। मीटिंग में बहरी जहाजों के अमले की सलामती और आबनाई हुरमुज को खुला रखने के उमूर पर बातचीत की गई। वजीर आजम ने जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन देर लेन के साथ भी दोतरफा मीटिंग की। पेरिस में विबाटेक 2026 के दौरान इंडिया पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब में भारत और फ्रांस ने जिद्दत तराजी, मस्नूई जहानत और तकनीकी तआवुन के फरोग के अज़्म का इआदा किया। रेलवे ने कनेक्टिविटी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 एकरोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Çakçaka bir şeydi. ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हों, युद्धपोत हों या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी है। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बैनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। जय हिंद।
1: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कलपुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
3: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं। तो ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है। जो डिफेंस कॉरिडोर का सेटअप होना, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक साथ मिलजुल करके काम करना, डीआरडीओ का इनका मनोबल ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को साथ ले चलना, अकेडेमिया के साथ करना, जो यूजर्स है उनको साथ में लेकर के चलना, तो ये जो बेसिक कार्रवाई है, काफी पहले प्रोसीजर्स होते थे, उन प्रोसीजर से जिसे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है और खासकर जब वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो, ये नहीं कि भारत में बनाने बात अलग है, पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। इस प्रकार अपने बनाए हुए रेडार ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर्स सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है उसको मदद करा, पाकिस्तान अपना खुद करा और उसको पेनिट्रेट करना। ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरे के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो। आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इसे बनाया है, तो ये जो एक है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ ऑल टाइम हाई, और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो आपको 15.6%, तो उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा, और वापस अगर 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज टू बी समथिंग लाइक 43,000 crores, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 crores है, प्राइवेट प्रोडक्शन। यू कैन वेल इमेजिन 1,78,000 crore में प्राइवेट का contribution है, that's almost about the same as what was the total defense production of 2014.
1: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं. आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं. एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है. आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं.
2: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे. निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इस 1,78,000 करोड़ में से. निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है. जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे. जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है. पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है. हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं. अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास हैं. पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं. कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएसए. उनकी कंपनियों को भी हम पार्ट्स सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ. आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है. आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे. इंपोर्टर अभी हम रहेंगे, 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको कंप्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे. जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, हम इंपोर्टर रहेंगे. ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए. हर देश सारा कुछ नहीं बनाता. हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात. दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए. और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है. ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं, स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है.
1: जी हाँ कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
3: देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना अप्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है. ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, इतनी आसान नहीं है, और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है. लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने, कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के DRDO ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है. और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, फौज है उनसे खरीदती रहेगी. क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बना करके उसके बाद फैक्ट्री बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है. 100 के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है. जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट टू मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए. ये नहीं कि 40-30 आर्टिलरी के दे दिए, उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, आपके लिए बनाए उसके बाद क्या होगा. तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई हैं, और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिंद्रा हो, L&T हो, कल्याणी भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो, अडानी, अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त. और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी भी 1,78,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इट इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन. इसको बढ़ना है, और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो, जिसकी आप बात करें. सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो, और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो. तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर वन. नंबर टू, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है. अभी आपने Mark 1 बनाया है, आपने हमने ही बनाया है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको Mark 2 बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस सप्लाई उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है. तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है। इसमें डीआरडीओ की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीने हैं, ग्राउंड है जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमिया है, आईआईटी है, भारतीय बच्चे बड़े होशियार है वो आगे आते हैं, स्टार्टअप्स है वो आगे आते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप भारत के अंदर ही अपने हम जैसे आप कह रहे हैं वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कई एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े क्योंकि बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्टिल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे और कहा दो साल हो गए दो इंजन नहीं आ पाए, दो साल हो गए क्यों? हमने उनके भरोसा उन्होंने कहा नहीं हमने तो फैक्ट्री बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे। इसलिए लगे अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर एमसीए प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
1: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था जो अब चार गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने हैं। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इम्पोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल आर्टिलरी गन इम्पोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बनाया है आईएनएस विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप है वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, INS अरिहंत उसके तीन आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो इम्पोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में प्लेन में टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इम्पोर्ट नहीं होगा। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो है और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है, तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज ड्रोन यानी UAV, बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इंपोर्ट करने की बजाय अब एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलके। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि 5वीं श्रेणी का लड़ाकू विमान है उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में 3 कंपनियों को, 3 कंसोर्टियम्स को इनवाइट कराया कि अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से एक बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी हम बनाते हैं, मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो उस पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस फ्लाइट हेलीकॉप्टर बना रहे थे, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इम्पोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है उसे बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की 2 श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था 8-10 साल हमें ये पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहाँ खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
3: देखिए ड्रोन वॉर पे अब समथिंग हम लोगों को यकीनन उसके साथ अडाप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में। तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है, हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पे पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की ने दे वो गिराया, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करते, ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट, बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इम्पोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये। तो इसलिए आज की तारीख में अगर हम देखें स्टार्टअप देखें, जरूर चाहे स्टार्टअप के पास आपके पास या नेविगेशनल हो या उसके सीकर हो या उसके पास फोटोग्राफिक जैसे बहुत कुछ साधन है जो स्टार्टअप के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप को एनकरेज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा, ना जी आप तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चर का इंटरफेस तो चलता रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल अगर हम ये हमारे लिए है, आत्मनिर्भरता तो भारत के लिए है, और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग जो पैरामीटर्स है जिसको GSQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे है, और वो उस मापिक अगर जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है +50 डिग्रीज भी है, तो दोनों तरीके के है हमारे में तरह तरह के टेरेन कंडीशन है, तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं। इसलिए रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस कर गई वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए, UAV को मद्देनजर रखते हुए, न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चाहे स्पेस है नेविगेशनल है जियोस्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हर एक चीज के साथ मिल करके अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके, तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि हम भारत के अंदर बनाए, और इसको इनिशियली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है इनिशियली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है, या अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है?
2: इसके कई सारे आंसर है। पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी, फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और ये मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहां 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी, और सबसे बड़ी बात अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे, जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं R&D के इंजीनियर हैं लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा, मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी। जब आप ग्रो करेंगे तो जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज्ड टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज्ड टास्क, तो आपको ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए और वो ट्रेन्ड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI है वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए ट्रेन्ड मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है। कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी, जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं, बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है। और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल्ड जॉब होगा, जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको। MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे। साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहाँ बनाया है, साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके। तो ये जॉब मार्केट पर इम्पैक्ट करता है सबको, छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को भी इम्पैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
1: जी हाँ कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
3: अपने को मालूम है ये हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं और पैदा हो सकते हैं दुश्मन, क्योंकि कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि भारत गरीब है, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रहना है उससे और आगे बढ़ना है, अगर नंबर वन GDP वाला अगर $22 trillion का है, नंबर टू तकरीबन 17-18 trillion का है, तो नंबर तीन 4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15 trillion की इकोनॉमी बननी पड़ेगी। तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचा है ये हमारा देश है और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है। हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने के लिए, लड़ाई अगर होगी तो जिसने जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि उसने मधुमक्खी के चट्टे में उंगली मारी है और अब वो मधुमक्खियां जो है भिनभिना गई, उनको नुकसान होगा, ये वो बात है। और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता और सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और ये कह रहे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है। आज देखिएगा कौन सा है वो स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री, फटाफट कौन से जनरेशन है 1, 2, 3, 4, 5। अब हवाई जहाज देखिए आपने रफेल इंपोर्ट किया 4.5 जनरेशन, फिर 6th जनरेशन स्टिल। तो आप देखते किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। जो जब आप भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं। हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया है, इसको किस तरह, तो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, अंडमान निकोबार में आपने एक बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट है, चाहे अपने UAV है, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर है, चाहे अपने लाइट टैंक्स है, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेस है, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स है, या अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, हेलमेट्स हैं, जूते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई

0: मल्टीट्यूड का क्लोजिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए हाँ ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं विश्व में जाकर के, सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारा सैनिक यूएस के सैनिक के साथ मिलता है, हमारा सैनिक साउथ एशिया में देश है उनके सैनिकों के साथ मिलता है, बाहर देशों के साथ मिलता है, बाहर के देश के सैनिक भारत में आते हैं, वो देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से लड़का खड़ा है, उसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से बातचीत करता है, जो मनोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है जब मैंने ट्रेन वेल, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपको आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जीत मेरी होगी, मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, अब जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल एक पैदा हो जाता है देश के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है और देश जिस मुकाम पर जाना चाहिए भारत को वो मुकाम जाएगा।
1: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है तो इससे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है, अगर हाँ तो कैसे?
2: जी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची है जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनमें से 2 एटलीस्ट फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया जिसको हमने बेची है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवर्ड्स द शिप, जमीन से सामने के युद्धपोते मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने पूछी कैसे हमारी कूटनीति पे फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मेनिया को आम कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिस से तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाई अप है, यूएसएसआर यानी अब सोवियत रशिया के साथ और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाई अप है, विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए, इंजन के, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरन नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए को 20 साल से, इंजन यही इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई, उसकी कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ यहाँ बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया, 178,000 करोड़ पे आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है, और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए। 30 साल लग गए जी, 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहाँ कि आपने ये बनाना है, देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कुछ सिखाएगा नहीं, कोई देयर इज नो टीचर, आप खुद ही टीचर हो, तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे, 20 साल लगे, लगते हैं इतने, जी बिल्कुल लगते हैं, तेजस को 33 साल लगे, अब जी बिल्कुल लगते हैं, परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे, जी बिल्कुल लगते हैं इतने, हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D, वेरी स्ट्रॉन्ग R&D, अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें इस टाइम, नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है, नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई, रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे हैं, अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रॉन्ग, ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
0: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम अपना इंपोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर करो ना, ये मानना करना पड़ेगा ये हमारा है और हमने इसको आगे दर्जे का बनाना है, अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि यह हमारे लिए बना है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर, अगले 5 साल के अंदर एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी, अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है, वो खुद ही 50 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, और अपना जो इंटरनल जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन, जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है, उम्मीद करता हूँ ये भी 3 लाख करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है और हम करेंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
1: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की ये यात्रा आसान नहीं थी लेकिन ये सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियां, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू।
0: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

नमस्कार श्रोताओं, रात के 10 बज चुके हैं और दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा आराम करने का। श्रोताओं, सोने से पहले और लेटने के बाद का ये समय कभी कभी हमें यादों की उन गलियों में लेकर चलता है जहाँ खुशियाँ छोटी छोटी थी लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े हुआ करते थे। आज उन्हीं सब यादों को फिर से ताज़ा करने के लिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया लेकर हाजिर हूँ मैं, आप सभी की रेडियो सखी नेहा शर्मा।

दोस्तों, कभी सोचा है हमारी सबसे खूबसूरत यादें आखिर है कहाँ? क्या वो अब किसी पुराने संदूक में रखी दादी की चिट्ठियों में हैं? क्या वो नानी के आंगन में लगे उस आम के पेड़ पर झूल रही हैं? या फिर वो गर्मियों की उन रातों में छिपी हैं जब छत पर चारपाई डालकर पूरा परिवार तारों के नीचे सोया करता था? साथियों, अगर आपको भी ऐसी ही किसी याद ने इस वक्त घेर लिया है तो आप अपनी वो याद, अपनी वो बात या अपना वो किस्सा हमारे साथ साझा कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, जिसके लिए नोट कीजिए हमारा नंबर। हमारा नंबर है 9457078288। चलिए, जब तक हमारे साथ ही हमें करते हैं मैसेज, हम एक और गीत आपको सुनवाते हैं। लौटकर फिर से करेंगे यादों का सफर, कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया मैं।

दोस्तों, याद है मई जून की छुट्टियां लगते ही कैसे हम सब नानी के घर जाने की तैयारियां किया करते थे। ट्रेन की खिड़की से झांकते हुए स्टेशन का इंतज़ार और नानी के घर पहुंचते ही नानी का वो दुलार, नानी का वो घर जहां आम के बाग थे, जहां शाम होते ही गली मोहल्लों में बच्चों की टोलियां निकल पड़ती थी और रात को छत पर लेटकर तारे गिनते गिनते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। साथियों, आपको एक बार फिर से याद दिला देंगे, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई दिलचस्प याद है, कोई दिलचस्प किस्सा है जो हमें फिर से याद दिला देता है उन दिनों की, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप मैसेज पर साझा कर सकते हैं। तो श्रोताओं के मैसेज तो हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ नाम और पता भेजने से काम नहीं चलेगा। श्रोताओं, ये कार्यक्रम है जिसमें हम अपनी पुरानी यादों को साझा करते हैं, उन किस्सों को साझा करते हैं जिनसे हम हमारी बचपन की यादें जुड़ी हैं। तो चलिए, आपके मैसेज का हमें रहेगा इंतज़ार, और मैसेज करने के लिए नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं, 9457078288। जब तक आप हमें करते हैं व्हाट्सएप मैसेज और साझा करते हैं कोई खूबसूरत सी याद, आपको सुनवा देते हैं एक और खूबसूरत गीत।

ग्राम गधारोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन जी ने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है और मैसेज के माध्यम से श्रोताओं अपनी कुछ यादें हमारे साथ साझा की हैं। वो लिखते हैं कि वो यादें आज ताज़ा हो गई जब हम पूरा परिवार गर्मियों के मौसम में या तो आंगन में या तो छत पर इकट्ठे होकर सोया करते थे। उस इकट्ठा होकर सोने का एक अलग ही मज़ा था। अब वो दिन कहाँ, अब तो सब लोग अलग अलग अपने कमरों में सोते हैं एसी लगाकर, लेकिन पहले जैसी बात कहाँ। काश वो दिन फिर से लौट आए और हमारा परिवार एक हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बात कही, कहाँ वो दिन आजकल। अब तो सब कुछ बिल्कुल जैसे बदल सा गया है। साथियों, आज हम कहीं जाते हैं तो तुरंत बाइक या कार में बैठते हैं और चल देते हैं, लेकिन एक ज़माना था कि जब कहीं जाने की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाया करती थी। बैलों को सजाया जाता था, उनके गलों में घंटियां बांधी जाती थी और बैलों के सींगों को रंग बिरंगे रंगों से रंगा जाता था, तब जाकर सफ़र मंजिल तक पहुँचते थे। और श्रोताओं, तब सफर जो था वो मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि सफर का आनंद लेने के लिए होता था। और फिर चल पड़ती थी सजी धजी सी बैलगाड़ियां, कभी खेतों की ओर, कभी किसी अपने को ले जाने के लिए, ठीक इस गीत की तरह।

श्रोताओं, संघ मित्र श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी ने हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिखा है और कहते हैं कि बचपन में दादी कहानी सुनाती थी, तो मैंने तो सुनी है लेकिन अब तो दादी की कहानी कहीं सुनाई नहीं देती। वो दिन भी क्या दिन थे, ना कोई इंटरनेट था ना कोई मोबाइल था, बस अब तो यादें ही बाकी हैं। वाकई श्रोताओं, अब तो उस समय की बस यादें ही बाकी हैं। एक और मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज हमें किया है शाही मार्केट स्योहारा ज़िला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, रफ़ात आदिब और कादिर चौधरी का। ये लिखते हैं कि जब हम छोटे से थे तो जून का महीना कई महीने पहले याद कर लेते थे, क्योंकि जून की छुट्टियों में हम नाना मामू के यहाँ जाया करते थे और वहाँ खेल कूद करते थे और सभी छुट्टियाँ मामू के यहाँ मनाएंगे और ऐसा करते थे बराबर, बड़ा आनंद आता था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बच्चे छुट्टी में जाना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनके हाथों में मोबाइल रहता है। तब के मोबाइल आंखों को नुकसान भी देता है और इसकी लत अच्छी नहीं होती। मैं तो ये कहूँगा कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनके हाथों में मोबाइल ना दें और कहीं छुट्टी मनाने कहीं पहाड़ों पर जाएं तो पेड़ों का ध्यान रखें, उनकी टहनियाँ ना तोड़ें और कूड़ा कचरा ना फैलाएं। सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत एक संदेश आपने हमें दिया है आसिफ चौधरी जी, और आपने ये इतनी खूबसूरत सी याद हमारे साथ साझा की और साथ में एक इतनी प्यारी सी बात और इतना अच्छा हमें संदेश लिखा कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वाकई मोबाइल आंखों को नुकसान तो पहुंचाता ही है और बच्चों में दूरियां भी बढ़ाता है, रिश्तों में दूरियां बढ़ाता है। तो अच्छा तो यही रहेगा कि हम अपनों का साथ ढूंढें, अपनों का प्यार ढूंढें, वही खेल बचपन के पुराने दोबारा से अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों की ज़िंदगी में ले कर के आएँ। एक ज़माना वाकई था दोस्तों जब ये सब चीज़ें हुआ करती थी, जो छोटी छोटी चीज़ें हमें खुशियाँ दिया करती थी, जब डाकिया का भी इंतज़ार

तार हुआ करता था। एक चिट्ठी आती थी और घर में खुशियां छा जाती थी। नौकरी लगने की सूचना हो, शादी ब्याह का निमंत्रण हो, घर की राजी खुशी लिखनी हो या फिर प्यार का इजहार करना हो, हम सबके पास बस एक ही माध्यम था और वो था खत, जिसमें हम शब्दों की जगह एहसासों को लिखा करते थे और एक एक शब्द में जैसे दिल के एक एक जज्बात को पिरो दिया करते थे।

कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ ने हमें व्हाट्सएप मैसेज लिखा है और ये कहते हैं कि कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया के माध्यम से हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। एक तस्वीर सी जो है वो हमारी आंखों के सामने चल रही है। ये कहते हैं कि बचपन में हम खेत में जाया करते थे, आम खाते थे और पेरू खाते थे और बचपन की वो यादें, वो खेल, वो ज़माना हमें बहुत अच्छी तरह से याद है। और वो भी क्या दिन थे, वाकई वो भी क्या ज़माना हुआ करता था जब भरी दोपहरी में दोस्तों की टोली बनाकर बागों में आम, अमरूद और जामुन जैसे फल तोड़ने जाया करते थे। कभी पेड़ों पर चढ़कर तोड़ना, तो कभी टूटे हुए फल इकट्ठा करके लाना और माली के आते ही जान बचाकर भागना, कच्चे फलों पर नमक मिर्च छिड़क कर खाना, ये सब जैसे हमारी छोटी छोटी खुशियों की वजह था। आज सुपरमार्केट में हर फल तो मिल जाते हैं, बड़े बड़े पार्कों में झूले भी मिल जाते हैं, लेकिन बागों में पड़े वो झूले और वो पेड़ों से तोड़कर खाए आमों का स्वाद नहीं मिलता। वाकई श्रोताओं, वो दिन, वो भी क्या दिन थे जो कभी वापस नहीं आते। और आइए एक गीत आपको सुनवाते हैं और उसके बाद फिर से आपके साथ रूबरू होंगे आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के साथ, जो कि जिसमें आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं वो यादें, वो कहानियाँ, वो किस्से जो आपको अपने बचपन की याद दिलाती हैं। हमें मैसेज करने के लिए आपको हमारा नंबर तो पता ही है, एक बार फिर हम आपको अपना नंबर बता देते हैं, 9457078288। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आइए गीत सुनते हैं और फिर उसके बाद आपसे फिर से करेंगे ढेर सारी बातें।

बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत हमारे श्रोताओं ने सुना। गीत के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया में। श्रोताओं, एक मैसेज हमारे पास आया है जलालाबाद वेस्ट से। लिखने वाले हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और नियमित आहूजा। ये लिखते हैं कि हमें याद है वो खेल जो अब दिखाई भी नहीं देते। कुछ का तो आजकल के बच्चे नाम तक नहीं जानते होंगे, जैसे गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, कंचे, नदी पहाड़ और न जाने कितने ही खेल हुआ करते थे जो हम सब पूरा पूरा दिन खेलते थे। आज मोबाइल में बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, लेकिन मिट्टी में गिरकर खेलने की जो खुशी है वो किसी भी मोबाइल स्क्रीन पर नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही बात आपकी गगनेजा जी। एक और मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने लिखा है कि हमारी नानी जी अमरोहा में रहती थी, बड़ी हवेली थी, आम, अमरूद और नीम के पेड़ घर के आंगन में थे। नीम का पुराना पेड़ था, नीम के पेड़ पर चिड़ियों का बसेरा था। शाम ढलते ही चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती थी और 15 से 20 मिनट तक चिड़ियों का शोर शराबा रहता था। जैसे जैसे अंधेरा होता था चिड़ियों की आवाज़ शांत हो जाती थी, मानो नीम का पेड़ चिड़ियों के साथ सोने चला गया हो। सवेरे 4 बजे से 4:30 बजे फिर से चिड़ियों की सुगबुगाहट शुरू हो जाती थी। दिन निकलते निकलते सब चिड़ियाँ उड़ने लगती थी, मानो वो अपने काम काज पर जा रही हों। वैसे भी बिना प्रयास और बिना कुछ किए कभी कुछ नहीं मिलता। भले ही चिड़ियाँ पेड़ से परवाज कर रही थी, लेकिन परवाज के पीछे भी एक राज था। वो राज था पेट भरने का, भूख मिटाने का और दाना ढूंढने का। पेड़ पर चिड़ियों को देखकर मजा आ जाता था, लगता था कि चिड़िया ही नहीं नीम का पेड़ भी चहचहा रहा हो। हम सब बहुत खुश हुआ करते थे, चिड़ियों को दाना देते थे। कभी कभी कुछ चिड़िया नीचे उतर आया करती थी, बाकी नए चेहरों को देखकर उड़ जाया करती थी। आज जमाना बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। वो नानी का घर जिसमें पेड़ हुआ करते थे, चिड़ियाँ चहचहाती थी, डालियों पर आम लगते थे, अब ना तो पेड़ है ना ही वो आंगन है। सब कुछ वक्त के साथ बदल गया है। जी हाँ, वक्त के साथ सब कुछ बदल ही जाता है। ये इतना खूबसूरत सा मैसेज हमारे साथ साझा किया है बिजनौर रोड किरतपुर से। लिखने वाली हैं सुषमा, अनीता और अनीता जी के परिवारजन। आपका इतना खूबसूरत सा संदेश हमारे पास भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। एक मैसेज हमारे पास आया है विलेज एंड पोस्ट राहुल नगरी से। आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान, राघव चौहान और इनके साथियों का ये लिखते हैं कि हम बचपन में कई सारे दोस्त मैदान में खेलने जाया करते थे, फिर वहाँ से एक ट्यूबवेल था जिसमें स्नान किया करते थे और कभी कभी तो शाम के समय लुका छुपी या गिल्ली डंडा जैसे खेल भी खेला करते थे। सच में वो दिन हमें आज भी याद आते हैं। जी हाँ, बचपन की वो बातें और वो यादें कभी आँखों से धुंधली नहीं होती और वो कभी ना कभी एक फिल्म की तरह हमारे आँखों के सामने आ ही जाती हैं। एक और मैसेज हमारे पास आया है, ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से हैं मोहम्मद फरमान जी। ये लिखते हैं कि बचपन की गलियों में लौटना आसान कहाँ होता है, वो हंसी वो शरारतें अब हर जगह कहाँ होती हैं। आज भी जब यादों का पिटारा खुलता है तो दिल कह उठता है कि वो दिन फिर से कहाँ मिलते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, वो दिन वाकई फिर से कहाँ मिलते हैं। वो दिन, वो ज़िंदगी के खूबसूरत से सफ़र जहाँ न किसी बात की चिंता थी न किसी चीज़ की फ़िक्र। गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाना, आम के बागों में दौड़ना, पेड़ों पर चढ़ना, शाम होते होते दोस्तों के साथ खेलना और रात को छत पर लेटकर तारों को निहारना। वो पल आज भी दिल के किसी कोने में एक खूबसूरत किताब में बंद है। एक और मैसेज हमारे पास आया है गांव जेवर हिसार से। लिखने वाले हैं वीरेंद्र, शमशेर, सुरेंद्र, मनोज और इनके सभी साथी। ये लिखते हैं कि मेरे बचपन की सबसे यादगार घटना थी जब मैं जाया करता था खेलने, तब वहाँ पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ा करता था। उस समय मैं और मेरे सभी दोस्त बहुत परेशान किया करते थे और आज हम मिलजुल कर पैसा इकट्ठा करके और हम मिलजुल कर पैसे इकट्ठे करके आइसक्रीम खाया करते थे। बहुत ही खूबसूरत सी याद हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। अगला मैसेज हमारे पास है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से। भेजने वाले हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। और ये लिखते हैं कि समय भले ही आगे बढ़ गया हो लेकिन वो दिन, वो शरारतें, माँ की डांट, वो सब कुछ आज भी हमारे दिल में हूबहू ऐसे ही बसा हुआ है। बारिश में भीगना और वो बेफिक्र होकर हंसना आज भी यादों की किताब का सबसे खूबसूरत सा पन्ना है। तो श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का वक्त भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। शाम ढलते ही आपको याद ही होगा श्रोताओं की, शाम ढलते ही गांव की वो चौपाल याद तो होगी जिसमें हम

अरे बड़े बुजुर्ग कहानियां और किस्से सुनाया करते थे, और बीच में रखा हुआ वो रेडियो जिसके चारों तरफ पूरा परिवार बैठ जाया करता था। आज सबके पास मोबाइल है, लेकिन साथ बैठने का वक्त नहीं है। वक्त की रफ्तार वाकई बहुत ही तेज होती है दोस्तों, मगर यादों के वो गांव, वो दिन आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। कार्यक्रम का वक्त है अब समाप्ति की ओर, तो आपसे करने के लिए वैसे तो हमारे पास हैं ढेर सारी बातें, लेकिन समय का अभाव है श्रोताओं, और जिन हमारे श्रोता साथियों के मैसेज आज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, वो कृपया करके नाराज़ ना हों और अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखें। कार्यक्रम में अब चलते चलते आपको एक खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं पर संपन्न करने की आपकी रेडियो साथी नेहा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: असल में हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सलेंस, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत

0: एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।